नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: हम विविध भारती से बोल रही हैं, प्रतीक्षा समाचारों की।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावना है। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फिगरेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश

0: असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती वंदन वार।

चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया हर मार्ग, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। झरोखा सुनिए विविध भारती से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्री रामचरितमानस गान का 246वां भाग आप सुनेंगे अब से बस कुछ ही देर बाद सुबह 6:35 पर। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों चल रही है श्रृंखला शास्त्रीय संगीत फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आज 11वीं कड़ी कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। प्रस्तुति अनुश्री पाठक।

सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम हैं राही प्यार के, 8:15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर चित्रलोक, सुबह 9:30 और शाम 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार कार्यक्रम। हास्य अभिनेत्री और गायिका उमा देवी पर ये कार्यक्रम केंद्रित है। सुबह 10 बजे गीतों भरी कहानी, आज की कहानी है वो पुरानी बेंच, लेखिका है सौम्या शर्मा, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी। 11 बजे चित्रपट संगीत कार्यक्रम होगा, 11:30 पर मैटिनी शो, 12:05 पर सुनिए यादों की महफिल, दिन में 1 बजे सुरीला सफर, दिन में 2 बजे त्रिवेणी, दो बजकर 30 मिनट पर सदाबहार नगमे, दिन में 3 बजे मनचाहे गीत कार्यक्रम होगा, 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत आप सुनेंगे नाटक रहीम की ढाणी, लेखक हैं हरी राम आचार्य और निर्देशक महेंद्र मोदी,

शाम 4 बजे पिटारा में बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग सुनवाया जाएगा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। शाम 5 बजे छाया गीत 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन कार्यक्रम होगा। 6:45 पर संगीत सरिता में श्रृंखला चल रही है शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 11वीं कड़ी आज। शाम 7 बजे अभिनेता प्राण द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा। रात 8 बजे हवा महल में सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत कहानी विश्वास का दूसरा भाग, वाचक स्वर अमरकांत दुबे। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा हास्य अभिनेत्री और गायिका उमा देवी पर। 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात। 8:00 रूपरेखा आज दिन भर के कार्यक्रमों की, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं।

0: स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने श्री रामचरितमानस कहानी भाग 246।

0: बेगा, मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
1: और आ गया।
0: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
4: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने श्री रामचरितमानस कहानी भाग 246।

मुनि अगस्त्य के एक परम ज्ञानी शिष्य थे सुतीक्ष्ण, जिनकी श्री राम चरणों में अथोर प्रीति थी। वन में विचरण करते हुए जब उन्होंने अपने आराध्य के आगमन का समाचार सुना तो प्रेम और भक्ति भरे पुलक से उनका शरीर कंटकित हो गया। उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे प्रभु के दर्शन पाएंगे। प्रेम में मग्न सुतीक्ष्ण प्रभु का गुणगान करते राह में नाचने गाने लगे। उनके पग आगे पड़ते हैं या पीछे, इसकी भी सुधि नहीं रही। श्री राम एक पेड़ की आड़ लेकर उनकी उन्मत्त दशा देख रहे थे। भक्तों का उद्धार प्रभु की बान है, वे सुतीक्ष्ण के हृदय में प्रकट हुए। मुनि प्रेमोन्मत्त होकर बीच राह में अचल समाधि सी स्थिति में स्थिर बैठ गए। अपने आराध्य के निकट आ जाने के बाद भी जब उनका ध्यान नहीं टूटा तो प्रभु ने उनके हृदय में अपना राजसी रूप छोड़ चतुर्भुज रूप प्रकट किया, और उस रूप के अंतर ध्यान होते ही सुतीक्ष्ण को श्री राम, लक्ष्मण और सीता के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए। वे दंड की भांति श्री राम के चरणों में गिरे ही थे कि प्रभु ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। पंडित जी, आज हमारे श्रोताओं को बताइए कि पंडित जगन्नाथ पहाड़ी आपके गुरु जी थे, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। और हमें याद आ रहा कि पंडित छन्नूलाल मिश्र से भी आपकी बड़ी गहरी मित्रता थी और बहुत कुछ उन्हें आप गाते हुए सुनते थे।
2: गाते हुए सुनते थे, उनको मैं चाचा कहता था और वो इतना प्यार करते थे कि बनारस में जब मैं बजा रहा था कला प्रकाश के लिए तो उनका फेवरेट राग हंस ध्वनि था
1: जी।
2: और हंस ध्वनि मैं उस दिन बजा रहा था तो मेन राग हंस ध्वनि कोई बजाना नहीं चाहते क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन कम है ना
1: जी, जी।
2: वो 10 मिनट बाद तो कलेजे के ऊपर आने लगता है राग
1: जी।
2: तो मैंने 1 घंटा बजा दिया, 1 घंटे से ज्यादा। तबले में उनके पुत्री थे पंडित राम कुमार मिश्रा, और आके लिपट लिए मुझे, बोले कहा बजौला कहा बजौला तू हंस ध्वनि हमके चाचा ये तो तुके सुनावत रहली। तो बहुत प्रसन्न हुए। तो एक चीज उनका मैं बजाता हूँ और रामायण भी बहुत अच्छा गाते। तो मेरी जो आध्यात्मिक जीवन है उस वजह से हम लोग कभी कभी छन्नू महाराज और हम एक होटल में रहते थे तो बड़ा आध्यात्मिक चर्चा करते थे। वो बोलते थे कथा प्रवचन क्यों छोड़ दिया तूने।
1: यहाँ पर अपने श्रोताओं को हम बता दें कि पंडित रोनू मजुमदार पहले एक कथावाचक थे और अभी भी इनके सामने न कोई कागज है न कलम है, ये ऐसे स्पॉन्टेनियस बोल रहे हैं बिना किसी तैयारी,
2: बिना कुछ किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं। तो मैं छन्नू महाराज जी को एक उनकी चीज है जिसमें खोलो श्याम अब चंदन केवड़िया, केली डर लागेला धीरे धीरे, सावन झर लागेला धीरे धीरे
1: जी जी।
2: तो ये बजा के जो बोलते हैं लोग कि आपके बजाने में कुछ आध्यात्मिक रस आ रहा है वो पंडित जगन्नाथ पहाड़ी जी का देन
1: जी,
2: है
1: जी। तो तनी पंडित जी, पंडित छन्नूलाल मिश्र वाला सुनावे बांसुरी पर आप।
2: हाँ

0: वाह, अद्भुत।
1: उसके पहले जगन्नाथ पहाड़ी जी की आपने बात कही, तो पंडित जगन्नाथ पहाड़ी बहुत बड़े कथावाचक हुए। 20,000 लोग, जब मैं उल्लासनगर बनारस से आने के बाद, पहले उल्लासनगर में झूलेलाल मंदिर में वो आते थे, उनकी एक लाइन सुना रहा हूँ कि धुनी उसके दर पे तू रमा ले, वो तुम पे रीझ जाएगा, उसके दर को अपना घर बना ले, वो तुझ पे रीझ जाएगा, वो दिल पसीज जाएगा। मेरे भगवान को मगरूर नहीं भाती है, उसे तो भावना की डोर खींच लाती है। पुकार दिल से निकले वो अर्श हिलाती है, जाके भगवान के दहलीज से टकराती है। तो ऐसे कवि हुए कि जिसका जवाब ही नहीं
0: जी। और कविता का गुण आप में भी आया है
1: जी, उनसे इंस्पायर होके मैंने लिखा, उन्हीं की कृपा, ये समझिए जनेऊ संस्कार होता है हमारे हिंदुओं में। बाल योगी जी ने मेरा जनेऊ किया था हरिद्वार में, जब मैं 13 साल का था
0: जी।
1: तो मैं उनके साथ संन्यास लेके जाने के लिए तैयार हो गया था।
0: ओ।
1: तो फिर उन्होंने मेरे कपाल को देख के कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पार्टीशन जब हुआ तो सब कुछ हमारा लुट गया, तो वो सब वापस आएगा तुम्हारे नसीब से ही, तुम गृहस्थ आश्रम में रह के बांसुरी की सेवा करो
0: जी।
1: क्योंकि तुम पूर्ण कथावाचक नहीं हो, तुम थोड़ी कुछ कथा करते हो फिर बीच में बांसुरी बजाते हो, ये नई चीज है, ये तुम्हें जीवन में काम आएगा। तो उससे मैं इंस्पायर होकर मैंने लिखा, चाहे ऊंचे महल बना लो मालाओं से कंठ सजा लो, चाहे ऊंचे महल बना लो मालाओं से कंठ सजा लो, जब तक हृदय न तिलक करेगा ये अभिनंदन व्यर्थ रहेगा।
0: वाह।
1: ये मैंने नरेंद्र मोदी जी को भी सुनाया। जब मुझे पद्मश्री मिला
0: जी।
1: तो अलग से वो आए फोटो खिंचाने के लिए मेरे पास।
0: क्या बात है।
1: अरे कैसे हैं मजुमदार जी, अब कब मिले थे, जब वो उनके ऊपर लगा था कि वो इंटॉलरेंस और वो सब, तब से लेके ये कब मिले, और ये पद्मश्री तो मुझे 2024 में 26 जनवरी को अनाउंस हुआ कि इनको पद्मश्री दिया जाएगा रोनू मजुमदार जी को, मगर मिला तो मुझे 25 में ना, जिस दिन अवार्ड वितरण करते हैं, मगर उनको याद था कि मैं कविता करता हूँ।
0: क्या बात है,
1: कविताएं लिखना चालू है ना
0: जी। अच्छा,
1: हाँ जी।
0: हाँ, हाँ।
1: मजुमदार जी और क्या हाल है आपका,
0: क्या बात
1: तो
0: है?
1: मैं आज भी लिखता हूँ, ये मेरा लिखा हुआ है
0: जी। आप
1: सुना अजहू ना आए घनश्याम, राह तकत हारे नैन हमारे
0: जी जी।

0: वाजी वाह,
1: क्या बात है, बहुत।
0: तो इसका अंतरा लिखना है तो आज भी कितनी बंदिशें मैंने कोरोना काल में लिखे होंगे कि पूरी ग्रंथ भर गई।
1: क्या बात है।
0: जो मेरा बड़ा बेटा कह रहा है कि पिताजी छपवाइए इसको, पिताजी की बंदिशें।
1: हाँ, हमारी ओर से।
0: मैंने कहा कि मैं क्या साथ में ले जाऊंगा बेटा। बोले आप साथ में कुछ लेके नहीं जा सकते, इसीलिए दे के जाइए।
1: बिल्कुल सही बात।
0: उससे मैं जीत नहीं पाता हूँ। हाँ। मेरा जो बड़ा बेटा है वो बहुत मेरा फैन सबसे बड़ा वो है।
1: संगीत के क्षेत्र में है वो भी।
0: वो डेंटिस्ट है मगर बांसुरी बहुत अच्छा बजाता है।
1: अच्छा।
0: उसने इसको अपना प्रोफेशन, अपना व्यवसाय नहीं बनाया मगर वो प्लेइंग में कम नहीं है।
1: जी,
0: छोटे बेटे ने बनाया, ऋषिकेश ने।
1: जी जी। रोनुदा, आप एक साधक के रूप में भी जाने जाते हैं, बांसुरी को आपने साध लिया है, तो जब एक साधक अध्यात्म की ओर जाता है तो क्या होता है?
0: ओशो रजनीश के वहां भी मैंने बजाया और वो बोले कि आज तुमने बहुत अच्छा बजाया।
1: जी।
0: तो मैंने जवाब दिया मैं अपने लिए बजा रहा था। बोले क्यों? मैंने कहा क्योंकि आप पैसे तो देते नहीं है तो मैं अपने लिए क्यों ना बजाऊं। बोले कि जब पैसे मिले तब भी अपने लिए बजाना। जब अध्यात्म मालूम पड़ने लगता है तब इंसान अपने लिए बजाने लगता है। इसीलिए राजन भैया को मैं इतना मानता हूं। जब राजन भैया गए तो मैं इस तरह रोया कि जैसे बच्चे फूट फूट के रोते हैं। वो कहते थे कि जब तुम ईश्वर के लिए बजाओगे तो सब सुनेंगे, जब तुम उनके लिए बजाओगे तो वो सुनेंगे नहीं।
1: जी।
0: इसीलिए ईश्वर तो अंदर है, तो इसीलिए खुद के लिए बजाओ।
1: जी।
0: हर चीज में ऐसा सोचो कि तुम छात्र हो, सब्जेक्ट से प्यार करो, सक्सेस से नहीं।
1: जी जी।
0: आजकल जो शिष्य आते हैं मेरे पास वो पहले बोलते हैं कि यूट्यूब में मेरे लाइक्स नहीं बढ़ रहे हैं। अरे मैंने कहा यूट्यूब में लाइक्स बढ़ भी जाएंगे तो तेरा बजाना थोड़ा ही अच्छा होगा। वो तो पैसे से भी तू लाइक्स खरीदा जाता है आजकल। ये नहीं पूछ रहा है तू कि मिराजे गजल में आपने ऐसी फ्लूट कैसे बजाई थी।
1: जी जी।
0: ये क्यों नहीं पूछ रहा है?
1: बिल्कुल।
0: सलोना सा सजन और मैं हूँ, ये कैसे उसमें फ्लूट आया? कहाँ आशा जी गुलामली मिलके कर रहे हैं काम और मैं उसमें बांसुरी बजा रहा हूँ। तू ये क्यों नहीं पूछ रहा है कि जमीन आसमान में वो आपका आलाप गुरुजी, वो रे को सा करके क्यों बजाया आपने? ओरिजिनल सा में क्यों नहीं बजाया?
1: जी, तो हम तो आपसे अनुरोध कर रहे हैं पंडित जी की बजा के सुनाए हमारे श्रोताओं को।
0: देखिए मैं आपको ओरिजिनल सा से भी सुनाता हूं, आपको आनंद नहीं आएगा। अभी ठीक ठाक है, अब रे से बजाऊंगा।
1: जी।

0: ऐसे करके लुई बैंक्स घुसते हैं, मेरी बांसुरी खत्म होती है। तो मैं चाहता हूं कि जो संगीत में बांसुरी लेना चाहते हैं, अगर उसको फुल टाइम लेना है तो सक्सेस के बारे में इतना ना सोचें,
1: जी जी
0: सब्जेक्ट के बारे में सोचें। मैं कितने प्रकार के विश्व के बांसुरी ट्राई करो। अभी स्पीक मैके ने मुझे आयरलैंड भेजा था,
1: जी जी
0: आयरिश फ्लूट मुझे गिफ्ट किया उन लोगों ने।
1: क्या बात है,
0: वो ऐसी बांसुरी है कि आप देखेंगे, आज नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आयरिश बांसुरी आपको, पूरा ब्लैक है।
1: जी जी
0: तो आज भी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ
1: जी जी
0: कि कुछ ना कुछ मुझे मिलता जाए।
1: जी, अब आज की इस कड़ी को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। कल नई जानकारी और बांसुरी की तान के साथ उपस्थित होंगे फिर से। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।
2: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत

कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

हमारे दरी फिल्म का ये गीत आपने सुना, 1955 में ये फिल्म आई थी। इस गाने में आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, खुमार बारा बंकवी के बोल थे और संगीतकार थे नौशाद। अक्सर संगीतकार नौशाद के गानों में उन्हें नौशाद समझ लिया जाता है। संगीतकार नौशाद का नाम था शौकत अली दहलवी और 1947 में उन्होंने फिल्म दिलदार में सबसे पहले संगीत दिया था। उनकी जो सबसे मशहूर फिल्म है वो बारादरी है। हालांकि एक फिल्म आई थी नगमा जिसमें उनके कुछ बेमिसाल गाने थे और फिल्म नगमा के जरिए ही असल में वो नौशाद कहलाए। इससे पहले की फिल्मों में उनके जो उनका जो नाम रिकॉर्ड पर आया वो था शौकत अली दहलवी। तो नगमा फिल्म का गाना सुनते हैं। शमशाद बेगम की आवाज जे नक्षप के बोल हैं और संगीत नौशाद का, जिनकी याद का दिन आज है।

और अब संगीतकार नाशाद का अगला गाना बड़ा भाई फिल्म से है। अशा भोसले और तलत महमूद की आवाजें और गीतकार हैं प्रेम सक्सेना।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और इस कार्यक्रम में अब हम याद कर रहे हैं गायिका उमा देवी को, जो अभिनय की दुनिया में टुनटुन कहलाई।

उमा देवी की आवाज में दर्द फिल्म का ये गाना आपने सुना। 1947 में ये फिल्म आई थी, शकील बदायूनी के बोल थे और संगीत नौशाद का था। बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन 22-23 साल की उम्र में उमा देवी अपने घर से भागकर बंबई आ गई थी। उस समय ये शहर बंबई कहलाता था और नौशाद साहब ने उनका ऑडिशन लिया। दर्द फिल्म के ये गाने बड़े ही लोकप्रिय हुए और एक तरह से ये कि उमा देवी जो हैं वो एक बड़ी गायिका बन गई थी। फिर अनोखी अदा फिल्म में उन्होंने गाने गाए और एक बड़ी ही कामयाब पार्श्व गायिका के तौर पर उन्होंने अपनी जगह बनाई। लेकिन दिलचस्प बात आपको बताते हैं और वो ये कि दिलीप कुमार ने उनका नाम एक्टिंग के लिए उमा देवी की बजाय टुनटुन रखा था और लोगों ने उन्हें देखकर रुपहले पर्दे पर बहुत मजे लिए। उन्होंने पूरी जिंदगी लोगों को बहुत हंसाया।

दो फिल्मों के गीत हमने आपको सुनाए, अनोखी अदा और चांदनी रात। दोनों गाने शकील बदायूनी के और संगीत नौशाद का था। आज है उमा देवी की याद का दिन और सुबह 9:30 और रात 9:30 पर आप सुनेंगे उन्हीं पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम।

ये था उमा देवी और बाबुल की आवाजों में अंजुम जयपुरी का लिखा गीत, बिपिन बाबुल का संगीत था। इसी के साथ आज का अबूले बिसरे गीत कार्यक्रम खत्म होता है।

0: करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत

हिमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में ये गाना रविंद्र जैन का लिखा और उन्हीं का स्वरबद्ध किया हुआ था। फिल्म का नाम था क्योंकि झरोखों से।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म का नाम था हीरा लाल पन्ना लाल, मजरू सुल्तानपुरी के बोलते संगीत आर डी बर्मन का था। इसी के साथ आज का हम हेरा ही प्यार के कार्यक्रम खत्म होता है।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरे आज नौसेना में शामिल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कर समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
3: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

0: रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
1: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इकोनॉमिक जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरीज है, और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है, और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जो स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थीं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेसी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नेस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओ नमस्कार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो घर बनाकर रहता है। एक निश्चित उम्र में वो घर बसाता है और अपने परिवार को बढ़ाने की ओर अग्रसर होता है। कई तरह के पड़ाव किसी भी मनुष्य के जीवन में आते हैं, जिनमें किसी बच्चे के जन्म को सबसे खास माना जाता है। एक नन्हा सा जीव जब दुनिया में आंखें खोलता है तो सभी की आंखों का तारा बन जाता है। उसके परवरिश करते करते कई बार माता पिता को ये लगता है कि एक और संतान हो जो उनकी पहली संतान को भाई या बहन के रूप में साथ देने आ जाए।

हर व्यक्ति की चाह होती है कि उसका अंश इस दुनिया में आए। अमूमन सभी को एक संतान का होना आवश्यक लगता है, परंतु कई सामाजिक रीतियां ऐसी हैं जो ये जताती हैं कि किसी भी व्यक्ति के वंश को आगे बढ़ाने का काम उनके बेटे ही करते हैं। कई बार बेटों की चाह में भी लगातार संतान पैदा की जाती हैं और एक ही परिवार में कई बच्चे होते जाते हैं। इससे न सिर्फ जनसंख्या बढ़ती है बल्कि इतने बच्चों का पालन पोषण भी एक मुश्किल काम होता जाता है। ज्यादा बच्चों के होने से परिवार में सभी की उचित शिक्षा, उच्च जीवन और जरूरी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं। रह जाते हैं आंखों में अनगिनत अधूरे ख्वाब।

किसी भी देश की जनसंख्या एक ओर उस देश की शक्ति का प्रतीक होती है, वहीं उस देश के विकास और प्रगति के लिए जनसंख्या का नियंत्रण भी अति आवश्यक होता है। यदि किसी देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जाए तो उस देश में संसाधनों की कमी, बेरोजगारी, गरीबी और अव्यवस्था बढ़ती जाएगी। लोगों के पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पाने के लिए भी जरूरी साधन नहीं होंगे। यही कारण है कि जनसंख्या को नियंत्रित रखने के लिए समय समय पर अलग अलग जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को परिवार नियोजन की आवश्यकताएं बताई जाती हैं। कई अलग अलग स्लोगन्स के जरिए भी इस बात पर जोर दिया जाता है, जैसे हम दो हमारे दो,

तो देश और परिवार की उन्नति के लिए उचित निर्णय सभी से अपेक्षित है। इसी संदेश के साथ त्रिवेणी से दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
7: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई

0: कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे।

चित्रलू। चित्रलू कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। जाने माने अभिनेता कुमार गौरव को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां। लव स्टोरी फिल्म का गाना

लव स्टोरी फिल्म का ये गाना आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल थे, आर डी बर्मन की तर्ज थी। एक जमाना था 80 का दशक जब कुमार गौरव सभी के दिलों पर राज कर रहे थे। क्या आपको यकीन होगा कि आज उनका 70वां जन्मदिन है, यानी 80 का वो सुहाना दशक हवा हो गया और हम कहां से कहां तक आ गए। तेरी कसम फिल्म का गाना, अमित कुमार की आवाज, सुबह के 8:39, विविध भारती, जुलाई की 11वीं।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहाँ चल दिए बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
0: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने कितनी पीढ़ियों की स्मृतियों में बसी है विविध भारती की विशेष जयमाला। फिल्म जगत की तमाम मशहूर हस्तियों ने पेश किया है ये कार्यक्रम। अमिताभ बच्चन।
1: शुरू शुरू में लोग मुझसे कहते ये भी कोई नाम हुआ अमिताभ, बड़ा अजीब सा नाम है, और फिर साथ में बच्चन, लोग तुम्हें बच्चा कहेंगे। मेरे साथियों का विचार था कि इस नाम के साथ मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कोई और नाम रखने का स्वीकार नहीं किया।
0: मीना कुमारी।
2: आज मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद मानकर आपके इस खास कार्यक्रम जयमाला को पेश करने लगी हूँ।
0: जीवन।
3: फौजी भाइयों, कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था।
0: देव आनंद।
4: फौजी भाइयों, आपने 30 बरस की फौजी जिंदगी में मैंने कितनी फिल्मों में काम किया मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए कि काम में इतना मशगूल रहता हूँ कि पिछला सारा टटोल टटोल का खोज निकालने में वक्त जाता है और काम रुक जाता है। आगे की रफ्तार तेज है और रुक कर पीछे मुड़कर गुजरे हुए माइलस्टोन्स को क्यों गिना जाए।
0: बीते करीब 6 दशकों से ज्यादा वक्त से विविध भारती पर गूंज रही है विशेष जयमाला।
5: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
6: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
5: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
7: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
8: और आ गया।
7: एक और आ गया।
9: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
10: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
11: सुनिए, आप सुन रहे हैं विविध भारती।
5: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है किशोरदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: प्यार का।
1: जिन्होंने अपनी अदाओं से लोगों को मोहित किया, जिन्होंने अपनी मेहनत से हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की और महज 13 बरस की उम्र में वे मुंबई

0: चलिए दोस्तों, अब आपको बता ही देते हैं, आज के फनकार हैं गायिका उमा देवी यानी टुनटुन।
1: हमारे देश के, मेरे इधर के उधर के, आमने के सामने के, थोड़े भाइयों, थोड़े मेरे प्यारों, मेरा आप सबको बहुत बहुत मोटा मोटा आशीर्वाद, प्यार और फिर छोटा सा मुन्ना सा नमस्कार।
0: टुनटुन नाम से उन्होंने अपने अभिनय की पारी जीती। 1947 में उमा देवी को अपना पहला एकल गीत गाने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें 200 रुपए की राशि भी मिली थी और ये राशि उन दिनों बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी।
1: सुरैया जी, फिल्म स्टार सुरैया, हाय हाय हाय हाय, उन्हीं के साथ मेरा पहला मौका गाना गाने का दर्द में मिला। आप लोग काफी सुनते हैं ये गाना, उसमें मैं भी हूँ उनके साथ, उनसे लिपटी खड़ी होके गाना गा रही थी, बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से। इसी में हम दोनों ने अपनी अपनी गाने की अदायगी की है।

0: मेरी नजर।
1: दोस्तों, उमा देवी को नौशाद साहब का संगीत बहुत पसंद था। जब नौशाद साहब ने उमा देवी का ऑडिशन यानी स्वर परीक्षा ली तो वे भी उमा देवी के गायन से काफी प्रभावित हुए और जब दर्द में उन्होंने

ये गाना जब ये यूपी में पिक्चर लगी, इसका नाम है अनोखी अदा। तो साहब सिनेमा में इतने पैसे फेंकते थे इसके रिदम और गाने पर कि मैं बयान नहीं कर सकती।

0: दोस्तों, चूंकि संगीत की दुनिया बदल रही थी और नई प्रतिभाएं अपना असर दिखा रही थीं, इसलिए उमा देवी के गाने लगातार कम होते चले गए। उन्होंने अपने दोस्त दिलीप कुमार साहब से कहा कि वो अपनी किसी फिल्म में अभिनय का मौका दें। इस तरह 1950 की फिल्म बाबुल में पहली बार नजर आई दिलीप कुमार के साथ।
1: देखो, पहले मैं गाने गाती थी और अच्छी बहुत मशहूर हीरोइनों के गाने दिए मैंने, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं भी हीरोइन बन जाऊं। अब मुश्किल ये हुई कि हीरोइन सिंगल होती और मैं डबल। मैंने दिलीप कुमार जी के संग रोल लिया और वो पिक्चर थी बाबुल। बाबुल में मैं उनकी प्रेमिका थी, लेकिन मुश्किल ये हुई कि दो तीन हाथ मारे तो वो फिर पलट के कभी नहीं।
0: दिलीप कुमार ने ही उनका नया नाम रखा था टुनटुन।

0: दोस्तों, उमा देवी के गायन का सफर दोपहर की तेज धूप की तरह चमका, लेकिन इससे पहले कि शाम ढले यानी उनके गायन का सफर धीमा हो, उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। वो रास्ता था अभिनय का, और अभिनय का ये सुझाव भी संगीतकार नौशाद की ओर से ही था, और उमा देवी बन गईं टुनटुन।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: हास्य अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अनगिनत किरदार निभाए, और फिल्मी पर्दे पर लोगों को दिल खोलकर हंसाना उनका शगल बन गया।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: लोगों को उमा देवी के करियर का ये दूसरा रास्ता इतना पसंद आया कि लोग आज भी उन्हें टुनटुन के ही नाम से याद करते हैं। एक रूढ़िवादी पंजाबी

परिवार में जन्मी उमा देवी को परिवार की ओर से कोई बढ़ावा या कोई मदद न मिली, इसलिए जीवन के खट्टे मीठे रास्तों को तय करती हुई अपने हुनर को ही उन्होंने अपनी जिंदगी में मील का पत्थर बना लिया।

0: 50 और 60 के दशक में टुनटुन ही एक महिला कॉमेडियन थी जिनके पर्दे पर आते ही हॉल में ठहाके गूंजने लगते थे। उस दौर में हर दूसरी तीसरी फिल्मों में वे नजर आया करती थीं। ये थी उनके अभिनय की कामयाबी और यही थी उनकी प्रतिभा। गुरुदत्त के साथ टुनटुन ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55 और आर पार।
1: मोहब्बत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो, जी भर लो।

0: जब मिलता है सब रंज भूल खिलता है, फूल भंवरा जब मिलता है, भंवरा जब मिलता है।
1: मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें।

0: शिकायत कर लो।
1: अमिताभ बच्चन के साथ टुनटुन नजर आई फिल्म नमक हलाल में। दोस्तों, आखिरी बार टुनटुन फिल्म कसम धंधे की में नजर आई। आज उमा देवी यानी टुनटुन हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अपनी आवाज, अपने फन के जरिए आज भी हम सबके दिलों पर राज कर रही हैं।

0: दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायिका उमा देवी यानी टुनटुन पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
3: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए सौम्या शर्मा की लिखी कहानी वह पुरानी बेंच। हार हमेशा मैदान में नहीं होती, कभी कभी वो इंसान के मन में होती है। ऐसा ही कुछ यश के साथ भी हुआ था। यश की उम्र लगभग 40 वर्ष थी। एक प्रतिष्ठित कंपनी में 15 वर्षों तक काम करने के बाद अचानक कंपनी बंद हो गई और वो बेरोजगार हो गया। कई महीनों तक नौकरी ढूंढने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उसकी बचत खत्म होने लगी और आत्मविश्वास भी। हर सुबह वो अपने शहर के रेलवे स्टेशन पर जाकर एक पुरानी बेंच पर बैठ जाता। वहाँ बैठकर वो आती जाती ट्रेनों और लोगों को देखता रहता, बिल्कुल अपने बचपन की तरह। यश के पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे और छुट्टियों में वो अक्सर उसे स्टेशन ले जाया करते थे। यश घंटों वहाँ बैठकर लोगों और ट्रेनों की आवाजाही निहारा करता था, किंतु आज उसे लग रहा था कि जैसे सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, केवल उसकी ही रुक गई है।
4: जिंदगी का सफर।

इसी तरह उदास यश रोज वहाँ बैठा करता। एक दिन स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। वो अपने हाथों से बने अचार और पापड़ बेचने दूसरे शहर जा रही थी। बातचीत में पता चला कि उनके पति का कई वर्ष पहले निधन हो गया था और उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने यश को अपने हाथों से बने अचार भी चखाए और ये भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने जीवन की हर कठिनाई का सामना करते हुए ये छोटा सा व्यवसाय खड़ा किया था। उनकी बातों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक अलग ही संतोष झलक रहा था। यश ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जीवन में इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी कोई इतना प्रसन्न और उत्साही कैसे रह सकता है। वो इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने की उद्घोषणा हुई। यश ने सोचा कि उनका भारी सामान होगा, इसलिए उनकी सहायता कर दे। जैसे ही वो सामान उठाने के लिए झुका, महिला ने मुस्कुराते हुए उसे रोक दिया और बोली, बेटा ये तो मेरा रोज का काम है, मैं इसे स्वयं संभाल लूंगी। ये सुनकर यश स्वयं को रोक न सका। उसने संकोच भरे स्वर में पूछा, माताजी, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं, जीवन में इतनी कठिनाइयां आने के बाद भी आप इतनी प्रसन्न कैसे रहती हैं? क्या कभी आपका

मन हार मान लेने का नहीं हुआ। यश के प्रश्न को सुनकर पहले तो महिला मुस्कुराई, उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर वर्षों के संघर्ष से उपजा आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जीवन में मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं। अगर मैं हार मान जाती तो मेरे बच्चों का भविष्य भी हार मान जाता, इसलिए मैं चलती रही। और एक बात मैंने जीवन में और सीखी है, जब तक हम चलते रहते हैं जिंदगी भी चलती रहती है।

अपनी बात कहकर उन्होंने यश के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और वो मुस्कुराते हुए अपनी ट्रेन की ओर बढ़ गईं। लेकिन उनके शब्द यश के मन में देर तक गूंजते रहे। जब तक हम चलते रहते हैं, जिंदगी भी चलती रहती है। अगले दिन यश फिर उसी रेलवे स्टेशन की बेंच पर आकर बैठ गया। तभी एक मनमोहक धुन ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो धुन स्टेशन के प्रथम श्रेणी विश्राम गृह से आ रही थी। सुरों में ऐसी मिठास थी कि कुछ क्षणों के लिए यश अपनी चिंताएं भूल गया और उस संगीत के स्रोत की ओर बढ़ चला। उनकी मधुर आवाज सुनकर अनेक यात्री मंत्रमुग्ध हो गए थे और आसपास खड़े थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुछ क्षणों के लिए पूरे स्टेशन का वातावरण ही बदल गया हो। यात्रियों की भागदौड़, ट्रेनों का शोर और प्लेटफॉर्म के चहल पहल सब उस संगीत के सामने फीके पड़ गए थे।

जब संगीत थमा तब तक यश उस विश्राम गृह के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। वो दरवाजे पर खड़ा होकर उस कलाकार को निहार रहा था। तभी भीतर से आवाज आई, कौन हूँ भाई, क्या मेरा खाना आ गया? अचानक आवाज सुनकर यश थोड़ा घबरा गया और वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। तभी उस व्यक्ति ने फिर बड़े स्नेह से कहा, अरे रुकिए, क्या मेरा खाना आ गया है? तभी यश को एहसास हुआ कि वो व्यक्ति दृष्टिहीन था। ये जानकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा और उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा, खाना आ गया? उसकी खुशबू तो नहीं आ रही। इस बार यश ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, मैं खाना लेकर नहीं आया हूँ, दरअसल आपके धुन सुनकर यहाँ चला आया था, मैं तो बस एक राहगीर हूँ। ये सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। अच्छा, तो संगीत तुम्हें यहाँ तक खींच लाया, उसने हंसते हुए कहा। फिर उसने यश को पास बैठने का इशारा किया, हाँ बैठो, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, मेरे साथ ही भोजन लेने गए हैं, उनके आने में भी थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम ही मेरा साथ दे दो। यश बिना कुछ कहे उनके पास चुपचाप बैठ गया। उसे पता नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में होने वाली ये बातचीत उसके जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने वाली थी। बातचीत के दौरान यश को महसूस हुआ कि सामने बैठा व्यक्ति न केवल एक असाधारण संगीतकार था, बल्कि एक अत्यंत विनम्र और सकारात्मक सोच वाला इंसान भी था। उसकी बातों में आत्मीयता थी और चेहरे पर एक अजीब सा संतोष। यश के मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि इतना प्रतिभाशाली और अच्छा इंसान होने के बावजूद भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया होगा? ये प्रश्न उसके मन में लगातार उठता रहा। अंततः वो स्वयं को रोक न सका और संकोच भरे स्वर में बोला, यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? संगीतकार हल्के से मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, पूछो बेटा। यश कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतना सुंदर संगीत रचते हैं, फिर भी भगवान ने आपसे आपकी दृष्टि छीन ली, क्या आपको कभी अपनी किस्मत से शिकायत नहीं हुई? यश के प्रश्न के बाद कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा

सन्नाटा छा गया। संगीतकार के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, मानो उसने ये प्रश्न पहले भी अनेक बार सुना हो। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, पहले बहुत होती थी, मैं हमेशा यही सोचता था कि भगवान ने मुझसे मेरी आंखें क्यों छीन ली। लेकिन एक दिन मेरे गुरु ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपसे क्या छिपा है, आंखों के बिना अब ये सब कैसे संभव होगा। मेरी बात सुनकर गुरुजी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, बताओ संगीत के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उत्तर दिया, संगीत का वाद्य यंत्र। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं। फिर मैंने कहा, आवाज? उन्होंने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं। मैंने तीसरी बार उत्तर दिया, संगीत की शिक्षा। इस बार भी उन्होंने कहा, नहीं। संगीतकार कुछ क्षणों के लिए रुक गया, मानो वो उस दिन को फिर से जी रहा हो। फिर गुरुजी ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ये तो बाद में सोचेंगे कि संगीत के लिए सबसे जरूरी क्या है, पहले ये बताओ कि जिन चीजों को तुम सबसे आवश्यक मानते हो, क्या वे अभी भी तुम्हारे पास हैं? मैंने बिना सोचे उत्तर दिया, हाँ वे सब तो मेरे पास ही हैं गुरुजी। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तो फिर शुरुआत कर दो। कुछ पलों तक तो मैं उनकी बात का अर्थ समझ ही नहीं पाया, लेकिन जब मैंने अपने ही दिए हुए उत्तरों के बारे में सोचना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी दृष्टि चली गई थी, पर मेरे वाद्य यंत्र मेरे पास थे, मेरी आवाज मेरे पास थी और वर्षों की साधना से प्राप्त संगीत की शिक्षा भी मेरे पास थी। मैं उस एक चीज के शोक में डूबा हुआ था जो मुझसे छिन गई थी, और उन अनमोल चीजों को भूल चुका था जो अभी भी मेरे पास थी। ये कहते हुए संगीतकार के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसने आगे कहा, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी कमी को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। ये कहकर उसने हारमोनियम पर एक मधुर सुर छेड़ा और कहा, जब मैंने अपनी कमी के बजाय अपनी क्षमता पर ध्यान देना शुरू किया, तभी मेरी जिंदगी बदल गई। और वो गाने लगा।

तभी उनके साथी भोजन लेकर कमरे में आ गए। बातचीत का सिलसिला वहीं थम गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। फिर उन्होंने अपने साथी का परिचय करवाया और कहा, बेटा जीवन में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है, जो नहीं है उसकी चिंता कम करो और जो है उसका सदुपयोग अधिक करो। यश जाने लगा तो उनके साथी ने मुस्कुराते हुए बताया, शायद आपको पता नहीं है लेकिन आप जिनसे बात कर रहे हैं वे देश के एक प्रतिष्ठित संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। इनके शिष्यों में कई प्रसिद्ध गायक और संगीतकार शामिल हैं। ये सुनकर यश कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति ने अपनी दृष्टि खो दी थी उसने हार मानने की बजाय अपने जीवन को इस तरह संवारा था कि आज वो न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। यश वहां से लौट तो आया लेकिन उस सज्जन के शब्द और उनकी मुस्कान देर तक उसके मन में गूंजती रही। उसके मन में विचारों का एक नया द्वार खुल चुका था। उसे लगने लगा कि शायद समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें अपनी सोच में बना लेते हैं। विचार बदल रहे थे लेकिन निराशा ने अब भी यश का साथ नहीं छोड़ा था। एक सप्ताह बाद स्टेशन की उसी बेंच पर एक सैनिक आकर यश के बगल में बैठ गया। यश के चेहरे पर छाई निराशा को देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने हताश क्यों दिखाई दे रहे हो? यश ने अपनी नौकरी छूटने से लेकर भविष्य की चिंताओं तक सारी बातें उसे बता दी। सैनिक शांत भाव से उसकी बातें सुनता रहा, फिर वो बस मुस्कुरा दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। यश ने जब ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो हाथ असली नहीं बल्कि कृत्रिम था। वो सैनिक लगभग उसी की उम्र का था। सैनिक ने धीमे स्वर में कहा, ये हाथ मैंने सीमा पर एक युद्ध के दौरान खो दिया था। कुछ पल रुककर वो आगे बोला, उस दिन दुश्मन लगातार हमला कर रहा था, मेरे कई साथी घायल हो चुके थे। मैंने अपना एक हाथ खो दिया और असहाय होकर अपने साथियों को संघर्ष करते हुए देख रहा था। उस समय मुझे लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों में उस युद्ध की यादें छलकने लगी थीं। तभी मेरी नज़र अपने एक साथी पर पड़ी। उसने अपनी एक आंख खो दी थी, खून बह रहा था, फिर भी उसने कपड़े से घाव बांधा और अपनी दूसरी आंख से दुश्मन पर नजर टिकाए रखा। वो लगातार जवाबी हमला कर रहा था। सैनिक ने गहरी सांस ली और कहा, उस जांबाज को देखकर मेरे मन में एक विचार आया, यदि वो एक आंख खोने के बाद भी लड़ सकता है तो मेरे पास तो अभी एक हाथ बाकी है। मैंने बिना देर किए दूसरे हाथ से बंदूक उठाई। उसे संभालना आसान नहीं था लेकिन मैंने हार नहीं मानी। किसी तरह उसे सहारा देकर निशाना साधा और दुश्मन पर हमला शुरू कर दिया।

उस पल की बात याद करते हुए सैनिक के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। उस दिन हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, बल्कि अपनी परिस्थितियों के सामने हार ना मानने का संकल्प भी जीत लिया था। फिर उसने यश की ओर देखते हुए कहा, जवान, इंसान तब नहीं हारता जब वो कुछ खो देता है, वो तब हारता है जब जो बचा है उसकी कीमत भूल जाता है। मैंने एक हाथ खोया था, लेकिन दूसरा हाथ अभी भी मेरे साथ था। तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारी योग्यता और हिम्मत नहीं। उस रात यश बहुत देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हो चुका था कि वो अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बना चुका था। सैनिक ने युद्ध में अपना एक हाथ गवाया था, अपने कई साथियों को खोया था, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष था। उन माताजी ने भी जीवन की असंख्य कठिनाइयों का सामना किया था, फिर भी उनके चेहरे की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी थी और उस दृष्टिहीन संगीतकार ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, फिर भी उसके जीवन में आशा और उसके सुरों में उत्साह का प्रकाश आज भी विद्यमान था। इन तीनों ने कुछ न कुछ खोया था, फिर भी वे जीवन से नाराज नहीं थे। शायद समस्या मेरी परिस्थितियों में नहीं, मेरी सोच में थी। जीवन में मुश्किलें सबके हिस्से में आती हैं। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उनसे हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही यश ने ये सोचा, उसने ठान लिया कि उसे कुछ करना है। अगले दिन जब यश स्टेशन पर बैठा लोगों को देख रहा था, तभी उसकी नजर एक परिवार पर पड़ी। वे पहली बार उस शहर में आए थे और होटल, टैक्सी तथा शहर के प्रमुख स्थानों की जानकारी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। कोई उन्हें अलग दिशा बता रहा था तो कोई उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अधिक पैसे मांग रहा था। ये देखकर यश को एहसास हुआ कि ऐसी समस्या केवल उस परिवार की नहीं, बल्कि प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि यदि यात्रियों को सही जानकारी और उचित मार्गदर्शन एक ही स्थान पर मिल जाए तो उनकी परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। उसी समय उसे उन तीनों लोगों की बातें याद आ गईं, वृद्धा का संघर्ष, संगीतकार का आत्मविश्वास और सैनिक का साहस। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद जीवन उसे किसी नए रास्ते की ओर ले जाना चाहता है।

यश ने अपनी बची हुई थोड़ी सी पूंजी इकट्ठा की और स्टेशन के बाहर एक छोटी सी मेज और कुर्सी लगाकर सूचना एवं सहायता केंद्र शुरू कर दिया। उसने एक साधारण सा बोर्ड बनवाया जिस पर लिखा था, यात्री सहायता केंद्र, सही जानकारी, उचित मार्गदर्शन। शुरुआत आसान नहीं थी। कई दिनों तक मुश्किल से कोई ग्राहक आता। कभी कभी पूरे दिन की कमाई इतनी भी नहीं होती कि उसका खर्च निकल सके। कई लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। नौकरी नहीं मिली तो अब ये काम शुरू कर दिया, कुछ लोग ताना मारते। लेकिन इस बार यश पहले वाला यश नहीं था। उसने हार मानने के बजाय धैर्य रखना सीखा था। वो मुस्कुरा कर लोगों की सहायता करता रहता। फिर धीरे धीरे यात्रियों को उसकी ईमानदारी और विनम्र व्यवहार पर भरोसा होने लगा। जो लोग उसकी मदद से संतुष्ट होते वो दूसरों को भी उसके बारे में बताते। कुछ ही महीनों में उसका छोटा सा सहायता केंद्र यात्रियों के लिए भरोसे का नाम बन गया। समय बीतता गया, यश ने अपने काम का विस्तार किया। उसने होटल बुकिंग, स्थानीय परिवहन, पर्यटन मार्गदर्शन और आपातकालीन सहायता जैसी सेवाएं भी शुरू कर दी। बढ़ते काम के साथ उसने कुछ बेरोजगार युवाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया। कुछ वर्षों बाद वही छोटा सा सहायता केंद्र एक सफल ट्रैवल और यात्री सेवा संस्थान में बदल चुका था। वहां कई लोगों को रोजगार मिल रहा था और प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की सहायता की जा रही थी। एक दिन यश अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर देख रहा था और दूर उसे वही रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा था और उसके सामने रखी वही पुरानी बेंच भी। अनायास ही उसके कदम वहां की ओर बढ़ गए और वो जाकर खड़ा हो गया। उसने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान उभर आई। वही बेंच जो कभी उसकी निराशा की साक्षी थी, अब उसके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी। उसे एहसास हुआ, यदि उस दिन वो निराशा में डूबकर हार मान लेता तो शायद ये सब कभी संभव नहीं हो पाता। उस दिन स्टेशन पर एक ट्रेन सीटी बजाती हुई आगे बढ़ गई। यश ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी भी इसी ट्रेन की तरह फिर से चल पड़ी है।

यश कुछ देर तक उसी बेंच के सामने खड़ा रहा। उसके मन में अतीत की अनगिनत यादें उमड़ पड़ी, वृद्धा की मुस्कान, संगीतकार के शब्द और सैनिक का साहस। तभी एक युवक आकर उसी बेंच पर बैठ गया। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वो बार बार अपना सिर झुकाकर गहरी सांसें ले रहा था। यश ने उसे कुछ देर तक देखा। उसे लगा मानो वो वर्षों पहले के स्वयं को ही देख रहा हो। यश धीरे धीरे उसके पास गया और बेंच पर उसके बगल में बैठ गया। कुछ पल तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर यश ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? युवक ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसके भीतर दबा हुआ दर्द शब्दों में निकलने लगा। उसने अपनी असफलताओं, बेरोजगारी और भविष्य की चिंताओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसकी बातें सुनकर यश की आंखों के सामने अपना ही अतीत घूम गया। वो हल्का से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें तीन लोगों की कहानी सुनाता हूँ। और फिर उसने उस वृद्धा, उस दृष्टिहीन संगीतकार और उस सैनिक की कहानी सुनानी शुरू कर दी, जिन्होंने कभी उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। कहानी समाप्त होते होते युवक के चेहरे पर भी आशा की एक हल्की सी किरण दिखाई देने लगी। यश बेंच से उठा और मुस्कुराते हुए बोला, याद रखना दोस्त, जीवन में अंधेरा स्थायी नहीं होता, बस चलते रहना पड़ता है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो युवक अब पहले की तरह निराश नहीं लग रहा था। उस पल यश को एहसास हुआ कि वर्षों पहले जिन तीन अनजान लोगों ने उसकी मदद की थी, आज वही कहानी किसी और के जीवन में आशा जगा रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, शायद सकारात्मक सोच की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जल उठता है।

जीवन में सभी कुछ ना कुछ खोते ही हैं, परंतु जो बचता है उसी से नया भविष्य बनाना हमारे हाथ में है। सकारात्मक सोच परिस्थितियों को नहीं बदलती, लेकिन परिस्थितियों का सामना करने की हमारी शक्ति को बदल देती है, और यही शक्ति हमें सफलता तक पहुंचाती है।

गीतों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे सौम्या शर्मा की लिखी कहानी वो पुरानी बेंच, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और लेकर आई हूं चित्रपट संगीत।

पेंटर बाबू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। रचना थी कतील शिफाई की। आइए अब सुने ये गाना, फिल्म का नाम हीर राँझा। मोहम्मद रफी की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू

मजूमदार संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: हां जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

शंकर हुसैन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल थे, खयाम का संगीत था। आइए अब सुने आनंद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार की रचना है, सलिल चौधरी का संगीत।

आनंद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज थी। इसी के साथ चित्रपट संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम प्रस्तुत है मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सुनवा रहे हैं बारिश वाले गीत। देश के बहुत सारे हिस्सों में बरसात हो रही है और कुछ जगहों पर बरसात नहीं हो रही है। जहां पर बरसात नहीं हो रही है, इस शुभकामना के साथ ये गाने सुनवा रहे हैं आप तक। बरसात फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे अरे अरे ना ना ना।

0: नमक हलाल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। अनजान की रचना थी, बप्पी लहरी का संगीत था।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
0: विविध भारती पर, अब आपको सुनवा रहे हैं लगान फिल्म का गाना, उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में।

लगान फिल्म का गाना उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, शान और साथियों की आवाजें थी। जावेद अख्तर के बोल, एआर रहमान का संगीत था। फिल्म 1942 अ लव स्टोरी, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाजें हैं। जावेद अख्तर के बोल

अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
1: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ये आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
0: विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। श्री टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक सशक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग हो सकता है, लेकिन उन्हें दृढ़ संकल्प और सेना के साहस के साथ ही जीता जा सकता है। विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के 6ठे स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का

0: आज जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इसमें उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया है।
1: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को ही सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले तीन दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले पांच दिन भारी बारिश की संभावना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में एक विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे इंग्लैंड के साथ खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जाने माने अभिनेता कुमार गौरव का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं और कुछ गाने उन्हीं के नाम। फिल्म लव स्टोरी लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

लव स्टोरी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज। लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। ये फिल्म है नाम, पंकज उधास और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: में रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार राहुल देव बर्मन।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: तेरे नाम इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा था, धुन बनाई थी हिमेश रेशमिया ने।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदा

0: रजिया सुल्तान फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे कब्बन मिर्जा की आवाज में। निदा फाजली के बोल थे, खयाम का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जुबैदा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में। शब्दकार थे जावेद अख्तर और संगीतकार एआर रहमान। फिर तेरी कहानी याद आई, ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। अलका याग्निक की आवाज, कतील शिफाई के बोल हैं।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

साजन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। रचना थी समीर की, संगीतकार नदीम श्रवण। 1947 अर्थ फिल्म का गाना सुनिए साधना सरगम की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल यार रहमान का संगीत।

1947 अर्थिस फिल्म के गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं सुरीला सफर कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। वैसे जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर हैं, जुड़े हैं, उन्हें पता चल गया होगा कि आज की इबारत क्या है, लेकिन जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर मौजूद नहीं है, उनके लिए हम आज की इबारत बता देते हैं। वैसे संक्षेप में बता दें कि इस कार्यक्रम का स्वरूप ये है कि हम एक इबारत पोस्ट करते हैं और उस इबारत से जुड़ी हुई बातें आपको साझा करनी है। उनमें जो शब्द शामिल होते हैं, उन शब्दों से गीत आपको चुनने होते हैं और कुछ गीत हम अपने आप सहेज कर रखते हैं, तो देखते हैं कि आपके और हमारे गाने कितने मैच करते हैं। बहरहाल, इबारत जरा हम पढ़कर आपको सुना दें। ये दिल बड़ा अजीब है, कभी खुद से रूठ जाता है, कभी जमाने से, कभी खुशियों की पालकी पर इंतजार के मोती पिरोता है, तो कभी यादों की नदी में डूबकर मुस्कान सजा लेता है, कभी अनकही बातों के बोझ तले खामोश हो जाता है और हर सुबह नई आशाओं के दीप जलाकर मुस्कुरा उठता है, कभी उदास शाम को तन्हाई की चादर ओढ़ चांद का रास्ता देखता है। शायद इसी का नाम दिल है, जो टूट कर भी खामोशियों और तन्हाइयों को गुनगुनाता हुआ प्यार या प्रेम को जिंदगी में घोल लेता है। बहुत सारे श्रोताओं ने आज टिप्पणियों में गाने लिख डाले हैं, जिनमें बहुत सारे गाने हमने चुन रखे हैं, वही जो आप सुनना चाहते हैं। दोस्तों, लेकिन ये बात जरा हमें बताइए कि कौन सी वो बात है जो आपके दिल में आई और आपने उसे बड़ी रुखाई के साथ नजरअंदाज कर दिया। कौन सी वो बात है जब आपने अपने दिल की बात सुनी और मानी? कौन सा ऐसा मौका आया जब

दिल और दिमाग में द्वंद्व हुआ। वैसे दिल बहुत जज्बाती है, तो दिल पर बोझ ज्यादा न डालें। अपने दिल की हिफाजत के लिए रोजाना आप क्या करते हैं, ये भी जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर बताइएगा। और हाँ, आज की इस इबारत में इंतजार भी है, खामोशी है, रास्ता है और बहुत कुछ है, तो शब्दों से जुड़ी हुई बातें भी आप लिख सकते हैं। शब्द ढूंढिए, उसमें कौन से शब्द हैं जिस पर गाने हैं, और गाने हमें सुझाते चलिए। हम सुनवा रहे हैं ये गाना, और इस गाने का जिक्र बहुत सारे श्रोताओं ने किया है। जरा देखिए, आपका गाना भी तो यही नहीं है या कोई और गाना है? कौन है हीरोइन पर्दे पर, ये भी बताइएगा, और गीतकार का नाम भी आपको बूझना है। फिल्म अनुपमा। संगीतकार का नाम पता है क्या आपको? हेमंत कुमार।

कुछ दिल ने कहा। दोस्तों बताइए जरा, आपके दिल ने कब क्या कहा और आपने किन लम्हों में खुद से गुफ्तगू की, ये बताते चलिए। और साथ में किसका इंतजार कब किया और कब किसी के इंतजार में दिया।

दीप जलाए, कौन से वो गाने हैं? हमने तो आपको हिंट भी दे दिया कि कौन कौन से गाने हैं, देखते हैं कि कौन से श्रोता लिख पाते हैं हमने जो गीत चुना है वो। बहरहाल ये तो श्रोताओं वाला ही गाना था। बहरहाल आगे बढ़े और आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचाते चलें। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी अपने का इंतजार दिल की सबसे खूबसूरत आदत है, हर आहट में उसका एहसास, हर दस्तक में उसके आने की आहट सुनाई देती है। जब किसी अपने के आने का इंतजार रहता है तब घड़ी की सुइयां भी जैसे थोड़ी धीरे चलने लगती हैं। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बहुत खूब है आज की इबारत जो हमें सिखाती है कि दिल का अजीब होना ही उसकी खूबसूरती है। यदि दिल में उदासी न हो तो खुशियों का मूल्य समझ में ही नहीं आएगा, और यदि वो इंतजार के मोती न पिरोए तो मिलने का आनंद अधूरा रहेगा। दिल दरअसल विपरीत भावनाओं, खुशी गम शोर खामोशी तन्हाई प्यार के बीच संतुलन बनाने की निरंतर कला है। तो अब बात इंतजार की चली है, मतलब दो श्रोताओं ने लिखा इंतजार की बात, तो इंतजार वाला गाना सुनते हैं, फिल्म छलिया। आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, लता मंगेशकर की आवाज़।

छलिया फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। श्रोताओं ने गीतकार संगीतकार का नाम बिल्कुल सही बताया। इसके पहले हमने आपसे पूछा था अनुपमा फिल्म के गाने में कौन है हीरोइन, सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया, शर्मिला टैगोर, और गीतकार का नाम भी बिल्कुल सही फरमाया, कैफी आजमी। और अब अगला गीत क्या हो सकता है।

रबूझिए तो हम आपको हिंट दे रहे हैं कि कौन सा ऐसा मौका आता है जब आप दीप जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, किस खुशी के मौके पर, ये बताइए और गाना बूझिए। तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जिस भी उम्र में जो चीज दिल को छूती है यादों में शामिल हो जाती है, कोई गहरी संवेदना एक रूप में ढलकर एक आहट बनकर बस अपनी बात कह रही हो, जैसे कि फिल्म अनुपमा का ये गीत कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं जुगनू तभी चमकता है जब तक उड़ता है, कमोवेश यही हाल दिल का भी है, जब इसकी धड़कन रुक जाए तो हम भी थम जाते हैं। दिल के मौसम का हाल ख्यालों और ख्वाबों की मखमली जमीन से जुड़ा है, इसलिए दिल को कभी मुरझाने मत देना, इसे अपने खूबसूरत विचारों से हमेशा सजाए रखना। क्या बात कही है, सचमुच अपने दिल की हिफाजत भी करनी चाहिए, क्योंकि दिल कई बार कमजोर भी हो जाता है, कई बार जज्बाती हो जाता है, कई बार बोझ सहन नहीं कर पाता है, इसलिए अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के टेंशन्स हैं, तनाव हैं, उन्हें दूर भगा दीजिए और दिल को बिल्कुल खाली रखिए, बिल्कुल खाली बर्तन की तरह। और हाँ, अभी हमने बूझने के लिए कहा है कि कौन सा गाना होगा, ज़रा बूझते रहिए, आपकी टिप्पणी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक श्रोता ने लिखा है, कभी ये खुशियों की पालकी में बैठकर सपनों के आकाश में उड़ने लगता है, तो कभी इंतजार के मोती चुनते चुनते यादों की नदी के किनारे जा बैठता है, कभी मुस्कान की रोशनी से चेहरा जगमगा उठता है, तो कभी अनकही बातों का बोझ इसे खामोश कर देता है। मेरी इबारत को थोड़ा हेर फेर करके लिख दिया है इन्होंने। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता ने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल को मनाने की भी कला होना जरूरी है। हम सभी को प्रभु परमेश्वर ने दिमाग सर से भी नवाजा है, इसलिए अगर जिंदगी की सही पारी खेलनी है तो अपने दिल भाई साहब को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। तो बताइए, आप कब अपने दिमाग की सुनते हैं, कब दिल को इग्नोर करते हैं, ये भी बताते चलिए। और सच बात तो ये है कि जब कोई निर्णय लेना पड़ता है तो दिल को हमें नज़रअंदाज करके दिमाग की सुननी पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा रहे हैं अब चित्तचोर फिल्म का गाना। और हमने आपसे पूछा था कि कब किन मौकों पर दीप जलाते हैं आप, जरा ये बताइए कि फिल्मी पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, कौन कह रहे हैं एक दूसरे से ये बात। हीरो हीरोइन का नाम पूछना है, फिल्म चित्तचोर, ये सुदास और हेमलता की आवाजें हैं।

चितचोर फिल्म का गाना था, येसुदास और हेमलता की आवाजें थी। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। बहुत त्वरित जवाब आया श्रोताओं की ओर से और सही जवाब आया अमोल पालेकर और जरीना वहाब पर्दे पर होते हैं। और एक भी श्रोता ने गलत जवाब नहीं दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो दीप जलाने की परंपरा दिवाली के त्योहार के दौरान होती है, पर अपने घर के मंदिर में तो रोज ही दीपक जलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि पर, नववर्ष पर, दीपावली पर और कुछ साल पहले तो शाम होते ही हमारा काम दिया जलाकर रखने का होता था, बिजली हर वक्त नहीं रहती थी। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि दीप जलाने की परंपरा, तो जब खुशी का मौका आता है तब भी हम दीप जलाते हैं, बिल्कुल खुशी में हम दिए जलाते हैं। और खुशी का दीप जलाने की बात दिल से भी होती है कि दिल आपका, जब आप खुश होते हैं तो अपने आप दिल में खुशी का दिया जलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज की तरह होता है, इसे सुचारू रूप से चलने के लिए ब्लड प्रेशर को संतुलित रखना पड़ता है। एक श्रोता ने लिखा है कि 2014 को हृदय की शल्य चिकित्सा हुई थी, तब डॉक्टर साहब ने एक बहुत सही सलाह दी थी, आज के बाद किसी भी स्थिति में सुख में बहुत ज्यादा खुश न हो, बस प्रसन्नता को खुशबू की तरह महसूस करते रहो और दुख का समय आए तो बहुत ज्यादा दुख में न घिरते हुए अपने आप को संभाल कर रखो। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जिंदगी के चौराहे पर अक्सर हम खुद को खड़ा पाते हैं, जहां एक तरफ दिमाग की ठंडी दलीलें होती हैं और दूसरी तरफ दिल की बेबाक पुकार। दिमाग नफा नुकसान देखता है, गणित लगाता है, लेकिन दिल सिर्फ सुकून ढूंढता है। और सच तो ये है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत फैसले, चाहे वो किसी से बे इंतहा मोहब्बत हो या किसी अजनबी की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, हमेशा

दिल से ही लिए जाते हैं फैसले। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। और जरा आप ये भी बताइए कि कब आप खामोश हो जाते हैं दोस्तों के बीच, कौन सी वो घड़ी है जब आपको लगता है कि हाँ तो चुप रह जाना ही बेहतर है, या घर परिवार में कौन सा ऐसा लम्हा आता है जब आपको लगता है कि चलो जाने दो, खामोश रहो, छोड़ो हटाओ, ये बात आती है। और जब आप तन्हा होते हैं तो आप अपना दिल कैसे बहलाते हैं, कोई गीत सुनते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, या फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं यूं ही बेसबब, तो अपनी बात आप बताते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है, फिल्म आकाशदीप, तो सुन लीजिए यही गाना, दिल का दिया जलाकर। जरा गीतकार और संगीतकार का नाम बूझिए। यहाँ तन्हाई भी है, दिल भी है, क्या नोटिस किया आपने?

आकाशदीप फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, रचना थी मजरू सुल्तानपुरी के, संगीतकार चित्रगुप्त, और ये हमारा सवाल भी था, श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रस्तुत गद्य इबारत की इबादत से निकले शब्दों में, मतलब इबारत से निकले शब्दों में दिल बड़ा अजीब, कभी खुद से रूठ जाता है, जमाने से, सुबह शाम, उदास, तन्हाई जैसे अनेक संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाले शब्द हैं, तो इन शब्दों की भरमार है, तो मेरे हिसाब से गीत कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, और गीत के बोल इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल की दास्तान की क्या कहें, आशा निराशा के समुद्र

समुद्र में हिचकोले खाता है, कभी किसी बीती बातों को दुखद याद करके मायूस हो जाता है, आंखें झरझर बहने लगती हैं, फिर अपने आप को दिलासा देकर शांत होकर अगली भोर की आशाओं की किरण के साथ प्रफुल्लित होकर एक नई ऊर्जा से भर जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब कोई मित्र परिवार का सदस्य अपने दिल का हाल या दुख बांट रहा हो तो उन्हें ज्ञान, सलाह या उपदेश की जरूरत नहीं होती। उस वक्त आपका एक शांत श्रोता बनकर उनकी बात को सुनना ही आपके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। मतलब ऐसे मौके पर आप शांत रह जाते हैं। तो अब क्या बात है, थोड़ी मुस्कुराने की बात की जाए, तो अपने मुस्कुराने की बात आप बताइए कि कब आप मुस्कुरा पड़ते हैं। कभी कभी यूं ही बैठे बैठे लोग मुस्कुरा उठते हैं अपने आप। कुछ लोग मोबाइल में कुछ टेक्स्ट देखकर, कुछ मैसेज देखकर मुस्कुरा उठते हैं। आजकल तो रील देखकर मुस्कुराने का जमाना बड़ा गजब का है। जरा अपने अनुभव भी साझा कीजिए, आप कब और कैसे मुस्कुराते हैं। बच्चों की नटखट शरारतों पर मुस्कुराना होता है, तो बताइए। फिल्म का नाम आपको बूझना है, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।

भाई, किसी की मुस्कुराहट से आपका दिल बहल जाए तो मुस्कुराना ठीक है, बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी के लिए मुस्कुराना। और कभी कभी यूं ही खुद से गुफ्तगु करते हुए भी हम मुस्कुरा पड़ते हैं। बहरहाल, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हम कब कैसे मुस्कुराते हैं। ज़रा ये बताइए कि एक गाना है रूठने मनाने का, इसमें तो रूठना शब्द भी है, आप शायद भूल गए। उसके लिए बहुत कम श्रोताओं ने गाने लिखे हैं रूठने वाले। एक ऐसा गाना हम आज खोज कर ले आए हैं जिन्हें आप कभी कभार सुनते होंगे या ना के बराबर सुने हो वो, लेकिन विविध भारती के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में वो गाना बजाया जाता है, प्रसारित किया जाता है। तो कोई ऐसा गाना रूठने वाला याद आ रहा है आपको तो जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जरूर बताइए।

चाहिए और हम उसे देख रहे हैं और आपकी टिप्पणी वहां पर सुरक्षित रहती है और सेव रहती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने तो अकेले लोगों के दुखती रग पर हाथ रख दिया, पत्नी के गए एक साल से ऊपर हो गए, कैसे दिन गुजरते हैं, कैसे दिल को समझाकर रखा है हम ही जानते हैं, और बेड पर एक रेडियो है, रात 11 बजे तक विविध भारती सुनते रहते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल तो है, क्या कहना इसका, कभी बिना वजह मुस्कुरा देता है, कभी छोटी सी बात पर उदास हो जाता है, ये रिश्तों में अपनापन ढूंढता है, यादों में सुकून तलाशता है और उम्मीदों के सहारे हर दिन एक नई शुरुआत कर लेता है, टूट कर भी धड़कना नहीं छोड़ता, हार कर भी प्यार करना नहीं भूलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मानव शरीर का मुख्य अंग हृदय यानी दिल होता है, जिंदा रहने के लिए दिल यानी हृदय का धड़कना जरूरी है, उसी तरह आकाशवाणी रूपी शरीर का दिल देश की सुरीली धड़कन विविध भारती है, जिसे हर इंसान यानी श्रोताओं के मनोरंजन के लिए दिन रात धड़कना जरूरी होता है, तभी तो हमारे आपके रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, दोपहर 1 बजे सुरीला सफर में जुड़ने याद उनको भी आती तो होगी, हमने तो हमारे दिल की गिरह खोल दी है चुप न बैठकर, हमारे दिल ने कुछ कहा, कुछ भी नहीं, कुछ भी लिख दिया। भाई, आपका लिखा और आपका कहा विविध भारती के फेसबुक पेज तक पहुंच गया और अब श्रोताओं तक भी पहुंच गया, करोड़ों श्रोता जान गए आपके दिल की बात। चलिए अब हम इंतजार की बात करते हैं और आपको पूछना है पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, कलाकार का नाम और साथ में स्वर और संगीत किसका है। रूठने वाला गाना भी आपको याद करना है।

खामोशी फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, राजेश खन्ना और वहीदा रहमान, स्वर और संगीत भी पूछा था लेकिन बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है हेमंत कुमार और गुलजार के बोल थे। और हमने आपसे पूछा था रूठने पर एक ऐसा गाना है जो आपने कभी कभार ही सुना होगा, विविध भारती के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम से हम प्रसारित करते हैं वो गाना।

एक ऐसा गाना है जो आपने कभी कभार ही सुना होगा। विविध भारती के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम से हम प्रसारित करते हैं वो गाना, तो उस गाने का जिक्र अभी तक किसी ने नहीं किया, लेकिन जिसने गानों के जिक्र किए हैं जिन श्रोताओं ने, वो ये गाने हैं, रूठे सैया मनाऊं कैसे, रूठा है तो मना लूंगा, और एक श्रोता ने लिखा है तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, ये गाना बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, रूठा है तो मना लेंगे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, ओ दिलवर जानिया रूठने मनाने में बीत न जाए जवानियां, और रूठो ना हमसे ओ बच्चों की नानी, और एक श्रोता ने लिखा है देखो रूठा न करो अजी रूठ कर अब कहां जाइएगा। भाई ये सारे गाने तो आप अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन ये वाला गाना पिछली बार कब सुना था, जरा याद हो तो बताइएगा। फिल्म का नाम अगर बता सके तो बताइए। गीतकार का नाम भी बताइए। फिल्म का नाम, गीतकार का नाम आपको बूझना है, पहेली जरा कठिन है।

मासूम बच्चों की मासूम हरकतें देखकर हंसी आ जाती है, ये इस बात पर है कि कब किन लम्हों में आप मुस्कुराते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि रूठना मनाना अच्छा जी मैं हारी, ये वाला गाना लिखा है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है रूठने पर गाने, लेकिन ये भी बताइए कि जब कोई रूठ जाता है आपसे तो आप मनाते हैं या आप रूठने वाले को यूं ही छोड़ देते हैं, जाओ भाड़ में जाओ रूठे रहो हम तो नहीं मनाएंगे। आप मनाते हैं या आप मनुहार करवाते हैं, दोनों बातें लिखिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं तन्हा होता हूँ तो या तो मोबाइल ऐप पर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रोग्राम सुन लेता हूँ या फिर घंटे भर के लिए कहीं घूमने चला जाता हूँ, अखबार भी पढ़ लेता हूँ या पुराने गाने सुनकर अपनी तन्हाई को दूर करता हूँ। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं गुस्से में होती हूँ तो चुप हो जाती हूँ, थोड़ी देर में अपने आप गुस्सा शांत हो जाता है। ये बहुत अच्छा नुस्खा है वैसे कि अगर सामने वाला गुस्से में कुछ बोल रहा है, आपको भी गुस्सा आ रहा है, तो आप शांत हो जाएं तो सामने वाले का गुस्सा भी खत्म हो जाता है, आपका भी। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का विचित्र फंडा है, किसको अपनाएगा किसको छोड़ देगा इसकी जानकारी नहीं होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का क्या कहें, सुबह शाम उठते बैठते कैसे इसकी धड़कन बढ़ गई, हांफने पर डॉक्टर तक पहुंचे जिन्होंने कहा कि आपने कुछ ऐसा सोचा क्या, आप जिंदगी के निजी फैसलों में कभी दिल को न लें, बस दिमाग ही लगाएं और उनकी टैबलेट आज तक छूटी नहीं। भाई अपने दिल का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल है कि मानता ही नहीं और किसी पर भी आ जाता है, दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल भी टूट के छलनी हुआ, विधि ने जो घात किया, खुशियां पल भर में लुट गई, यादों को भी नदी में ही विसर्जित कर दिया, बस एक सिर्फ एक निजी जागती उसकी निशानी अब कलेजे से लगा के संभालना है और उसे आंखों में संभाल के रखना है जब तक सांस चलती है। और अब चलिए सुनते हैं ये गाना, जरा बताइए कौन है हीरोइन, पर्दे पर कौन गा रही है ये गाना और गीतकार का नाम आपको बूझना है। फिल्म है भरोसा। इसमें इबारत के कौन कौन से शब्द हैं जरा ये भी बूझिए आप।

दो फूल फिल्म का ये गाना था। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें थी। हंसरा जयपुरी के बोल थे, वसंत देसाई का संगीत था। इसकी जानकारी शायद किसी को नहीं थी, किसी ने इस बारे में बताया नहीं, ना फिल्म का नाम, तो ये भी नहीं बताया आपने कि पिछली बार आपने कब सुना था। अब कभी भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुनिएगा और याद कीजिएगा ये गाना। बहरहाल रूठने पर बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं। कब तक हुजूर रूठे रहोगे लेकिन गुस्से में प्यार बलम जी अब तो हंसो, रूठा है तो मना लेंगे ना रूठो ना रूठो मेरी जान, देखो रूठा ना करो रूठे सैया। और एक श्रोता ने लिखा है कि धन्यवाद इस गाने के लिए, और एक श्रोता ने लिखा है कि वो तो रूठा है मना लेंगे। एक श्रोता ने लिखा है, मोबाइल पर जब कोई रील देखता हूँ तो कभी कभी हंस हंस कर पेट में बल पड़ जाते हैं, फिर

भरोसा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत। इस गाने में एक नाराजगी भी है और दुख भी है और साथ भी है, भूलने की बात भी है, याद भी है, दिल भी है। तो आज की इबारत के बहुत सारे शब्द इस गाने में थे और हमारे श्रोताओं ने भी इस गाने का जिक्र किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब रूठती हूँ तो न मनाती हूँ न मनुहार करवाती हूँ। क्या बात है भाई, ये तो अच्छा नुस्खा है कि ठीक है, ना मैं मनाऊंगी ना तुम, मतलब मैं ना मैं रूठूँ ना तुम रूठो, ये वाला हिसाब किताब है ना। और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है कि पर्दे पर आशा पारिख हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मन की हर उदासी का सबब दिल का टूटना नहीं होता है, कई बार कुदरत का बदलता मिजाज और शरीर में विटामिन की कमी जैसी शारीरिक वजहें भी इंसान को अवसाद और डिप्रेशन में डाल देती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सामने वाला हमारी कोई गलती के बिना ही रूठता है तो मनाने का सवाल नहीं है, पर अगर सोचने पर हमारी गलती महसूस होती है तो ज़रूर मनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल के बारे में क्या कहें, ये एक ऐसी चीज़ है जो अनवरत क्रियाशील रहती है, जहाँ इसे इसने धड़कना छोड़ा व्यक्ति इस संसार से विदा हो लेता है। दिल का धड़कना और सोचना उम्र के साथ बदलता रहता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि खुशियों में झूम उठता है दिल, गम में मौन हो जाता है। वैसे ये हमारी एक मानसिक स्थिति है जो हमारे मनोभावों को प्रस्तुत करती है, एहसास दिलाती है, चाहे वो प्यार हो, दोस्ती हो, परिवार के प्रति जिम्मेदारी। फिल्मों में दिल के संबंधित कई गाने हैं और दिल एक मंदिर है, गानों की लंबी फहरिस्त दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल शब्द के ही गाने हमने आपसे पूछे थे, हमने तो आज की इबारत से जुड़े हुए गाने पूछे थे। एक श्रोता ने बहुत सारे शब्द लिखे हैं, जमाना, उदास, तन्हाई, और इन्होंने तन्हाई और अकेलापन, सुबह शाम ये भी लिखा है। तो सुबह शाम बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है, तो चलिए भाई ये गाना सुनते हैं और देखिए कि क्या आपने याद किया। और हाँ, आपको बता दें, दो फूल फिल्म का गाना जो हमने सुनवाया था, कुछ हमारे सुधीर श्रोता हैं जिनकी जानकारी बड़ी समृद्ध है, उन्होंने लिख दिया था विविध भारती के फेसबुक पेज पर, हमें देर से दिखा, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जरा सुनिए ये गाना और बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।

जब भी कभी मुश्किल वक्त आता है तो हम ये गीत ज़रूर गुनगुनाते हैं, और जब आपके घर में आपके आसपास ख़ास तौर से टीन एज बच्चे जो पढ़ाई के प्रेशर से परेशान हो, तन्हा उन्हें अकेलापन लग रहा हो, तो उन्हें ये गाना ज़रूर गा के सुना दीजिए कि यहाँ सुबह ज़रूर आएगी और तुम्हारे पेपर्स अच्छे होंगे, मार्क्स बढ़ेंगे। इस तरह के बहुत सारे गाने हैं समझाइश वाले, गानों के माध्यम से हमारे बड़े बुज़ुर्ग समझाया करते थे, तो आप भी समझा सकते हैं। गीतकार संगीतकार का नाम पूछा था साहिर लुधियानवी और खयाम। एक श्रोता ने लिखा है कि बेबस बेकाबू बेचैन दिलों के हसरतों उमंगों तरंगों को चित्रित करती इबारत है। अनुभूति तन्हाई बेबसी मान मनवल हंसाती रुलाती बेबसी दिलों के तजुर्मा को तरन्नुम में ढाल आज सुरीला सफ़र। बाकी खासम खास रहेगा और खासम खास हो रहा है, एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल की दास्तान की क्या कहें, आशा निराशा के समुद्र में हिचकोले खाता है, आशाओं के किरण के साथ प्रफुल्लित होकर नई ऊर्जा से भर जाता है, नए सपनों और उन्हें पूरा करने की ओर अग्रसर हो जाता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल और दिमाग का द्वंद हमेशा से रहा है, रिश्ते बनाए तो दिल से जाते हैं लेकिन निभाए दिमाग से। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अगर सामने वाले पर गुस्सा आ रहा हो तो उस समय चुप रहना ही उचित रहता है, क्योंकि गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है पर उस समय गुस्से में कही गई बातें सामने वाले को दूर कर देती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कभी खुद से रूठ जाता है दिल, कभी ज़माने से। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिल बड़ा अजीब है। और अब चलिए प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनते हैं फिल्म आह से। आपको पूछना है कौन है हीरो कौन है हीरोइन, और गीतकार संगीतकार का नाम भी ज़रा बताइएगा। फिल्म आह

आह फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी। हमने आपसे पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, और हीरो हीरोइन का नाम भी पूछा था। सभी श्रोताओं ने बहुत कम वक्त में बहुत जल्द त्वरित जवाब दिया, नरगिस और राज कपूर। एक श्रोता ने लिखा कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है, मैंने अपनी डायरी में लिखा था ये गीत। और एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे ज़्यादा वक्त मेरी नवासी को मनाने में लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब किसी को गुस्सा आए तो चुप रहना ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत सारे श्रोताओं ने आज अपनी बातें और अपनी यादें साझा की। किसी ने रूठने की बातें की, किसी ने तनाई की बातें की, किसी ने दिल की बातें की। दिल की बातें श्रोताओं ने ज़्यादा की। बहरहाल कुछ श्रोताओं ने यह भी लिखा है कि आज का सुरीला सफ़र सुनते हुए हमारी दोपहर सुरीली हो गई। भाई हमारी दोपहर भी सुरीली हो जाती है आपके साथ, जब आपकी टिप्पणियों के साथ हम होते हैं। बहरहाल आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरीला सफ़र कार्यक्रम का सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

श्रोताओं नमस्कार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो घर बनाकर रहता है। एक निश्चित उम्र में वो घर बसाता है और अपने परिवार को बढ़ाने की ओर अग्रसर होता है। कई तरह के पड़ाव किसी भी मनुष्य के जीवन में आते हैं, जिनमें किसी बच्चे के जन्म को सबसे खास माना जाता है। एक नन्हा सा जीव जब दुनिया में आंखें खोलता है तो सभी की आंखों का तारा बन जाता है। उसके परवरिश करते करते कई बार माता पिता को ये लगता है कि एक और संतान हो जो उनकी पहली संतान को भाई या बहन के रूप में साथ देने आ जाए।

व्यक्ति की चाह होती है कि उसका अंश इस दुनिया में आए। अमूमन सभी को एक संतान का होना आवश्यक लगता है, परंतु कई सामाजिक रीतियाँ ऐसी हैं जो ये जताती हैं कि किसी भी व्यक्ति के वंश को आगे बढ़ाने का काम उनके बेटे ही करते हैं। कई बार बेटों की चाह में भी लगातार संतान पैदा की जाती हैं और एक ही परिवार में कई बच्चे होते जाते हैं। इससे न सिर्फ जनसंख्या बढ़ती है बल्कि इतने बच्चों का पालन पोषण भी एक मुश्किल काम होता जाता है। ज्यादा बच्चों के होने से परिवार में सभी की उचित शिक्षा, उच्च जीवन और जरूरी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं। रह जाते हैं आंखों में अनगिनत अधूरे ख्वाब।

किसी भी देश की जनसंख्या एक ओर उस देश की शक्ति का प्रतीक होती है, वहीं उस देश के विकास और प्रगति के लिए जनसंख्या का नियंत्रण भी अति आवश्यक होता है। यदि किसी देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जाए तो उस देश में संसाधनों की कमी, बेरोजगारी, गरीबी और अव्यवस्था बढ़ती जाएगी। लोगों के पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पाने के लिए भी जरूरी साधन नहीं होंगे। यही कारण है कि जनसंख्या को नियंत्रित रखने के लिए समय समय पर अलग अलग जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को परिवार नियोजन की आवश्यकताएं बताई जाती हैं। कई अलग अलग स्लोगन्स के जरिए भी इस बात पर जोर दिया जाता है, जैसे हम दो हमारे दो,

तो देश और परिवार की उन्नति के लिए उचित निर्णय सभी से अपेक्षित है। इसी संदेश के साथ त्रिवेणी से दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए UN सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
1: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्रगिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: आईएनएस महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण

0: सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
2: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रूपये से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानसोतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के

0: तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्प्टन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। चिराग फिल्म का गाना है लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार मदन मोहन।

0: राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म थी भाभी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा।

0: राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म थी भाभी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे आरजू फिल्म का ये गाना। रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
3: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
2: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये था साहिर लुधियानवी का लिखा गाना, संगीतकार थे रवि, फिल्म थी आंखें। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अमर प्रेम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम मन चाहे गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। आपको याद आ गया होगा, इसी शैली में मन चाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत किया करते थे और बहुत सारे श्रोता अपने रेडियो की आवाज सचमुच बढ़ाया करते थे, क्योंकि श्रोताओं के पसंदीदा फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम है और बहुत बेसब्री से श्रोताओं ने इंतजार किया था और हाल ही में ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो चलिए आज बढ़ाइए आवाज और देखिए कि आपका नाम इसमें शामिल है या नहीं, आपकी पसंद शामिल है या नहीं। प्यार का मौसम फिल्म का गाना।

प्यार का मौसम फिल्म का गाना था, किशोर कुमार की आवाज, और इस गाने की फरमाइश भेजी थी हमारे इन श्रोताओं ने। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा और इनके परिवार के अन्य लोग, और स्वाति नारायण, ललिता नारायण खर्चे का भी नाम लिखा है इस पोस्ट कार्ड में। और श्रोताओं की फरमाइश आई है चांदूर बिस्वा तालुका नंदुरा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से, नारायण भाव खट से, रक्षा ताई खट से, ललिता संजना और इनके परिवार के अन्य लोग, जोधपुर राजस्थान से गिरधारी लाल विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये श्रोताओं की पसंद पर।

गाइड फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, शब्दकार शैलेंद्र, संगीतकार सचिन देव बर्मन। और श्रोताओं की फरमाइश पर यह गाना था गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी और फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन और अफसाना बेगम, महजवी शेख और इनका पूरा परिवार, दयाल बंदे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, पद्माकर राउत, सविता राउत, अश्लीला राउत, आदित्य राउत और इनके अन्य साथी। और इसके अलावा फरमाइश आई अयोध्या स्टेट भोपाल मध्य प्रदेश मयूरी परिसर से श्रवण सिंह के नारे और इनका पूरा परिवार। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म जीने की राह।

जीने की राह फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और चिट्ठी मिली बरगी नगर जबलपुर से रविंद्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर, राजेश, शुभांगी, सृष्टि और इनके परिवार के अन्य लोगों की ओर से। दयालबंद बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पद्माकर राउत, सविता राउत, अश्लेला और इनके अन्य साथी। और फरमाइश भेजी छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, सन्नी कोमल यादव और इनके परिवार के अन्य लोग। प्रयागराज से पिंकू और बबली की ओर से फरमाइश आएगी। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म अनामिका, किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल।

अनामिका फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। रंगारेड्डी, एकलव्य नगर से वेंकटेश, श्यामला, सायोना, साई प्रकाश, सुषमा, बाबू अकेला और इनका पूरा परिवार, गांव चलाला काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, खलील दल और इनके अन्य साथी, और इसी गाने की फरमाइश आई थी कटारिया कच्छ से मानविक राघाणी, डॉक्टर निषाद, कबीर, रमजान और इनके अन्य साथी, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से देवी राम इनवाती, दामिनी इनवाती। चलिए सुनते हैं अगला गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गाना। संगीत मदन मोहन का था, फिल्म थी मेरा साया, और इसे पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर ने इसी गीत की फरमाइश की थी। एनआर श्रीवात्री ने सागर मध्य प्रदेश से, शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन और इनके अन्य साथी, और नरोत्तम गौड़ और इनके साथियों ने फरमाइश भेजी थी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। चलिए अब सुने ये गाना।

मेरे हम सफर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। गणेश पेठ पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत, सुवर्णा शिंदे और इनके परिजन, जगाधारी हरियाणा से विजय मोहन, मीनाक्षी और इनके परिवार।

और के अन्य लोग लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और इनके परिवार के अन्य लोग। अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नाट्य तरंग। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हरिराम आचार्य का लिखा नाटक रहीम की ढाणी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। तो आइए सुनते हैं नाटक रहीम की ढाणी।

0: वाव, जैसलमेर हमको हर एंगल से फैसिनेट करता है मिस्टर ओझा।
1: अच्छा,
0: और हम क्या, दुनिया का कोई भी टूरिस्ट इधर से मुग्ध हुए बिना नहीं जा सकता।
1: क्या क्या आपने क्या बोला मिस चारू मित्रा, मुग्ध?
0: यस मिस्टर ओझा, आई मीन इट।
1: रियली? मगर ऐसी क्या अनोखी बात है यहाँ जिसके कारण आप जैसे कला और इतिहास के प्रेमी हर वर्ष यहाँ खींचे चले आते हैं?
0: ओह मिस्टर ओझा, दिस डेजर्ट, जे मीलों तक फैला रेगिस्तान, जैसे सोने की बालुका का सागर लहराता हो, कड़ी धूप में तप करते शमी के पेड़, लुका छिपी खेलते घोड़ावर पक्षी, गोर बन से सजे ऊंट। मिस्टर ओझा, इट इज नॉट लेस देन ए वंडरलैंड फॉर मी।
1: आप हरे भरे बंगाल से आती हैं, इसलिए ये सूखा रंगहीन लैंडस्केप आपके लिए नई बात हो सकती है।
0: नो मिस्टर ओझा, ये तो एक ब्रॉड पैनोरामा है। इस बैकग्राउंड पर कलरफुल परिधान, आर्ट, कल्चर और इतिहास के जो रंग उभरते हैं, लोक संगीत के जो स्वर गूंजते हैं, वो सब कहने का नहीं, फील करने का चीज है।
1: एक बात कहूं मिस मित्रा?
0: ओह यस।
1: आप एकदम पागल हैं।
0: रियली? इज इट अ कॉम्प्लीमेंट?
1: एक खूबसूरत चीज को अप्रिशिएट करने के लिए एक खूबसूरत नजर भी होनी चाहिए, और वो नजर आपके पास है मिस मित्रा।
0: थैंक यू मिस्टर ओझा, यू आर सो नाइस टू मी।
1: आपने यहाँ का खूबसूरत सोनार किला देखा, मूमल महेंद्र की प्रेम गाथा सुनी, मांड धरती का मीठा संगीत भी सुना, अब नया तो कुछ बचा नहीं यहाँ, किधर ले चलूं?
0: हमको क्या मालूम, गाइड तुम है मिस्टर ओझा। नया कुछ नहीं बचा तो तुम हमको जंगल में किधर ले जा रहा है? क्या खाली पेट्रोल जलाने में तुमको मजा आता है?
1: नहीं मिस मित्रा, इस बार मैं आपको जैसलमेर के इतिहास का एक अछूत पृष्ठ दिखाना चाहता हूँ, देखना चाहेंगी?
0: ओह दैट्स लाइक ए गुड गाइड। लेकिन इतिहास का अछूत पृष्ठ और इस डेजर्ट में?
1: हाँ, ये पृष्ठ स्वाधीनता संग्राम के दिनों में सन 1940 के आसपास यहाँ एक ढाणी में लिखा गया, वो भी स्याही से नहीं, शरीर के रक्त से।
0: वहाँ जरूर ले चलो मिस्टर ओझा। वो जगह क्या बोला, ढाणी?
1: ढाणी यहाँ कुएं या ताल तलैया के आसपास छोटी सी बस्ती को कहते हैं।
0: आई सी।
1: लो आ गई हमारी मंजिल।

0: ये है रहीम की ठाणी। बहुत कम लोगों को जानकारी है इसकी। आइए।
1: रहीम की ढाणी, हम भी पहली बार नाम सुना। ये रहीम कौन है?
0: है नहीं, था। ये सामने है उसका स्मारक, रहीम का मजार, एक गुमनाम शहीद की समाधि, जिसने आजादी की लड़ाई में फिरंगी हुकूमत से टक्कर ली और अपने ही तरीके से देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल कायम की। रहीम का सिर्फ एक मिशन था, अंग्रेज सरकार का खजाना या अंग्रेज परस्तों की दौलत लूटना और उसे गरीबों में बांट देना। ब्रिटिश हुकूमत के रिकॉर्ड में रहीम खान महज एक डकैत था, चलती ट्रेन में डाके डालने वाला डाकू, जेल तोड़कर भागने वाला एक खतरनाक मुजरिम।
2: की जेल तोड़ के फरार, उसके सर पर 1,00,000 का इनाम, ब्रिटिश हुकूमत का ऐलान। पढ़िए पढ़िए।

0: अल्लाह अल्लाह।
1: पीर बाबा के कदमों में रहीम खां का सलाम।
0: खुदा खुश रखे। आ रहीमा, तुझे तो फिरंगियों ने कैद खाने में डाल रखा था ना।
1: हाँ पीर बाबा।
0: तो क्या तू जेल तोड़कर निकल आया?
1: बड़े कमजोर सींखचे लगा रखे हैं फिरंगी ने, हाथ लगाते ही टूट गए और मैं बाहर निकल आया।
0: पगले, तू जानता भी है कुछ? जवानी के जोश में तू किसे ललकार रहा है? उस फिरंगी सरकार को जिसका सूरज कहते हैं कभी डूबता नहीं।
1: झूठ है, अफवाह है पीर बाबा। ये सूरज मगरिब से उगा है, इसलिए इसका मशरिक में डूबना तय है।
0: कैसे?
1: क्योंकि ये उजाला देने वाला नहीं, अंधेरा फैलाने वाला सूरज है। जुल्म का अंधेरा, गुलामी का अंधेरा, नाइंसाफी का अंधेरा।
0: कुछ अपने गरेबान में भी झांक रही माँ। डकैती का धंधा करता है और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है।
1: ऐसा मत कहिए पीर बाबा, मैं डकैत नहीं हूँ, अदना सा खादिम हूँ आपका। अच्छे बुरे की पहचान आपसे सीखी है। इन काले दिल वाले गोरों ने जोर जुल्म से हमारे मुल्क की जो दौलत अपनी अय्याशी के लिए बटोरी है, उसे छीन कर अपने भाइयों में वापस तकसीम करने का फर्ज जान पर खेल कर भी अदा करता हूँ।
0: बेटे रहीमा, इस काम में खून खराबा भी तो होता है, नेक काम के लिए भला बंदूक क्यों?
1: मैं तो एक हक परस्त सिपाही का मेहनत कश बेटा था पीर बाबा। बंदूक उठाने पर मुझे गोरे अफसर ने मजबूर कर दिया।
0: क्यों भला?
1: बाबा, आपने ये सवाल करके मेरा जख्म कुरेद दिया। मेरे वालिद ने एक सिपाही की हैसियत से सारी उम्र इस नामुराद सरकार की खिदमत की, मगर जब वो बूढ़ा और बीमार होकर खटिया पर दम तोड़ रहा था, तब उसी के बड़े फिरंगी साहब ने दवा के लिए चंद पैसों की मदद मांगने पर उसे गोली से उड़ा दिया।
0: अल्लाह, ऐसी जलील हरकत! तूने जान नहीं ले ली उसकी?
1: होता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता पीर बाबा।
0: तो तू कहाँ था?
1: मैं वालिद की दवा के लिए एक साहूकार के पास बीवी के कड़े बेचने गया था। लौटा तब तक सब कुछ खत्म हो गया था, वालिद का कत्ल हो गया था और मेरी बीवी ने खुदकशी कर ली थी।
0: या मेरे खुदा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
1: उसी दिन मैंने वालिद की बंदूक उठाकर कसम खाई कि इन फिरंगी लुटेरों को अपने जीते जी चैन से नहीं बैठने दूंगा। बंदूक का पहला गोला मैंने जलील अफसर के सीने पर दबाया।

0: और ये रास्ता पकड़ लिया।
1: मगर इस रास्ते में चैन कहाँ है बेटे? ये रास्ता तो जेल और फांसी के अलावा और कहीं नहीं ले जाता।
0: जेल से तो निकल ही आया हूँ और अब तय कर लिया है कि जीते जी दुश्मन के हाथ नहीं आना है, चाहे वो मेरे सर पर कितने ही इनामों का ऐलान कर दे।
1: तो फिर अब करेगा क्या? हुकूमत के हाथ बड़े लंबे होते हैं बेटे।

0: दे।
1: तो फिर अब करेगा क्या? हुकूमत के हाथ बड़े लंबे होते हैं बेटे, तू छुपेगा कहाँ?
0: अभी तो आपकी पनाह में हूँ, जहाँ का हुक्म आप देंगे वहीं चला जाऊंगा।
1: और तेरे साथी?
0: वो भी मेरे साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे।
1: देख रही माँ, यहाँ इस ठिकाने पर तो हर किस्म का आदमी आता है।
0: हाँ बाबा।
1: तेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुम लोग मांगणियारों का भेष बनाओ और मेरा पैगाम लेकर जैसलमेर महारावल के पास चले जाओ। उनकी पनाह पुख्ता होगी और तुम वहां एकदम महफूज रहोगे।
0: जो हुकुम पीर बाबा।
1: अल्लाह।
0: बाबा
1: बोल बेटे।
0: इतना कर्म किया है तो चलते चलते एक और कर्म का वादा दे दो।
1: हाँ हाँ बोल।
0: इस फकीर बंदे का जब भी दम टूटे, आपके कदमों में टूटे, बस यही मेरा अरमान है।
1: जिंदगी और मौत तो परवरदिगार के हाथ है रहीमा, जो उसे मंजूर होगा वही होगा। जा अब आराम कर, कल सुबह कूच कर लेना आगे।
0: अच्छा बाबा। खुदा हाफिज बाबा।
1: अल्लाह हाफिज।

0: घड़ी खमान दाता,
1: रियासत के क्या समाचार है दीवान जी?
0: सब अमन चैन है हुजूर, बस एक मामला आपकी सेवा में दरपेश करने की इजाजत चाहता हूँ।
1: पेश करो।
0: कल रात अमर सागर के रस्ते में 5 अनजान लोग बांगड़ियारों के भेष में पड़ाव डालकर गा बजा रहे थे।
1: कोई चोर डाकू तो नहीं है? कौन है उनका मुखिया?
0: वो अपना नाम रहीमा बताता है अंदाता, पीर पगारों की चिट्ठी लेकर आया है और हुजूर के चरणों में हाजिर होकर कोई पैगाम देना चाहता है।
1: कहाँ है वो लोग?
0: पुलिस की हिरासत में अंदाता।
1: और वो चिट्ठी?
0: ये है वो चिट्ठी अंदाता।
2: महारावल जैसलमेर, आप पर अल्लाह ताला की नजर करम हो, पीर पगारों की दुआ कबूल फरमाए। बाज़ाब्ता अर्ज की जाती है कि चिट्ठी लाने वाला शख्स हमारा वफादार खादिम है, इस नेक बंदे को अपनी पनाह में लेने का करम फरमाए। ये आपकी जी जान से खिदमत करेगा, बाकी पैगाम इसके मुंह से रूबरू सुनकर खातिरी कर लें। बकलम पीर पगारो।
1: रहीमा को बाइज्जत बादल विलास में हमारे रूबरू पेश किया जाए।
0: जो हुक्म अंदाता।
3: महारावल का इकबाल बुलंद हो, नाचीज की जोहार कबूल फरमाए अंदाता।
1: आओ रहीमा, पीर पगारों की चिट्ठी हमें मिल गई है।
3: हुजूर की मेहरबानी है।
1: दीवान जी को सवाल पूछेंगे तुमसे, ठीक से जवाब देना।
3: जो हुक्म अंदाता।
4: हमारे पास जो खबरें हैं उनके मुताबिक अमरकोट का बाशिंदा रहीम खां एक खतरनाक डकैत है जो ब्रिटिश हुकूमत के खजाने लूटता फिरता है।
3: खबर सही है।
4: वो रहीम खां कंपनी राज का एक सजा याफ्ता मुजरिम और फरार कैदी है।
3: एकदम सच है।
4: अंग्रेज सरकार ने उसके सिर के लिए 1,00,000 रुपए के इनाम की डोंडी पिटवा रखी है।
3: आप बजा फरमाते।
4: क्या तुम वही रहीम खां हो?
3: खुदा झूठ न बुलवाए, ये खादिम वही रहीमा है।
1: इतने गुनाहों का बोझ लेकर हमारी रियासत में किस लिए आए हो?
3: महारावल की छत्र छाया में पनाह लेने अंदाता।
1: हमारा काम क्या डकैत और मुजरिमों को शरण देने का रह गया?
3: गुस्ताखी माफ हो अंदाता, रहीमा इंसानियत की वतन परस्ती की राह पर चलने वाला एक नाचीज बंदा है। डकैत और मुजरिम का नाम तो उसे फिरंगियों ने दिया है, जो 7 समंदर पार से यहाँ आकर हमारे मुल्क की दौलत और इज्जत पर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। रहीमा तो सिर्फ उनसे अपने मुल्क की दौलत वापस छीन लाने का काम अंजाम देता है।
1: तुम्हारी जबान से बगावत की बू आती है।
3: वतन परस्ती अगर बगावत है अंदाता, तो मैं फख्र के साथ अपना बागी होना कबूल करता हूँ।
4: किसी रजवाड़े में एक बागी को शरण देने का मतलब है ब्रिटिश राज से सीधी टक्कर लेना।
3: दीवान जी, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, सियासत नहीं समझता, मुल्क की खिदमत

0: करना चाहता हूं और इन गोरों को यहां से बाहर खदेड़ने वाली हर जंग में हिस्सा लेना चाहता हूं। इसलिए अपने पीर बाबा के हुक्म से और महारावल की अजमत के एतबार से यहां आया हूं।
1: पूरी रियासत इस वक्त जबरदस्त अकाल की चपेट में है, खजाना तंग है, इसलिए फिलहाल हम तुम्हें महावार।
0: हमें कुछ नहीं चाहिए अंदाता, आपने जो भरोसा रखकर हमें पनाह दी है उसके बदले में मेरी खाल की जूती भी बनाकर आपको पहना सकूं तो कम है। और दीवान जी, रहीमा के जिंदा रहते अगर रियासत का खजाना तंग रह गया तो फिर रहीमा के वजूद का कोई मतलब नहीं।
2: क्या फिर कोई टाका डालोगे?
0: आप फिक्र न करें अंदाता, रियासत के खजाने को मालामाल कर देना मेरा पहला फर्ज होगा। डाका सिर्फ फिरंगी तिजोरियों पर पड़ेगा, वो भी सरहद के पार, ये मेरा अहद है।
2: तो फिर ठीक है दीवान जी।
3: हुकुम।
2: रहीम खां को अपनी टोली के साथ खुफिया महकमे में खास औहदों पर लगा दो।
3: जो हुकुम अंदाता।
2: बस इसका खुफिया नाम होगा राम सिंह।
0: कनी कनी खम्मा अंदाता, इस मेहरबानी के बदले ये रहीमा आखिरी सांस तक आपकी खिदमत करेगा और वतन की मिट्टी पर अपने खून की आखिरी बूंद तक कुर्बान कर देगा।

0: की ताजा खबर, कराची एक्सप्रेस पे भारी डकैती, ब्रिटिश बैंक की तिजोरी लूटी, रैन का 50 लाख की रकम लूट कर फरार, हर जगह कड़ी नाकाबंदी। पढ़िए आज की ताजा खबर, कराची एक्सप्रेस पे भारी डकैती।
1: साथियों, खुदा के फजल और आप लोगों की बहादुरी से हमें फिर एक बड़ी कामयाबी मिली। आज बड़े दिनों बाद अमल में स्वाद आएगा, क्यों करीमा?
2: रहीमा, ये वक्त राग रंग का नहीं है। छापा मार को वारदात के बाद वापस अपने गुप्त ठिकाने और गुप्त भैंस में लौट जाना चाहिए।
1: तो फिर बोलो, ब्रिटिश राज
3: मुर्दाबाद,
1: वतन के दुश्मन
3: मुर्दाबाद,
1: इनकलाब
3: जिंदाबाद,
1: हिंदुस्तान
3: जिंदाबाद।
1: अब चलो, ऊंटों के प्लान कस लो और कारतूस पेटी कमर में बांध कर बंदूकें संभाल लो, हम जैसलमेर चलेंगे।

0: ये ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध प्रांत से समाचार मिला है कि अमरकोट का खतरनाक डकैत और फरार कैदी रहीम खां चलती ट्रेन में 50 लाख रुपयों की डकैती के बाद रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। सरकार को संदेह है कि वो सिंध की सरहद को पार करके जैसलमेर के रेगिस्तान की तरफ भागा है। उसकी तलाश और गिरफ्तारी के लिए सरकार ने सिंध प्रांत के आईजी पुलिस मिस्टर हटसन की अगुवाई में ऑपरेशन सर्च का ऐलान किया है।
1: Good afternoon, Your Majesty, His Highness of Jaisalmer.
2: आइए आइए, welcome, Mr. Harsan. फरमाइए क्या खिदमत की जाए?
1: As you know, Your Highness, हम इधर on duty आया. हमारा मिशन है Operation Search. इस ऑपरेशन में हम आपका मदद मांगता.
2: बड़े शौक से Mr. Harsan, आपकी मदद करके हमको खुशी होगी. आप इस ऑपरेशन की डिटेल्स बताएं तो बेहतर हो.
1: Oh yes, Your Highness. सिंध सूबे का रहीम खान एक ट्रेन रॉबरी के बाद फरार हो गया है। गवर्नमेंट को डाउट ही नहीं, पूरा यकीन है कि द ब्लडी एब्सकाउंडर वो भगोरा आपकी रियासत में कहीं छुपा है। इसलिए ये ऑपरेशन सर्च हम इधर से स्टार्ट करना मानता।
2: जरूर मिस्टर हरसन, इस ऑपरेशन में हम आपकी पूरी मदद करेंगे।
3: राम सिंह
4: हुकुम अंदाता।
2: हरसन साहब, ये राम सिंह हमारे खुफिया महकमे का बहुत काबिल अफसर है। रियासत की चप्पे चप्पे की बहुत अच्छी जानकारी है इसे। इसे अपने स्टाफ के साथ हम आपकी मदद के लिए बाकायदा तैनात करते हैं।
1: That's very good.

0: Thank you, Your Highness.
1: रहीम खां का सलाम दीवान जी।
2: आओ रहीमा, कैसा रहा ऑपरेशन?
1: ऑपरेशन तो गोरी सरकार का था दीवान जी, पूरा करवा दिया। सच कहता हूँ दीवान जी, अंधाता का भी जवाब नहीं है। क्या मीठी और पुख्ता चाल खेली है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बस अब एक वारदात सक्कर सिंध में और करना चाहता हूँ दीवान जी।
2: कैसी वारदात?
1: वहाँ अंग्रेजों का एक पिट्ठू है, सोने चांदी में हीरे जवाहरात में लोटता है। गरीबों से लूट लूट कर अरबों की पूंजी कमाई है उसने। बस एक झपट्टा उस पर जरूर मारना है।
2: अब थोड़े दिन आराम ही कर ले रहीमा।
1: जब तक ये गोरे लुटेरे यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, तब तक हमारे लिए आराम हराम है।
2: सिंध में चौकसी बहुत कड़ी हो गई होगी, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डालता है?
1: यहाँ मौत का डर किसको है, जोखिम से खेलना ही तो अपना शौक रहा है दीवान जी। आज रात हमारी टोली निकल जाएगी, आप तो परसों तक लूट का माल जाब्ते में दाखिल खजाना करने की तैयारी रखवाना।
2: जैसी तेरी मर्जी रहीमा।
1: अच्छा, अलविदा।
2: अलविदा, ईश्वर तुझे सफलता दे।
3: ये ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध सूबे से एक भारी डकैती के समाचार मिले हैं। रहीम खान ने कल रात सक्खर के एक नामी सेठ की कोठी पर संगीन डाका डाला। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस ने कोठी को घेर लिया और गोलीबारी की, जिसमें कई सिपाही मारे गए। रहीम खान को भी गोलियां लगी, लेकिन वो घायल हालत में भी अपने साथियों की मदद से पुलिस को चकमा दे गया। लूट का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और पूरे सिंध में रेड अलर्ट कर दिया गया है।

0: रहे भाई, पानी। कैसी है तबीयत?
1: मैं ठीक हूँ करीमा। माल कहाँ है?
0: वो ठीक ठिकाने पहुंच चुका होगा। अब्दुल जुम्मन और पंडित अलग अलग रास्तों से माल लेकर जैसलमेर गए हैं।
1: अब कोई फिक्र नहीं। जरा ये पट्टा खोल दे।
0: तुम्हारी हालत ठीक नहीं है रही भाई, सारे कपड़े खून में तर है।
1: जिस मिट्टी से ये जिस्म बना है, ये खून उसी की अमानत है। बहने दे इसे।
0: जिद मत करो रही भाई, तुम्हें अभी बहुत जीना है। वतन की खातिर, हमारी खातिर तुम्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है।
1: कौन सा अस्पताल?
0: जैसलमेर लिए चलता हूँ।
1: अरे पगले, जिसने मुझे जीते जी पनाह दी, उदा दिया, उस अंधाधा को मरने के बाद मुसीबत में डाल दूं? नहीं, जो अब तक राज रहा है उसे राज ही रहने दे करीमा।
0: मेरी बात मानो रही भाई। चलो मेरे साथ।
1: नहीं, अब ये ठाणी छोड़कर कहीं नहीं जाना। मेरा जिस्म रेगिस्तान की इस मिट्टी में मिल जाने दे करीमा।
0: ऐसा मत बोलो रही भाई, ऐसा मत बोलो।

रो मत करे माँ, इधर देख पगले, मैं कितना खुश हूँ। जैसी बन सकी वतन की खिदमत की, ना कि ऐश के लिए नहीं, फर्ज के लिए डाले। जिसने पनाह दी उसका कुछ कर्ज उतारा, आगे ये काम तुम लोग करना। फिरंगी रात से टक्कर लेते रहना।

0: की तमन्ना दिल में रह जाएगी।
1: कौन सी तमन्ना रही भाई, बोलो बोलो तो।
0: पीर बाबा का दीदार, उनकी कदम बोसी।
1: चलो रही भाई, मैं ले चलता हूँ वहाँ।
2: अल्लाह अल्लाह,
1: या खुदा, तेरी खुदाई, पीर बाबा आप यहाँ।
0: पीर बाबा, आपने जहमत उठाई, या मेरे मौला, इस गुनहगार पर इतना करम।
2: गुनहगार नहीं है रहीमान, तूने वतन परस्ती के हक में एक वफादार सिपाही की तरह अपना खून बहाया है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क से ये फिरंगी राज खत्म होगा, आजादी का नया सूरज उगेगा।
0: आमीन। अलविदा बाबा।
1: अल्लाह, तुम ऐसे नहीं जा सकते।
2: रो नहीं करीमा, रहीम मरा नहीं, ये उसकी कुर्बानी है, शहादत है उसकी। शहीद को आंसुओं से विदा नहीं करते बेटे, जिस सरजमीन पर उसका खून गिरा है उसे वही बाइज्जत दफन करो। उसका मजार उसकी वतन परस्ती की याद दिलाएगा। आज से ये घानी रहीम की ढानी कहलाएगी। ये रेत के टीले उसकी कुर्बानी के सबूत बनेंगे और ये हवाएं उसकी शोहरत के नगमे दोहराएगी।
3: ये है जैसलमेर के इतिहास का वो गुमनाम पन्ना मिस मित्रा, रहीम की ढाणी, रहीम खां का ये मजार।
4: बड़ा पवित्र है ये स्मारक मिस्टर ओझा, श्रद्धा के भाव से हम इसको नमन करता है। इसका दर्शन कराने के लिए आपको धन्यवाद कैसे दिया जाए समझ में नहीं आता। आई रियली थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
3: बस बस मिस मित्रा, एक गाइड के नाते ये मेरा फर्ज था। आइए चलें।

अभी आप सुन रहे थे हरिराम आचार्य का लिखा ये नाटक रहीम की ढानी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने और आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य

0: साइंस लाइट साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनने वाले हैं जानी मानी राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज प्रस्तुत है इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर को। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूं और आप लोगों से रूबरू हूं।
2: जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म रंगमंच और कला से जुड़े परिवार में हुआ है। आपके पिता रंगमंच से जुड़े हुए थे और माँ उर्दू कवित्री, शायरा और शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं। तो आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता?
3: देखिए, हमारा बचपन जो है बहुत ही रंग बिरंगा रहा है।
2: अच्छा।
3: हम सब बहन भाइयों का। दरअसल मेरे जो दादाजी थे वो आर्मी में कर्नल थे। उस समय तो पार्टीशन भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों के जमाना था उस समय। और जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं ददिहाल की साइड के, सब बड़े बड़े ओहदों पे हैं आर्मी में या बड़े बड़े वकील।
2: जी,
3: मेरे पिताजी लाहौर में पढ़े श्री मदन लाल कपूर, और मेयो कॉलेज जो बहुत ही उस समय और आज भी बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, वहां पढ़े वो। उन्हें पता नहीं क्या सूझा कि वो दिल्ली आ गए और उन्होंने 1930 के करीब एक नाटक कंपनी, उस समय हिंदुस्तान में दो चार नाटक कंपनियां चला करती थी, पारसी थिएटर उन्हें बोला जाता था। वो उस समय सोहराब मोदी साहब का था, पृथ्वीराज जी का था और बाबूजी का, मेरे पिताजी का। तो उन्होंने वो रंगमंच ज्वाइन किया और उन्होंने एक नाटक कंपनी बनाई जिसमें 300 के करीब लोग थे और प्रोपराइटर मालिक बाबूजी थे मेरे पिताजी। वो कंपनी चलाना अपने आप में एक रंगमंच की सेवा जो है, लेकिन उस समय क्या था कि समाज में खासतौर से नॉर्थ इंडिया में नाटक को अच्छा नहीं समझा जाता था, नाचना गाना
2: जी।
3: तो मेरा जो ननिहाल था वो चूंकि बंगाली परिवार था, मेरे नाना नानी बंगाली थे, संगीत उन लोगों का तो रचा बसा है और उनका तो गाना सीखना बहुत जरूरी है। तो माँ मेरी क्लासिकल किराना घराने से उन्होंने गाना सीखा था और किसी तरह संयोग से बाबूजी और माताजी की शादी हो गई। माँ मेरी बहुत छोटी थी जब शादी, उस जमाने में 13-14 साल की उम्र में हो जाया करती थी। तो इस तरह से बाबूजी को उनके परिवार ने डिसओन कर दिया, निकाल दिया एक तरह से, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रोफेशन चुना था। और माँ ने लेकिन मेरे बाबूजी का साथ दिया। तो इस तरह से नाटक कंपनी में हमारी आंख खुली। और आप ये सोच लीजिए कि फिर वो हमारे रंगमंच जो है, नाटक कला हर विधा की, क्योंकि माताजी और पिताजी दोनों ही लिटरेचर पोएट्री इसमें दखल रखते थे। बाद में हमें मालूम पड़ा कि हमने बचपन में इंटरनेशनल साहित्य पढ़ा है, इंडियन साहित्य तो पढ़ा ही, भारतीय साहित्य तो सारा पढ़ा, चाहे वो शरद चंद हो, बंकिम चंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, प्रेमचंद हो, जितने भी है, रेणु हो, और हमने बाहर का भी जो साहित्य है, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की और ये सारी चीजें, बाबूजी अंग्रेजी वाले थे, मम्मी उर्दू और हिंदी वाली थी, तो हमें विरासत में ये कला और संगीत रंगमंच वो हमारे खून में है। और सच पूछे तो अगर हमें कहा जाए कि आप कुछ ये नहीं करना है, जो कला क्षेत्र से आप हट जाए तो शायद हम लोग भूखे मर जाए, हमें कुछ नहीं आता और।
2: जी जी जी, उसी में रचे बसे हैं और उसी में पूरा जीवन हमने लगाया है।
3: जी,
2: तो सीमा जी, हम आपसे और भी बात करेंगे आपकी जिंदगी के पहलुओं पर। कोई गीत आपकी पसंद का पहले सुन ले।
3: जी बिल्कुल, संगीत तो आप जानती हैं हमारे रक्त में मिला हुआ है। फिल्म है आरती
2: जी,
3: रोशन साहब का म्यूजिक है और उसमें गाना था आपने याद

0: सीमा जी, निर्देशक और नाटककार रंजीत कपूर की बात अगर हम करें, अनु कपूर साहब की बात करें और निखिल कपूर की आप बहन हैं और जाने माने अभिनेता ओमपुरी साहब से आपने विवाह किया, इन सब चीजों को, इन सब बातों को आप कैसे देखती हैं?
1: छोटा सा प्रश्न आपने पूछा है लेकिन वो पूरा जीवन उसमें समेटा हुआ है मेरा। मेरे भाई जो है तीनों अपनी अपनी विधा में लेकिन कला क्षेत्र में ही है। सबसे छोटा जो ब्रदर है वो बहुत अच्छा शायर है, उसने कई फिल्मों में गाने लिखे हैं। मेरी हर सीरियल का टाइटल सॉन्ग वो ही लिखता है और हर सीरियल और फिल्म का टाइटल वो ही रखता है। और अनु भाई एक्टर हैं, आप जानते ही हैं। रंजीत भाई जो हैं वो निर्देशक हैं, राइटर हैं। तो सब अपनी अपनी जगह बादशाह हैं अपने अपने फील्ड में
0: जी।
1: और जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं तो आप एनरिच होते चले जाते हैं। अच्छा, हम बहन भाइयों का करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू हुआ, ऐसा नहीं था कि कोई आगे है कोई पीछे है, ऐसे सब साथ ही चल रहे थे, साथ ही संघर्ष कर रहे थे और अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि कोई भी क्षेत्र किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन उसके बावजूद कला से जुड़ा हुआ है।
0: जी जी।
1: तो इसलिए हम लोग अपने अपने रास्तों पे, जो कंटकीर्ण रास्ते थे उन पे चलते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे।
0: तो कभी भाई

0: बहनों में कोई कंपटीशन रहता होगा?
1: कंपटीशन शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी। एक अंग्रेजी में शब्द है जिसे हिंदी में प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। ईर्ष्या के बिना आप एनवी करते हैं, आप किसी से ये कहते हैं कि आपको इतना ज्यादा क्यों आता है, है ना, मन में ये सवाल होता है। और मुझे हमेशा मेरे जो जितने भी मैं अपने दुश्मन मानती हूं ना, वो बहुत ऊंचे, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी में दुश्मन भी बनाओ तो बहुत बड़ा बनाओ, वरना आपको उसके बराबर होना पड़ता है। तो मेरा कंपटीशन हमेशा दुनिया के महान डायरेक्टर से है, दुनिया के महान राइटर से। कंपटीशन से मतलब प्रेरणा।
0: जी जी,
1: आपको वहां जाना है, इतनी ऊंचाई पे जाना। तो भाइयों से भी वही रहा है कि इनको इतना ज्यादा आ रहा है, मुझे क्यों नहीं। तो उसके बाद ना आपको एक फोर्स मिलती है कि आप और ज्यादा पढ़ें।
0: बिल्कुल, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहा हमेशा।
1: जी
0: जी, तो ओमपुरी साहब भी आपकी जिंदगी में आए, आपने उनसे विवाह किया। किन शब्दों में आप अपनी बात रखना चाहेंगी?
1: देखिए, 11 साल हमारा अफेयर चला और तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी और तब पुरी साहब स्ट्रगल कर रहे थे। और उसके बाद जब 11 साल के बाद हमने डिसाइड किया शादी करना, तब उनको थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ था। तो शादी हुई। पुरी साहब एक ऐसे कलाकार हैं जो अगर मैं अपने लोगों की तारीफ अपने मुंह से करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दुनिया के इन्हें गिने जो कलाकार होते हैं, मैं पुरी साहब को उनमें रखती हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा उनसे प्रेम है, मेरी शादी हुई थी या जो भी, लेकिन ना बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मैं देखती हूँ। क्योंकि देखिए, जिस कलाकार की नकल की जा सके वो स्टार हो सकता है, वो कलाकार नहीं हो सकता।
0: जी,
1: पुरी साहब की आप डायलॉग डिलीवरी की, उनके आप किसी भी चीज की नकल नहीं कर सकते, है ना। तो वो हर कैरेक्टर में ढल जाते थे। और मैंने उनका एक जो बहुत ही सशक्त पक्ष देखा है, वो ये देखा है कि एक छोटा सा, मैं एक सीरियल बना रही थी तो उन्होंने कहा, अरे ये रोल मैं करता हूं, खुद कह के। मैंने कहा, पुरी साहब आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, इतने महान मतलब नाम है आपका इंटरनेशनल लेवल पे, ये आप क्यों? नहीं नहीं सीमा, छुट्टी है, मैं करूंगा। मैं, वो बैठ नहीं सकते थे।
0: हाँ।
1: उनकी प्रॉब्लम थी कि उनको काम
0: फ्री नहीं बैठ।
1: हाँ, फ्री नहीं बैठ। तो मैं ऐसे काम करते हुए गई तो वो बैठे हुए नोट्स बना रहे थे। मैंने कहा, क्या कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन से? बोले, नहीं तुम्हारा वो करना। मैंने कहा, इतनी छोटी सी सीरियल का एक छोटे से उसमें भी आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप देखिए डेडिकेशन काम के प्रति, कि इतना आपने जिंदगी हो गई है, आपके 40 साल हो गए हैं काम को करते हुए, जिसमें आपने इंटरनेशनल अवार्ड ले लिए हैं, नेशनल अवार्ड ले लिए हैं, इसके बावजूद छोटा सा काम है लेकिन उसके नोट्स बना रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं और उस पर आप डिस्कस कर रहे हैं कि सीमा मैं ऐसे करूं, मैं ये पहन लूं या वो कर लूं, इसको, इस कैरेक्टर को ऐसे बना लूं। तो आपको ये सीखने को मिलता है, जैसे लता जी वगैरह को भी मैंने देखा है
0: जी,
1: कोई भी काम जब वो करते हैं तो वो अपने आप को तिफले मकतब समझते हैं कि मैं अभी पहली क्लास में हूं, और यही उनके जो विनम्रता है उनको महान बनाती है।
0: जी,
1: और वही पुरी साहब में था।
0: जी, जी।

0: ओमपुरी साहब के अभिनय के बारे में तो हम आपसे क्या कहें, मतलब उनकी आवाज, उनकी अभिनय प्रतिभा, उनका चेहरा हर बात पर, मतलब संवाद बोलता था उनका चेहरा, उनकी आंखें, जो उनकी जज्बात फीलिंग्स वो पर्दे पर साकार हो जाती थी। आपको उनकी कौन सी फिल्में पसंद थी?
1: मुझे परफॉर्मेंस वाइज तो देखिए वो सब में बहुत न्याय करते थे अपने किरदार के साथ, लेकिन एक सौभाग्य मैं कहूंगी कि हरियाणा फिल्म फेस्टिवल था यमुनानगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार थी, रंजीत भाई की फिल्म चिंटू जी थी और पुरी साहब की फिल्मों का सिंहावलोकन था, रिट्रोस्पेक्टिव था, तो उसमें हम तीनों ही वहां थे। तो मैं पुरी साहब की एक फिल्म मैंने नहीं देखी थी, तो मैंने कहा कि चलिए मैं देखूंगी आज आपकी ये फिल्म। बाकी फिल्में देखी थी, वो थी माय सन द फैनेटिक, अंग्रेजी फिल्म थी। तो मैं जब वो फिल्म देखी, यकीन मानिए मैं एक तो जारो कतार रो रही थी, और मैंने ना जैसे ही फिल्म खत्म हुई है ना, मैंने उनके पैर छू लिए। मैंने कहा क्या ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पुरी साहब हैं, मैं वो किरदार को देख रही थी। मतलब मैं आपको शायद शब्दों में ना समझा पाऊं कि वो परफॉर्मेंस जो थी ना उनकी, वो दुनिया से बाहर की परफॉर्मेंस थी।
0: जी, जी जी।
1: तो वो फिल्म मेरे लिए सबसे उनकी महत्वपूर्ण है।
0: इसके अलावा उनकी बहुत सारी फिल्में आपने देखी भी होंगी।
1: सारी फिल्में तकरीबन देखी हैं।
0: हाँ।
1: अब देखिए ना उनके फ्लेवर देखिए आप, एक तरफ अर्धसत्य करते हैं, आक्रोश करते हैं, गूंगे का रोल है, आंखों से बोलते हैं, है ना, और एक तरफ चाची 420 करते हैं, है ना, माला माल वीकली करते हैं, और सीरियसली आपको, सीरियस रह के आपको हंसाते, उसमें कहीं बफूनरी की जरूरत ही नहीं है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियसली। तो उनका रेंज आप, क्योंकि देखिए रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है, तो वो कलाकार थे, मतलब अल्टीमेट कहूंगी इनको मैं,
0: और इंटरनेशनल
1: जी
0: लेवल के कलाकार उनकी, मतलब कोई फिल्म ऐसी नहीं है जिस पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हम उनके अभिनय से प्रभावित नहीं हुए।
1: फिल्म कमजोर हो सकती है, फिल्म की स्क्रिप्ट कमजोर हो सकती है, फिल्म का डायरेक्शन कमजोर हो सकता है, लेकिन वो उनको जितना किरदार दिया गया वो कमजोर नहीं है।
0: बिल्कुल। आपको संगीत में भी बहुत रुचि रही है ना, और आपकी चूंकि माताजी स्वयं क्लासिकल सिंगर रही हैं, तो आपके खून में भी सिंगिंग रही होगी
1: जी।
0: तो किस रूप में आप देखती हैं संगीत को?
1: अगर आप इंडियन संगीत की बात करते हैं, भारतीय क्लासिकल संगीत की बात करते हैं और वेस्टर्न क्लासिकल की बात करते हैं, तो मुझे दो चीजें हैं। वेस्टर्न क्लासिकल जब मैं सुनती हूं तो मुझे ह्यूमन इमोशंस दिखाई देते हैं, इंसान के जो जितने भाव हैं उसके जितने भी भावनाएं वो दिखाई देती हैं, और जब आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो आपको

0: कुछ नहीं दिखाई देता है, आपको दिव्य रोशनी दिखाई देती है। तो दो चीजों का ये मेरे लिए दिव्यता जो है वो म्यूजिक है।
1: जी,
0: मैंने भी सीखा है नसीर अहमद खान साहब से दिल्ली में, तो मैं सीखती थी। लेकिन जैसे बोल रही हूं ना कि म्यूजिक मेरे लिए डिवाइन है, दिव्य है, उसको मैं प्रोफेशन नहीं बना सकती, उससे कमाई नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अभिनय और म्यूजिक को कभी प्रोफेशन नहीं बनाया। वो मेरे लिए आत्मा की चीज है, उसको सुनती हूँ।
1: तो अगर हम आपसे कुछ गुनगुनाने को कहें तो आप कुछ पसंद करेंगी गुनगुनाना?
0: गुनगुनो ये तो आपने
1: क्योंकि यहाँ वो प्रोफेशन से नहीं जुड़ा है
0: एक लाइन गुनगुनाती हूँ
1: जी।
0: मेरी माता जी गाया करती थी ये गाना, बचपन में सुना था, लता जी का है,

0: वाह, बहुत सुंदर। तो सीमा जी, चूंकि आपके जीवन में रंगमंच और कला शुरू से थी, तो आपके जीवन में लेखन और थिएटर की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई और आपने लिखना कब शुरू किया?
1: मैं जब 15-16 साल की थी तो मैं छुप के कविताएं लिखती थी।
0: अच्छा, छुपकर क्यों?
1: छुपकर ये कि मुझे, देखिए ना, माँ इतनी बड़ी शायरा थी और वो मुशायरों में जाती थी। उन मुशायरों में साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी जैसे बड़े बड़े शायरों के बीच और माँ जिस तरह की शायरी करती थी, उनके आगे हम कुछ नहीं। और मैंने तो फ्री वर्स में अतुकांत लिखना शुरू किया था, तो इसलिए मुझे लगता था कि तो बड़ी बेकार सी चीजें हैं, लेकिन मन में उद्गार आते थे तो उसको कागज पे उतार लेती थी। तब से शुरू किया मैंने।
0: जी जी। तो सबसे पहले क्या लिखा, आपको याद है कि जब लेखन की शुरुआत हुई होगी तो सबसे पहला क्या लिखा गया होगा?
1: ऐसे एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती हूँ कि पहला कौन सी रचना थी, लेकिन वही 15-16 साल की उम्र में मैंने अपने माता पिता पे एक चार लाइनें लिखी थी। तुम अपने आंचल पर एक घनेरी छांव काट दो, ताकि मई जून की तपती गर्मी में भूख और प्यास से बेहाल जब मैं उस छांव का आश्रय पा सकूं, तो मुझे लगे भूले भटके प्यासे राही का पड़ाव यहीं तक, बस यहीं तक।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा, आपकी पसंद का ये गीत सुन लिया जाए?
1: जी बिल्कुल।

0: एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि 1988 से आपके टीवी धारावाहिक शुरू हुए और साथ ही आपने सरकारी मंत्रालयों के लिए भी डॉक्यूमेंट्रीज लिखी काफी, इन सभी पर थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं।
1: जी, कॉलेज से मैं निकलने के बाद पढ़ी रही थी, उन दिनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी। और कहते हैं ना, जहां जहां पड़े पग संतन के वहीं वहीं भंटा ढार। तो जैसे ही मैंने अलीगढ़ में एडमिशन लिया, उन दिनों राइट्स बहुत होने लगे, फसाद, तो हमें भागना पड़ता था वापस। तो वो 3 साल का 4 साल में हो गया बीए। तो उस बीच मुझे दिल्ली आना पड़ता था, क्योंकि अलीगढ़ से दिल्ली पास था, तो मैं दिल्ली आ जाती थी। इसलिए मैंने 83 में सबसे पहले पपेट थिएटर ज्वाइन किया
0: जी,
1: दिल्ली
0: हाँ,
1: में
0: जी।
1: तो वो इंटरनेशनल लेवल का था, जो हमारे ट्रेडिशनल पपेट्स होते वैसा नहीं था, मॉडर्न पपेट्री हम करते थे। और इंडिया को हमने कई कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया है, जो इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल्स होते थे उसमें मैं जाती थी। हमारे डायरेक्टर थे तब दादी पदम जी, तो उनके संरक्षण में, उनकी देखरेख में मैंने मॉडर्न और ट्रेडिशनल पपेट थिएटर किया। उसके बाद, चूंकि पपेट थिएटर में आप फाइनेंशियली सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदा रहने के लिए आपको कमाना भी बहुत जरूरी है, तो फिर मैंने एक सीरियल डाली दूरदर्शन में, और उस समय एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, और दूरदर्शन में वो सीरियल हो गई किले का रहस्य
0: जी।
1: और चूंकि नौसिखिया थे, इस फील्ड में आता नहीं था ज्यादा, तो काफी पैसे का भी लॉस हुआ, सब हुआ, लेकिन ठोकर खा के सीख लिया, तब से ये यात्रा है शुरू। जब दूसरे प्राइवेट चैनल्स आ गए तो उनपे भी लिखना और डायरेक्शन कर ही रहे थे, प्रोडक्शन भी कर रहे थे, तो वो सिलसिला चलता रहा।
0: और सरकारी मंत्रालयों से जुड़ने के लिए फिर
1: जी कई मैंने बनाई है डॉक्यूमेंट्रीज, जैसे अभी आपसे जिक्र कर रही थी महानदी के किनारे, तो छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन है महानदी, नदी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो महानदी जब मैं बना रही थी तो अच्छा बजट था उसका, तब तक लता जी ने संन्यास ले लिया था
0: जी
1: गाने से
0: जी,
1: तो तब मुझे अवसर

0: मिला कि मैं उन तक जा पाऊं। उससे पहले फिल्म नहीं बनाई थी मैंने कोई, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो मैंने हृदयनाथ मंगेशकर जी, जो उनके छोटे भाई हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने संपर्क किया। और नीरज जी, गोपाल दास नीरज, उनसे गीत लिखवाया महानदी पे। और हृदयनाथ जी से मैंने कहा कि मुझे लता जी से गवाना है गाना, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि उन्होंने हाँ भी किया और मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्होंने गाए। तो डॉक्यूमेंट्रीज तो मैंने बहुत बनाई हैं, और एड
1: इन सब के लिए आपने बहुत ज्यादा काम किया है मुझे लगता है, जिस पर अगर हम चर्चा करने चले तो शायद हमें कई अंकों में ये कार्यक्रम समेटना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री आपकी नजर में कौन सी ऐसी बन पाई जिसे आप याद करती हैं?
0: महानदी।
1: महानदी,
0: क्योंकि आप एक नदी की कहानी कह रहे हैं, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। और महानदी के किनारे जितनी सिविलाइजेशन हुई, बुद्ध आए उस दौरान वहां पर, और भगवान श्री राम, श्रृंगी ऋषि, और ये सब चीजों पे करते हुए आप एक्चुअली उस दौर में पहुंच जाते हैं। शूट जब कर रहे होते कि आप जिस धरती पे खड़े हैं वहां पे ये महान आत्माएं आके और चली गई हैं, तो आप अपने आप को ना कण समझते हैं कि मिट्टी का कण भी ज्यादा बड़ा है आपसे, और आप भाग्यशाली समझते हैं।
1: बहुत सुंदर। तो चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं।
0: जी, मेरी पसंद का गीत।

0: सीमा जी, जब आप ये लिखती हैं, जब कोई किरदार गढ़ती हैं, किसी विषय को उठाती हैं, लेखन करती हैं, तो आपकी कहानियों में आपकी किरदारों को लिखते समय पटकथा में किन बातों का आप ख्याल रखती हैं? जैसे अभी आपने महानदी का जिक्र किया, तो उस समय की पूरे इतिहास को समेटना कोई आसान काम नहीं होता है। किस तरह से पूरी चीजों को समेट कर इतने खूबसूरत तरीके से आप पेश करती हैं?
1: जी देखिए, क्या है, हर विषय का कालखंड और वो अलग होता है। तो ऐतिहासिक जो विषय होते, जैसे अभी अवंतिका बनाई, तो वो पूरा इतिहास को लेके बनाया। लेकिन वही जब आप फिल्म बना रहे होते मिस्टर कबाड़ी, तो वो आज की है। इसमें किरदारों को जो उठाने का आपने प्रश्न किया है, ये बहुत अच्छा और सार्थक प्रश्न है। हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि हम थिएटर कंपनियों में, छोटे छोटे गांवों में, हमारी थिएटर कंपनी दो दो मूविंग थिएटर कंपनी थी, दो दो महीने एक एक गांव में रहते थे। तो हम एक एक गांव में और शहरों में, कस्बों में हम लोग बहुत रहे हैं। अगर मैं आपको गिनाना चाहूं तो जितने साल मेरी उम्र है उसके कम से कम 5 गुना ज्यादा कस्बे हम लोगों ने बदले हैं।
0: क्या बात है?
1: तो जब हम अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों से लेके अपर क्लास के लोगों तक, कलाकार से लेके बिल्कुल मजदूर वर्ग के लोगों तक, जब आप उनसे बातचीत करते हैं, और अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं, अगर आप थोड़े से प्रज्ञावान हैं और आप चाहते हैं कि कुछ बनना है आपको, तो आप उन किरदारों को जिंदगी में आप आत्मसात करते हैं। फिर जब आप लिखने बैठते हैं तो पता नहीं कहां से कोई एक ठेले वाला है ना, कोई एक अचार बेचने वाला, कोई एक है ना, वो किरदार आते चले जाते हैं, वो जीवंत हो जाते हैं लेखनी के जरिए और आपके सेलुलॉइड के जरिए।
0: तो आपकी रचनाओं में जो आपकी किरदार है वो बहुत जीवंत हैं। आप किसी भी सीरियल को उठाकर देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म को देख लीजिए, तो ये सब क्या आपके स्वयं के जीवन से जुड़े हुए कोई पहलू हैं? या जैसा कि अभी आपने कहा कि इतनी सारी जगह में रही हूं, आसपास की घटनाओं से, लोगों से प्रेरित ज्यादा रहे?
1: बहुत ज्यादा। आपके कलाकार जो भी पात्र हैं वो आपके आसपास ही होते हैं, उनको फिर आप एक कैरेक्टर दे देते हैं, उस कहानी में ढाल लेते हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, शोले फिल्म सबको समझ में आएगी कि शोले में आप जगदीप जी को देखते हैं कि वो टाल पे बैठे हैं। अब जब आप टाल पे बैठने वाले इंसान का कैरेक्टर आप गढ़ रहे हैं, तो आपको भाषा भी उसकी वैसी ही लेनी पड़ेगी, ना कि वो जमींदार साहब की भाषा अलग होगी, उसकी भाषा अलग होगी, उसका नाम अलग होगा, है ना। गायत्री देवी आप नाम अगर है तो वो थोड़ी सी रॉयल फैमिली से ही होंगी
0: जी,
1: लाजवंती होंगी तो वो कुछ और होंगी, लीलाबाई होंगी तो वो, है ना। हाँ
0: बिल्कुल सही कहा। तो यानी कि हर किरदार को जब हम जीते हैं तो उसी के अनुरूप उसके बैकग्राउंड को भी महसूस करते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से है
1: जी।
0: आपके जीवन में कौन सा ऐसा किरदार है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया अब तक?
1: मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार एक प्रथा पे है, मध्य प्रदेश, मालवा और राजस्थान में एक प्रथा है, अभी भी थोड़ा बहुत चलन है तो काफी कम हो गई है, कि पति अपनी पत्नी को बेच सकता है, नाता बैठना बोलते हैं। तो वो किरदार कैसे गढ़ा, जब मैं पुरी साहब से बिछड़ गई थी बीच में, तो मैं झालावाड़ गई, झालावाड़ राजस्थान में, जहां माताजी पढ़ाती थी, उर्दू टीचर थी, वहां पर कहीं और जब ठिकाना नहीं होता है ना भावनाओं का, तो माँ ही याद आती है। माँ की गोद ही ऐसी जगह है जहां आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप 9 महीने उसके पेट में रहे हैं, उसी से सांस ली है, उसी से खाया है, उसी से पिया है, तो आप निश्चिंत थे वो 9 महीने, आप तो निश्चिंत थे,
0: बिल्कुल
1: ना चिंता थी आपको, सांस कैसे लूं और खाना कैसे खाऊं। तो उस समय जब मैं जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, भावनात्मक रूप से, सोशली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो मैं माँ के पास चली गई। जब मैं वहां गई तो हमारे यहाँ एक बाई काम करती थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, शारदा नाम मैंने रखा है उसका। तो शारदा एक दिन मुझसे बोली, वो 300 रुपया

महीना उसकी उस समय तनख्वाह थी झाड़ू पोछे की, तो मुझसे बोली कि भाई साहब मुझे 5,000 रुपए उधार दे सकती हैं क्या? तो मैंने कहा तुम्हारी 300 रुपए तनख्वाह में तुम घर चलाती हो, दो और घर होंगे ज्यादा, 600-700 रुपए में घर चलाती थी वो। 5,000 रुपए पहली बात तो ऐसा क्या संकट आ गया, दूसरा कैसे चुकाओगी 5,000? उस समय ऐसे है कि कोई भाई मुझसे 5 लाख रुपए आज मांगे तो कह लेंगे नहीं, मुझे ना नाते की झगड़े की रकम भरनी है वरना मुझे बेच दिया जाए।

0: करती हूँ तो मुझे 5,000 रुपए देने। मैंने वो तो 5,000 दे दिए, उसको तो भगवान ने बचाया, मैं तो एक बहाना थी,
1: माध्यम बनी।
0: लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज आई कि हम इतने सक्षम नहीं है कि हजारों लाखों शारदाओं को बचा सके। तो फिर वो कैरेक्टर मेरी स्क्रिप्ट बन गया
1: जी,
0: और इसलिए मैंने हार्ट फिल्म लिखी।
1: जी जी, एक ज्वलंत विषय है ये जिस पर आपने अपनी फिल्म में विषय उठाया, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: शंकर जयकिशन की फिल्म है प्रोफेसर, आवाज देकर
1: हमें तुम बुलाओ। क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये, आइए सुनते हैं इसकी।
0: जी,

0: सीमा जी, बात चल रही है आपकी जिंदगी पर, आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर। हम आते हैं लेखन के साथ साथ आपके निर्देशन पर भी। लेखक जब लिखता है तो बहुत सारे किरदार उसके आसपास होते हैं। जब एक लेखक से आप निर्देशक की दुनिया में कदम रखते हैं तो फिर वो किरदार आपके सामने होते हैं जिन्हें आपको जीवंत करना होता है। तो निर्देशक बनने की जो यात्रा थी वो कैसे शुरू हुई और ये यात्रा कैसी रही?
1: देखिए, जब राइटर लिखता है तो उसकी लेखनी ना बहुत, जिसे बोलना चाहिए, हंसी में बता रही हूँ, छलांगे मारती है। ये भी लिख दो, वो भी लिख दो, ये लिख दे। लेकिन जैसे ही आप निर्देशन में लाते हैं उस स्क्रिप्ट को, तो आपकी लिमिटेशन हो जाती है। आपको किरदार सामने खड़े होते हैं, उनको कितनी दूरी पे जाना है, कैमरा कैसे करना है, वो सिमट जाता है ना। आपका जो कैनवास है वो सिमट के फिल्म का पर्दे जितना हो जाता है।

0: राइटर का तो कैनवास आकाश है
1: जी।
0: लेकिन निर्देशन में एक चीज है कि सृजन का जो राइटर और निर्देशक का जो एक मजा है लिखने का और उसको बनाने का, क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अभी तो शब्द है कागज पे, अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं, निर्देशन में जाना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह। तो ये यात्रा दुरू होती है, मुश्किल होती है, क्योंकि डायरेक्टर को बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। उसको म्यूजिक का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको कैमरे एंगल का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको लेंसेज का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको एक्टिंग का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस कैसे ले।
1: बिल्कुल,
0: तो मुश्किल काम होता है लेकिन मजा आता है।
1: जैसे आपने कहा कि उसे हर एंगल का ज्ञान होना चाहिए, इसके पीछे क्या पहले आपने कुछ कोर्स किए या आप किसी के अंडर में रही, इतना एक वाइड जैसे एंगल देखने के लिए क्या एक निर्देशक की तैयारी होती है?
0: देखिए क्या हुआ कि पपेट थिएटर से निकलने के बाद सबसे बड़ा मसला था सर्वाइवल का, कि आप रोजी रोटी, दिल्ली में रहना है और मकान का किराया भी देना है, खाना भी खाना है, रहना भी है, और इतने सक्षम नहीं थे कि माता पिता भेज सकें, और आप 3 साल का 4 साल का FTII में जाके कोर्स कर सकें। तो जो भी सीखा जिंदगी से सीखा, ना तो किसी के अंडर में मैं असिस्टेंट रही, ठोकरे खा खा के सीखा, लेकिन सीखा खुद से ही सीखा और अभी भी सीख ही रहे हैं।
1: हर पलम सीखती
0: जी,
1: ही
0: है। जी।
1: तो जीवन के संघर्ष को कैसे देखती हैं आप?
0: बहुत संघर्ष रहा है, जीना जो है ना वो अपने आप में ही एक संघर्ष है, तब से शुरू हो जाता है जब हम कंसीव होते हैं, जब हमारा है ना, तब से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही दुनिया में आते हैं तो आपका संघर्ष है, रोटी कमाने का संघर्ष है, अपने आप को स्थापित करने का, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बिना समझौता किए आपने एक प्रिंसिपल बना रखे हैं, उनसे समझौता किए बिना आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा सा मुश्किल रास्ते हो जाते हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि उन रास्तों से होके हम गुजर गए। समय लगता है, थोड़ा लंबा होता है।
1: तो आप जिस दुनिया में हैं, चाहे थिएटर की दुनिया से वो शुरुआत हुई और ग्लैमर वर्ल्ड तक आप पहुंची, आज भी आप वहां स्टैब्लिश हैं, आप बराबर काम कर रही हैं, तो थिएटर की दुनिया से लेकर ग्लैमर की दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं या आप खुद एक महिला के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रही हैं, क्या संघर्ष होते हैं वहां महिला को अपने आप को स्थापित करने के और बने रहने के?
0: महिला होना ही अपने आप में एक संघर्ष है। हम बहुत सारी गुलामियों को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी गुलामियों। एक जमाने में प्राचीन काल में तो स्त्री बहुत स्वतंत्र थी
1: जी।
0: फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे ही आते गए आताताई आते गए तो स्त्रियों को सुरक्षा के लिए उसको पीछे कर दिया गया और वो फिर हमारी मानसिकता बन गई। आज भी मैं देखती हूं मेरा जो संघर्ष रहा है वो शायद मैं बहुत फॉर्चुनेट सौभाग्यशाली रही हूं कि मुझे किसी ने उस तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की, या फिर मेरा प्रोफेशन ऐसा था जिसमें कोई चांस नहीं था कि एक्सप्लॉइट, या मेरा अपना व्यक्तित्व ऐसा रहा होगा कि थोड़ा डरते भी थे लोग, क्योंकि मैं मुंह फट थी थोड़ा सा इस मामले में, बोल देती थी, आउटस्पोकन थी कि भाई ऐसा है कि अगर ऐसी बात है तो आप रखिए अपने पास, मुझे नहीं चाहिए काम। लेकिन और लोग इतनी सौभाग्यशाली नहीं होते हैं, मजबूर कर दिया जाता है उनको, या तो वो उस फील्ड को छोड़ देती हैं या फिर कहीं सरेंडर कर देती हैं। तो ये तो स्त्री के साथ चलता ही रहा है। और दूसरा एक और मानसिकता है समाज में कि अगर कोई स्त्री सक्सेसफुल हो गई है तो जरूर किसी न किसी तरह के समझौते करके ही ऊपर आई है
1: जी।
0: ये एक अजीब सी मानसिकता है, उसमें मुझे एक सवाल हमेशा लोगों से ये खड़ा होता है कि भाई तुम सिर्फ समझौते देखते हो, चाहे लता जी हो, आशा जी हो, हेमा मालिनी हो, मतलब किसी

0: मधुबालाओं, मीना कुमारी हो या आप लेखिकाएं हो,
1: जी
0: उन सबके ऊपर ये लांछन लगते आए हैं। आप उनका टैलेंट नहीं देख रहे,
1: उनकी मेहनत
0: और उनकी प्रतिभा। आप कोई दूसरी लता मंगेशकर बता दीजिए ना, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज से हो सकता है क्या? नहीं, जब तक आपके अंदर प्रतिभा नहीं होगी, जब तक आपके अंदर एक डेडिकेशन नहीं होगा अपने प्रोफेशन को लेके, तब तक आप सक्सेसफुल हो नहीं सकते। वरना तो ऐरा गैरा नतु खैरा कोई भी बन जाएगा, स्टार नहीं बनते है ना।
1: तो कितनी महिलाएं हैं जो आज लेखिकाएं हैं या निर्देशिकाएं हैं या किसी भी प्रोफेशन में है, किसी भी कंपनी में है, किसी भी महकमे में वो काम कर रही है, वो अपनी मेहनत और मशक्कत के बाद जब किसी पद या प्रतिष्ठा पर पहुंचती हैं और उनको ये इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि भाई होगा कहीं कुछ न कुछ, वरना इतनी ऊंचाई पर पहुंचना एक महिला के लिए इतना आसान तो नहीं है, तो बड़ा दुख होता है। आज भी जब ये बातें कही जाती हैं तो
0: बहुत दुख होता है, और दुख नहीं शर्म आती है उन लोगों की मानसिकता पे। और मुझे एक बात की और शर्मिंदगी है कि इसमें पुरुष तो है ही शामिल, स्त्रियां भी शामिल हैं ये लांछन लगाने में, तो वो बहुत गलत है। हमको हमारी मानसिकता, समाज की मानसिकता को बदलने की बहुत जरूरत है
1: जी। चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं
0: जी।

ये था सुप्रसिद्ध राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन।

0: डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत बस कुछ ही पलों के बाद।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। प्यार मोहब्बत इश्क की बातें आसान कहाँ हैं? एक ओर उनके दीदार का रहता है इंतजार, तो वहीं उस नजर का तीर भी हो जाता है दिल के आर पार। नजरों की इनायत और नजरों की बगावत का अंदाजा तो उन्हीं को है जिन्होंने खाई है चोट एक नजर की। वो एक नजर जो दिल को अपने साथ बांध ले जाए, या वो नजर जो दिल को तार तार कर जाए और दिल आह भर कर ये कह उठे।

0: गई रे।
1: उफ, ये प्यार करना भी किस दौर में आसान रहा है। दुनिया जमाने की नजरों की परवाह कहाँ चैन लेने देती है प्रेमी युगल को। न मिलना आसान है, न बातें करना। मुलाकात यूं खत्म हुई जाती है कि मानो पलक झपकी और वक्त बदला। आखिर ये दिल दीवाना भी खुद को संभाले कब तक।

इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, मिलने की तमन्ना है और चारों ओर जमाना है। जमाने की इस पहरेदारी के बीच आखिर दो दिल मिले तो किस तरह, ना दो बातें हो सकती हैं, ना नजरें चार, भाई कैसे संभाले ये दिले बेकरार। ना छेड़ा कोई तराना, ना बजाई कोई धुन, ढलने लगी है शाम, अब ये तो बताओ कैसे ढूंढे तुमको हम।

0: आप सुन रहे हैं छाया गीत। भाई बहुत हुई दुनियादारी, मोहब्बत की भी है अपनी जिम्मेदारी। अब इस दुनिया के सामने कर दिया है ऐलान, जो करना है कर लो, देखा जाएगा अंजाम। इस दुनिया से अब डरने का समय हुआ खत्म, आहें न भरेंगे खुल के कहेंगे हम, क्या हुआ जो दिल हमने दिया, क्या हुआ जो दिल तुमसे लिया। मोहब्बत के दुश्मन है जमाने सुन ले, की है मोहब्बत कोई चोरी तो नहीं, दिल के बदले लिया है दिल, अब तेरी सुनेंगे नहीं।
1: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना।

0: दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहाँ होते हैं।
1: अरे वाह रे मजनू,
0: लैला लैला करेगा, लैला ओ लैला, लैला लैला करेगा, ठंडी आहें भरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत

0: तो बताओ हमको,
1: डूब मरो,
0: डूबेगा नहीं तरेगा, छप छप छप छप छप छप छप, डूबेगा नहीं तरेगा, प्यार से हम नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा।
2: हमने तो इश्क में दुनिया भुला दी और वो हमसे पूछते हैं कि तुम हमारे हो कौन। अब तक तो सताती रही दुनिया की रस्में, अब कैसे तुम्हें समझाए अपने दिल की कस्में। वो तुम्हारी आंखें ही थी जिन्होंने किया था पहला वार, और काम से गया था अपना ये दिल बेकार। अब करोगी ऐसी बातें जनाब, तो इश्क का इश्क से ही मिलेगा जवाब।

0: मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो,
1: तो बताओ कि तुम।
2: लो आ ही गई वो प्यार की देवी हमारे सामने, देख के जिसको लगा ऐसा कि अपने दिल को थाम ले। अब क्या करेगी ये दुनिया सारी, वो तो खुद ही उसके हुस्न पर वारी। कल तक जो कहते रहे मोहब्बत को बड़ी बीमारी, आज खुद ही दिल को हाथ में लेकर कर रहे हैं खुद ही देने की तैयारी।
1: मैं

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: तराने नए पुराने
1: तराने नए पुराने इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन।

कार्यक्रम की शुरुआत सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों से। फिल्म का नाम है वास्तव। गीतकार हैं समीर और संगीत जतिन ललित का।

सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था वास्तव। कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म लव स्टोरी का दो गाना, स्वर लता मंगेशकर और अमित कुमार के, गीत के बोल आनंद बख्शी के लिखे हुए और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म तेरी कसम से लिया है। इसे आवाज अमित कुमार ने दी है, शब्दकार आनंद बख्शी हैं और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब सुनते हैं फिल्म यस बॉस का दो गाना। गाने वाले कलाकार हैं कुमार सानू और अलका याग्निक। इसे जावेद अख्तर ने लिखा है और तर्ज बनाई है जतिन ललित ने।

तराने नए पुराने इस कार्यक्रम का शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे हिंदी में समाचारों के बाद। इस समय संध्या के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया। न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना

0: की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। प्रोजेक्ट 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उन्नयन योजना PMFME ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए एक मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रही हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने का शेष भाग अब हम आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, फिल्म का नाम सन्यासी।

0: यह आवाज थी लता मंगेशकर और मुकेश की, फिल्म का नाम था सन्यासी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक्ट में रुकावट करती है
3: जी।
2: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी

0: कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में वर्मा मलिक का लिखा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम

0: फिल्म का नाम है एक जान है हम, युगल स्वर शब्बीर कुमार और आशा भोंसले के, गीतकार हैं अनजान और संगीतकार हैं अनु मलिक।
1: आई लव यू, यू लव मी, आई लव यू, तुम मुझसे प्यार करती हो।

0: आशा भोसले और शबी कुमार को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था एक जान है हम।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पड़ोसन का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और आशा भोसले की। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और धुन राहुल देव बर्मन की है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा में सुनिए हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब से थोड़ी ही देर बाद में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता, संध्या 7 विशेष जयमाला कार्यक्रम पेश करेंगे अभिनेता प्राण, संध्या 7:45 पर सुनिएगा इंद्रधनुष, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे जिज्ञासा, रात्रि 8 हवा महल में आज सुनो कहानी में कहानी होगी विश्वास, इसका भाग 2 प्रसारित होगा। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, वाचक स्वर अमरकांत दुबे का और प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। चित्रलोक का प्रसारण समय आज

रात्रि 8:15 और आज रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 9:30 पर आज की फनकार कार्यक्रम होगा और ये कार्यक्रम हास्य अभिनेत्री गायिका उमा देवी पर केंद्रित होगा। आज रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत आलेख और स्वर सलमा सैयद का। 10:30 पर सुनिएगा ढलती जाए रात और 11 बजे चित्रपट संगीत साथी मैटिनी शो। ये थे आज के कुछ मुख्य कार्यक्रम और अब सुनिए हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लेखा जोखा। कल सुबह 6:05 पर वंदनवार और चिंतन, 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान का 247वां भाग प्रसारित होगा। कल सुबह 6:45 और संध्या 6:45 पर कार्यक्रम होगा संगीत सरिता। इसमें सुनिएगा श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, भाग 12, कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, संवादिका ममता सिंह, संपादन सहायक झरना सोलंकी और प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। कल सुबह 7 बजे हमारा दैनिक कार्यक्रम भूले बिसरे गीत 7:30 पर आप सुनते हैं हम है राही प्यार के। त्रिवेणी का प्रसारण समय कल सुबह 8:15 और कल दोपहर 2 बजे आलेख और स्वर राजुल अशोक का। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 8:30 और कल रात्रि 8:15 पर। कल सुबह 9:30 पर आज की फनकार कार्यक्रम होगा और ये कार्यक्रम अभिनेता राजेंद्र कुमार पर केंद्रित होगा। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले हैं और कल रात्रि 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम निर्माता निर्देशक विमल रॉय पर केंद्रित होगा। इसकी प्रस्तुतकर्ता होंगी मनीषा जैन। कल सुबह 10 बजे बॉम्बे टॉकीज में आप सुनेंगे लेखिका निर्देशिका सीमा कपूर से हमारी की गई बातचीत का पुनः प्रसारण। प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। विविधा कार्यक्रम कल दिन में 11 बजे प्रसारित होगा। इसमें आप सुनेंगे सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक डॉ. राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत। कल दोपहर 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर और 2:30 पर आप सुनते हैं सदाबहार नगमे। मनचाहे गीत फरमाइशी फिल्मी गानों का ये कार्यक्रम होगा कल दोपहर 3 बजे। कल दोपहर 3:30 पर नाट्य तरंग में सुनिएगा नाटक सूखा पेड़। लेखक लोकेंद्र शर्मा, निर्देशक भी लोकेंद्र शर्मा ही हैं। कल दोपहर बाद 4 बजे पिटारा के अंतर्गत कार्यक्रम होगा उजाली उनकी यादों के। आप सुनेंगे रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का 4वां भाग। प्रस्तुतकर्ता हैं तेजश्री कामली। छाया गीत का पुनः प्रसारण कल संध्या 5 बजे 5:30 पर आप सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम तराने नए पुराने। संध्या रंजन कल संध्या 6:35 पर और कल संध्या 7 बजे विशेष जयमाला कार्यक्रम होगा। इसमें आप सुनेंगे सैनिकों की शौर्य गाथा। ये कार्यक्रम महावीर चक्र शिपॉय इमलियाकुम पर केंद्रित होगा। कल संध्या 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा साज और आवाज कार्यक्रम और हवा महल में कल रात्रि 8 बजे हास्य नाटिका कॉलोनी कल्याण मंडल प्रसारित होगी। लेखक एमपी लेले और निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। चित्रलोक कल रात्रि 8:15 पर और आपके लिए कार्यक्रम कल रात्रि 9 बजे। कल रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत आलेख और स्वर यूनुस खान का। प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेकी।

ढलती जाए रात, ये कार्यक्रम कल रात्रि 10:30 पर और कल रात्रि 11 बजे सुनिएगा विविधा का पुनः प्रसारण। जरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण, और अब सुनिए संध्या रंजन।

फिल्म रफू चक्कर में अभी आपने कंचन, अजीज, नाजा और साथियों को सुना। यह आवाज़ है हेमलता की। फिल्म का नाम है राजा हरिश्चंद्र। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संध्या रंजन।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: जी, और हमें याद आ रहा है कि पंडित छन्नूलाल मिश्र से भी आपकी बड़ी गहरी मित्रता थी और बहुत कुछ उन्हें आप गाते हुए सुनते थे।
1: गाते हुए सुनते थे, उनको मैं चाचा कहता था और वो इतना प्यार करते थे कि बनारस में जब मैं बजा रहा था कला प्रकाश के लिए तो उनका फेवरेट राग हंसध्वनि था
0: जी,
1: और हंसध्वनि मैं उस दिन बजा रहा था। मेन राग हंसध्वनि कोई बजाना नहीं चाहते क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन कम है ना
0: जी जी,
1: वो 10 मिनट बाद तो कलेजे के ऊपर आने लगता है राग
0: जी।
1: तो मैंने 1 घंटा बजा दिया, 1 घंटे से ज्यादा। तबले में उनके पुत्री थे पंडित राम कुमार मिश्रा, और आके लिपट लिए मुझे, बोले कहा बजौला कहा बजौला तू हंसध्वनि, हमके चाचा ये ले तो तुके सुनावत रहली। तो बहुत प्रसन्न हुए। तो एक चीज उनका मैं बजाता हूँ, और रामायण भी बहुत अच्छा गाते। तो मेरी जो आध्यात्मिक जीवन है उस वजह से हम लोग कभी कभी छन्नू महाराज और हम एक होटल में रहते थे तो बड़ा आध्यात्मिक चर्चा करते थे। वो बोलते थे कथा प्रवचन क्यों छोड़ दिया तूने।
0: यहाँ पर अपने श्रोताओं को हम बता दें कि पंडित रोनू मजूमदार पहले एक कथावाचक थे और अभी भी इनके सामने न कोई कागज है न कलम है, ये ऐसे स्पॉन्टेनियस बोल रहे हैं बिना किसी तैयारी,
1: बिना कुछ किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं। तो मैं छन्नू महाराज जी को एक उनकी चीज है जिसमें खोलो श्याम अब चंदन के वड़िया, अकेली डर लागेला धीरे धीरे, सावन झर लागेला धीरे धीरे, तो ये बजा के जो बोलते हैं लोग कि आपके बजाने में कुछ आध्यात्मिक रस आ रहा है वो पंडित जगन्नाथ पहाड़ी जी का देन
0: जी,
1: है
0: जी। तो तनी पंडित जी, पंडित छन्नूलाल मिश्र वाला सुनावे बांसुरी पर आप।
1: हाँ

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। पंडित जी, आज हमारे श्रोताओं को बताइए कि पंडित जगन्नाथ पहाड़ी आपके गुरु जी थे, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दी।

0: वाह, अद्भुत।
1: उसके पहले जगन्नाथ पहाड़ी जी की आपने बात कही, तो पंडित जगन्नाथ पहाड़ी बहुत बड़े कथावाचक हुए। 20,000 लोग, जब मैं उल्लासनगर बनारस से आने के बाद, पहले उल्लासनगर में झूलेलाल मंदिर में वो आते थे, उनकी एक लाइन सुना रहा हूँ कि धुनी उसके दर पे तू रमा ले, वो तुम पे रीझ जाएगा, उसके दर को अपना घर बना ले, वो तुझ पे रीझ जाएगा, वो दिल पसीज जाएगा। मेरे भगवान को मगरूर नहीं भाती है, उसे तो भावना की डोर खींच लाती है। पुकार दिल से निकले वो अर्श हिलाती है, जाके भगवान के दहलीज से टकराती है। तो ऐसे कवि हुए कि जिसका जवाब ही नहीं
0: जी। और कविता का गुण आप में भी आया है
1: जी, उनसे इंस्पायर होके मैंने लिखा, उन्हीं की कृपा। ये समझिए, जनेऊ संस्कार होता है हमारे हिंदुओं में। बाल योगी जी ने मेरा जनेऊ किया था हरिद्वार में, जब मैं 13 साल का था
0: जी।
1: तो मैं उनके साथ संन्यास लेके जाने के लिए तैयार हो गया था।
0: ओ।
1: तो फिर उन्होंने मेरे कपाल को देख के कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पार्टीशन जब हुआ तो सब कुछ हमारा लुट गया, तो वो सब वापस आएगा तुम्हारे नसीब से ही, तुम गृहस्थ आश्रम में रह के बांसुरी की सेवा करो
0: जी।
1: क्योंकि तुम पूर्ण कथावाचक नहीं हो, तुम थोड़ी कुछ कथा करते हो फिर बीच में बांसुरी बजाते हो।
0: ओहो,
1: ये नई चीज है, ये तुम्हें जीवन में काम आएगा। तो उससे मैं इंस्पायर होके मैंने लिखा, चाहे ऊंचे महल बना लो मालाओं से कंठ सजा लो, चाहे ऊंचे महल बना लो मालाओं से कंठ सजा लो, जब तक हृदय न तिलक करेगा ये अभिनंदन व्यर्थ रहेगा।
0: वाह।
1: ये मैंने नरेंद्र मोदी जी को भी सुनाया। जब मुझे पद्मश्री मिला तो अलग से वो आए फोटो खिंचाने के लिए मेरे पास।
0: क्या बात है।
1: अरे कैसे हैं मजुमदार जी, अब कब मिले थे, जब वो उनके ऊपर लगा था कि वो इंटॉलरेंस और वो सब, तब से लेके ये कब मिले। और ये पद्मश्री तो मुझे 2024 में 26 जनवरी को अनाउंस हुआ कि इनको पद्मश्री दिया जाएगा रोनू मजुमदार जी को, मगर मिला तो मुझे 25 में ना, जिस दिन अवार्ड वितरण करते हैं, मगर उनको याद था कि मैं कविता करता हूँ।
0: क्या बात है,
1: कविताएं लिखना चालू है ना
0: जी। अच्छा,
1: हाँ जी। मजुमदार जी और क्या हाल है आपका,
0: क्या बात
1: तो
0: है?
1: मैं आज भी लिखता हूँ, ये मेरा लिखा हुआ है
0: जी।
1: अजहू न आए घनश्याम, राह तकत हारे नैन हमारे
0: जी जी।

0: आज भी कितनी बंदिशें मैंने कोरोना काल में लिखे होंगे कि पूरी ग्रंथ भर गई।
1: क्या बात है।
0: जो मेरा बड़ा बेटा कह रहा है कि पिताजी छपवाइए इसको, पिताजी की बंदिशें।
1: हाँ, हमारी ओर से
0: मैंने कहा कि मैं क्या साथ में ले जाऊंगा बेटा। बोले आप साथ में कुछ लेके नहीं जा सकते, इसीलिए देके जाइए।
1: बिल्कुल सही बात।
0: उससे मैं जीत नहीं पाता हूँ। मेरा जो बड़ा बेटा है वो बहुत मेरा फैन सबसे बड़ा वो है,
1: संगीत के क्षेत्र में है वो भी।
0: वो डेंटिस्ट है मगर बांसुरी बहुत अच्छा बजाता है।
1: अच्छा।
0: उसने इसको अपना प्रोफेशन, अपना व्यवसाय नहीं बनाया मगर वो प्लेइंग में कम नहीं है
1: जी।
0: छोटे बेटे ने बनाया, ऋषिकेश ने।
1: जी जी। रोनुदा, आप एक साधक के रूप में भी जाने जाते हैं, बांसुरी को आपने साध लिया है, तो जब एक साधक अध्यात्म की ओर जाता है तो क्या होता है?
0: ओशो रजनीश के वहां भी मैंने बजाया और वो बोले कि आज तुमने बहुत अच्छा बजाया
1: जी।
0: तो मैंने जवाब दिया मैं अपने लिए बजा रहा था। बोले क्यों? मैंने कहा क्योंकि आप पैसे तो देते नहीं है तो मैं अपने लिए क्यों ना बजाऊं। बोले कि जब पैसे मिले तब भी अपने लिए बजाना, जब अध्यात्म मालूम पड़ने लगता है तब इंसान अपने लिए बजाने लगता है। इसीलिए राजन भैया को मैं इतना मानता हूं, जब राजन भैया गए तो मैं इस तरह रोया कि जैसे बच्चे फूट फूट के रोते हैं। वो कहते थे कि जब तुम ईश्वर के लिए बजाओगे तो सब सुनेंगे, जब तुम उनके लिए बजाओगे तो वो सुनेंगे नहीं
1: जी।
0: इसीलिए ईश्वर तो अंदर है तो इसीलिए खुद के लिए बजाओ
1: जी।
0: हर चीज में ऐसा सोचो कि तुम छात्र हो, सब्जेक्ट से प्यार करो, सक्सेस से नहीं
1: जी। जी।
0: आजकल जो शिष्य आते हैं मेरे पास वो पहले बोलते हैं कि यूट्यूब में मेरे लाइक्स नहीं।

0: बढ़ रहे हैं। अरे मैंने कहा YouTube में लाइक्स बढ़ भी जाएंगे तो तेरा बजाना थोड़ा ही अच्छा होगा, वो तो पैसे से भी तू लाइक्स खरीदा जाता है आजकल। ये नहीं पूछ रहा है तू कि मिराज़े गजल में आपने ऐसी फ्लूट कैसे बजाई थी,
1: जी जी
0: ये क्यों नहीं पूछ रहा है?
1: बिल्कुल।
0: सलोना सा सजन और मैं हूँ, ये कैसे उसमें फ्लूट आया? कहाँ आशा जी गुलाम अली मिलके कर रहे हैं काम और मैं उसमें बांसुरी बजा रहा हूँ, तू ये क्यों नहीं पूछ रहा है कि जमीन आसमान में वो आपका आलाप गुरुजी वो रे को सा करके क्यों बजाया आपने, ओरिजिनल सा में क्यों नहीं बजाया?
1: जी तो हम तो आपसे अनुरोध कर रहे हैं पंडित जी कि बजा के सुनाए हमारे श्रोताओं को।
0: देखिए मैं आपको ओरिजिनल सा से भी सुनाता हूँ, आपको आनंद नहीं आएगा। अभी ठीक ठाक है, अब रे से बजाऊंगा
1: जी।

0: ऐसे करके लुई बैंक्स घुसते हैं, मेरी बांसुरी खत्म होती है। तो मैं चाहता हूं कि जो संगीत में बांसुरी लेना चाहते हैं, अगर उसको फुल टाइम लेना है तो सक्सेस के बारे में इतना ना सोचें,
1: जी जी,
0: सब्जेक्ट के बारे में सोचें। मैं कितने प्रकार के विश्व के बांसुरी ट्राई करो। अभी स्पीक मैके ने मुझे आयरलैंड भेजा था,
1: जी जी,
0: आयरिश फ्लूट मुझे गिफ्ट किया उन लोगों ने।
1: क्या बात है,
0: वो ऐसी बांसुरी है कि आप देखेंगे, आज नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आयरिश बांसुरी आपको, पूरा ब्लैक है,
1: जी जी,
0: तो आज भी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ,
1: जी जी,
0: कि कुछ न कुछ मुझे मिलता जाए।
1: जी, अब आज की इस कड़ी को यहाँ पर विराम दे रहे हैं, कल नई जानकारी और बांसुरी की तान के साथ उपस्थित होंगे फिर से। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।
2: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

0: फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम पेश किया है फिल्म जगत के प्रसिद्ध अभिनेता प्राण ने। ये रिकॉर्डिंग हमने अपने संग्रहालय से प्राप्त की है।
1: फौजी भाइयों, खुश रहो, आबाद रहो। कहते थे कि यूं कहते जो वो आता, सब कहने की बातें हैं, कुछ भी ना कहा जाता। माशूक का सामना होते ही इस आशिक का जो हाल हुआ है, फौजी भाइयों, यही हाल मेरा है। घर से चला था ये सोचते हुए कि आपसे यूं कहूंगा, ऐसे कहूंगा, गोया बड़े बड़े ख्याली पुलाव पकाए थे, मगर माइक के सामने आते ही सारी बहादुरी हरम हो गई। और भाइयों, ये माइक है ना, यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। यूं समझिए कि आज पहली बार मैं माइक के सामने आया हूं। इससे पहले न किसी जलसे में बोला और ना ही रेडियो पर। यहां भी मैं खुद नहीं आया हूं, आपकी मोहब्बत खींच लाई है। और जब आ ही गया हूं तो कुछ कहना भी पड़ेगा, तो क्यों ना सच कह दूं कि आपकी बहादुरी के कारनामे जब भी सुनता हूं तो ख्वाजा मीर दर्द का यह शेर याद आता है, जान से हो गए बदन खाली, आंख भर तूने जिस तरफ देखा। अब रहा सवाल फिल्मी गानों का, तो उनमें सबसे पहले राजेंद्र कृष्ण जी की लिखी हुई गजल। राजेंद्र कृष्ण जी एक अच्छे गीतकार तो हैं ही, साथ ही साथ एक बेहतरीन डायलॉग राइटर भी हैं। फिल्म खानदान में मेरे लिए उन्होंने ये डायलॉग लिखा, जहां हीरो आकर कहता है कि तुम बीच में मत बोलो, हम लोग रामायण पढ़ने वाले लोग, जहां भाई भाई के लिए जान दे देता है, तो विलन बोलता है, बखुरदार कौन सी रामायण पढ़ी है तुमने, हमारी रामायण में तो ये लिखा है कि रावण को उसके सगे भाई विभीषण और बाली को उसके सगे भाई सुग्रीव ने मरवा दिया था। दोस्तों, ऐसे मायानाज लिखने वाले हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो सिर्फ राजेंद्र कृष्ण जी हैं।

आजकल सस्पेंस का जमाना है, इसलिए बिना नाम बताए हुए अब मैं अपने एक बहुत ही अजीज और बुजुर्ग दोस्त की सिफत बयान करूंगा। बात तो जब है कि आप इन्हें पहचान जाएं। हाँ तो ये साहब बहुत बड़े संगीतकार हैं, लेकिन हर रिकॉर्डिंग से पहले बेहद नर्वस रहते हैं, एक एक चीज को 10-10 बार सोचते और समझते हैं। और हाँ, पान खूब खाते हैं और सिर्फ मुझे खिलाते हैं। फुटबॉल के बड़े शौकीन हैं और हर मैच में मौजूद रहते हैं। बंगाल की टीम अगर जीत जाए तो मुझे

पान पेश करते हैं और अगर हार जाए तो कभी कभी गुस्से में दो पान भी पेश कर देते हैं। बिल्डिंग का नाम जेट है और अगर ड्राइवर ने मोटर तेज चला दी तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है। गर्ज ये कि मैंने कम कहा, आप ज्यादा समझिए। उम्र में काफी बूढ़े हैं लेकिन संगीत में बड़े जवान, अब तो समझ ही गए होंगे आप। ये हैं श्री एस डी बर्मन।

इस बात को दुनिया के हर पढ़े लिखे समझदार आदमी ने माना है कि इंसान बजाते खुद बुरा नहीं होता, हालात उसे बुरा बना देते हैं और वो गलत पेशे इख्तियार कर लेता है। मिसाल के तौर पर जिस देश में गंगा बहती है फिल्म का विलन राका मेरी नजर में बुरा आदमी नहीं, डकैती करता है मगर उसके सीने में एक धड़कता हुआ मोहब्बत भरा दिल भी है। राका अपने रकीब यानी फिल्म के हीरो को गोली मारना चाहता है मगर कम्मो सामने आ जाती है और वो बंदूक झुका लेता है, और जब उसी रकीब को बचाने के लिए भोजी सामने आकर गोली का निशाना बन जाती है तो राका की आंखों से आंसू भी टपकते हैं। कम्मो को पाने के लिए राका उसके बाप को मार डालता है लेकिन पुलिस पर गोली चलाते वक्त फिर जब कम्मो सामने आ जाती है तो वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है पर गोली नहीं चलाता। इसी तरह कितने ही राका मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर अपने आप को इंसानियत और शराफत के हवाले कर देते हैं। लीजिए अब जिस देश में गंगा बहती है फिल्म का ये गीत सुनिए।

कुछ लोग इस जहाने फानी में आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह चले जाते हैं। बस छोड़ जाते हैं अपनी यादों के खंडर जो एक फांस की तरह दिल में खड़कता रहता है। संगीतकार रोशन ने भी अपने यारों के साथ यही जुल्म किया है। जिंदगी में रोशन जितने तेज रफ्तार थे, खुदा के घर जाने में भी उन्होंने उतनी ही जल्दी की। राहे अदम में दर्द मैं इतना हूं तेज तर, पहुंचा सबा का हाथ ना मेरे गुबार तक। खैर, मौत से किसको रस्तगारी है। दोस्तों, मरहूम रोशन बड़े ही जिंदा दिल और पुर मजाक हस्ती थे। आइए मन्ना डे के गाए इस गीत से उनकी याद ताजा करें।

फौजी भाइयों, आप लोगों ने नौटंकी तो देखी ही होगी, और अगर किसी भाई ने नहीं देखी तो मैं रेडियो पर सुना सकता हूं, शायद आपको नौटंकी का मजा आ जाए। लेखक हैं मरहूम राजा मेहंदी अली खान। राजा साहब बजा के खुद एक नौटंकी थे। जब तक जिए हंसते रहे, हंसाते रहे। उन्हें शौक सिर्फ खाने का था। तरह तरह की चीजें पकवा कर खाते और बहुत खाते।

उनका कहना था, लोग जीने के लिए खाते हैं, मैं खाने के लिए जीता हूं। अपने फन के उस्ताद थे, जब तक जिंदा रहे जिंदगी की दुआएं लेते रहे, मरने के बाद जन्नत में जाने की दुआएं वसूल कर रहे। ये कुछ भगवान की मेहरबानी है कि हिंदुस्तानी भाइयों की नाक हर जगह ऊंची रहती है, जहां कोई ना पहुंच सके ये हजरत पहुंच जाते। आप खुद ही देखिए, एवरेस्ट की चोटी पर दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं ने पहुंचने की कोशिश की, मगर सबसे पहले वहां भारत का झंडा लहराया, और ये मुहिम सर की शर्पा तेन सिंह ने। इसी तरह नियाग्रा फॉल्स के करीब ही बीच में एक चट्टान, वहां तक किसी आदमी का जाना मुहाल था। बुलंदी से गिरकर पत्थरों से टकराता हुआ पानी इस कदर तेज रफ्तारी से गुजरता है कि देखने वालों के होश उड़ जाते। लेकिन एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म की शूटिंग के लिए हमें उस चट्टान तक जाना पड़ा, जहां मेरी और शम्मी की बहुत खतरनाक लड़ाई होती। इसी तरह नियाग्रा फॉल्स के उस चट्टान ने पहली बार जिन लोगों के कदम चूमे, वो हैं हम हिंदुस्तानी। लीजिए अब एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का ये गीत सुनिए।

फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम पेश कर रहे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता प्राण। ये रिकॉर्डिंग हमने अपने संग्रहालय से प्राप्त की है। ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: आप सुन रही हैं अभिनेता प्राण द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला।
1: फिल्मों में अगर आप किसी मंदिर को देखें और वहां भजन हो रहा हो तो ये फिल्म में किसी गीत के लिए सबसे आसान सिचुएशन है, लेकिन कहानी में किसी और जज्बाती सीन को पैदा करना और वहां पर उसी कदर जज्बाती गीत पेश करना बड़ा मुश्किल काम है। फिल्म आ का ये गीत जो मैं पेश कर रहा हूं इसी किस्म की सिचुएशन पर फिल्माया गया है, जो कि एक बेहतरीन सिचुएशन है और जिसका सेहरा हिंदुस्तान के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर श्री राज कपूर के सर है। जज्बात से भरपूर इस गीत को आप सुनेंगे तो आपके सामने फिल्म का वो मंजर आ जाएगा।

आम तौर पर लोग जिसे विलन समझते हैं उसमें दुनिया जहान की हर बुरी बात मौजूद होती है, लेकिन ऐसा नहीं। विलन का करदार अपनी जगह एक मजबूत और अटल करदार होता है। मिसाल के तौर पर शांताराम जी की फिल्म अमृत मंथन में विलन देवी का पुजारी और हर साल एक आदमी की बलि चढ़ाता है। एक बार उसे कोई आदमी नहीं मिला तो वो खुद अपना सर काटकर अपने हाथों से देवी के चरणों में रख देता है। इससे मालूम हुआ कि हम जिसे विलन समझते हैं उसकी साधना और विचार कितना अटल। और यही करदार रावण का है कि जब वो सीता को ले जाता है तो अपने महल में रख सकता था, लेकिन उसने अशोक बाटका में सीता को रखा। जरा सोचिए तो क्यों। अब कहर सिंह के बारे में सुनिए। कहर सिंह भक्त सिंह के वक्त में लुधियाना जेल में था। वो अपने वक्त का नामी गिरामी डाकू था। कहर सिंह का दिल रहम की आवाज से नावाकिफ था, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों की भूख हड़ताल से इतना मुतासिर हुआ कि जब फांसी पर चढ़ने को जा रहा था तो उसने भगत सिंह से हाथ मिलाया और उसकी जबान पर कुर्बानी थी। कहने का मतलब यह है फौजी भाइयों कि आदमी में लाख बुराइयों के साथ कुछ अच्छाइयां भी होती। आइए अब हम और आप शमा आजादी के परवाने राम प्रसाद बिस्मिल की रचना सुनें।

0: एक बार फिल्म मधुमती की शूटिंग के दौरान में मैंने बिमल रॉय जी से कहा, दादा एक तो मेरा नाम ही छोटा है, उस पर आप लोग ये जुल्म करते हैं कि उसे और भी छोटा कर देते हैं। दादा बोले, वो कैसे? मैंने मधुमती के पोस्टर को पढ़कर कुछ इस तरह सुनाया, बिमल रॉय प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मधुमती स्टेरिंग द लीप कुमार वैजंती माला प्रण जॉनी वाकर जयंत। ये सुनते ही उन्हें बड़ी हंसी आई। मरहूम बिमल रॉय जी बहुत ही शर्मीले और कम बोलने वाले इंसान थे। उनकी अचानक मौत से फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा।
1: फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम पेश कर रहे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता प्राण। ये रिकॉर्डिंग हमने अपने संग्रहालय से प्राप्त की है। ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

खुदा भला करे अखबार वालों का, अक्सर ऐसी खबरें छाप देते हैं जो एक लतीफा बनकर रह जाती। संगीतकार अनंत जी के यहां लड़का पैदा हुआ तो अखबार वालों ने लिखा, यह खबर बड़ी ही खुशी के साथ छापी जाती है कि मौसीकार कल्याण जी अनंत जी के यहां लड़का पैदा हुआ। आया ख्याल शरीफ में। अब जो गीत आप सुनेंगे उसके जन्मदाता ये दोनों हैं, और गीत मनोज की फिल्म उपकार का है। मनोज के बारे में मोटी सी मिसाल यह है कि जिस तरह वेस्ट इंडीज का क्रिकेट खिलाड़ी गैरी सोबर्स अच्छा कैप्टन, फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर, उम्दा बैट्समैन और बेहतरीन फील्डर है, उसी तरह मनोज एक अच्छा प्रोड्यूसर, समझदार डायरेक्टर, उम्दा कहानीकार, बेहतरीन डायलॉग राइटर और एक अच्छा कलाकार है। लेकिन इन सब खूबियों के अलावा मनोज कुमार एक हिंदुस्तानी है और सिर्फ हिंदुस्तानी है। फिल्म उपकार में मलंग के डायलॉग में एक जगह मनोज ने लिखा है, पगले तू आज तक ये नहीं समझा कि राम ने हर युग में जन्म लिया है लेकिन लक्ष्मण दोबारा पैदा नहीं हुआ, समझे। फौजी भाइयों, सिर्फ ये एक डायलॉग मनोज की तमाम खूबियों को अपने अंदर समेटे हुए है। दोस्तों, वक्त अब साथ नहीं दे रहा है, चलते चलाते वो गीत सुनिए जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे।

0: मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद है कि मेरे पेश किए हुए नकमे आपको पसंद आए होंगे। जय हिंद।
1: ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम, जिसे पेश किया था फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता प्राण ने। ये रिकॉर्डिंग हमने अपने संग्रहालय से प्राप्त की थी।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। आप हैं विविध भारती के संग।
1: जिज्ञासा
0: जिज्ञासा जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के जिज्ञासा कार्यक्रम पर भी चढ़ा है फुटबॉल के वर्ल्ड कप का बुखार। लियोनेल मेसी के रिकॉर्ड के बारे में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। अर्जेंटीना बनाम इजिप्ट का मुकाबला, 83वां मिनट, पावर प्ले किक, और लियोनेल मेसी ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया है। इस मैच में अर्जेंटीना 3-2 से जीत गई, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इजिप्ट ने अर्जेंटीना को पसीने ला दिए। ये जो रोमांचक मुकाबला हुआ, इसे जीतने के बाद लियोनेल मेसी भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू थे। और मुकाबले के बाद लियोनेल मेसी ने यह कहा कि यह जीत बहुत खास है। 19वें मिनट में मेसी से एक पेनल्टी मिस हुई थी। 78वें मिनट तक अर्जेंटीना 0-2 से पिछड़ी हुई थी, और यूं लग रहा था कि जैसे अर्जेंटीना कुछ दूसरी बड़ी टीमों की तरह फीफा वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली है। लेकिन आखिरी 15 मिनट में पूरा गेम पलट गया। वर्ल्ड चैंपियंस की तरह खेली अर्जेंटीना। 83वें मिनट में मेसी ने गोल करके एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया और इतिहास दर्ज कर दिया। मेसी एक वर्ल्ड कप में 8 गोल करने वाले अर्जेंटीना के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने गुइलेर्मो स्टेबिले की बराबरी कर ली है। वर्ल्ड कप के पहले संस्करण यानी 1930 में स्टेबिले ने 8 गोल किए थे, और अब मेसी ने उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जो रोमांच है ना, वो कम ही नहीं हो रहा। हर हफ्ते कोई नई चीज आ जाती है। कभी फैंस का दिल टूट जाता है तो कभी फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं होता। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बगैर कोई खिताब जीते ही आखिरी वर्ल्ड कप खेलकर बाहर हो चुके हैं। ये उनके करियर

का आखिरी वर्ल्ड कप था। इसके अलावा ब्राजील के नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया है। तो आइए आज उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं जो बहुत कल्ट खिलाड़ी हैं और बगैर वर्ल्ड कप जीते ही रिटायर हो गए या फिर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, दूर हो गए। पहले नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के खिलाड़ी। 41 साल के रोनाल्डो ने आखिरी वर्ल्ड कप खेला है ये 2026 वाला। 2006 से 2026 तक 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, लेकिन एक भी बार वो अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना पाए हैं। 2026 में पुर्तगाल राउंड ऑफ 16 में स्पेन के खिलाफ 0-1 से हारकर बाहर हो गई। एक बड़ा उलटफेर था इस बार के फीफा वर्ल्ड कप का। नेमार जूनियर, ब्राजील के खिलाड़ी। 34 वर्षीय नेमार जूनियर 2026 के फीफा वर्ल्ड कप के बीच में ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इंटरनेशनल फुटबॉल को टाटा बाय बाय कह रहे हैं। उन्होंने अपने करियर में 4 वर्ल्ड कप खेले हैं, लेकिन एक बार भी वो ब्राजील को वर्ल्ड कप जीता नहीं पाए, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिता नहीं पाए। मौजूदा वर्ल्ड कप में ब्राजील राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे से 1-2 के मुकाबले हार गई और एलिमिनेट हो गई। जोहान क्रूफ नीदरलैंड्स के खिलाड़ी हैं और दिग्गज फुटबॉलर हैं। इसी लिस्ट में वो इसलिए शामिल हैं क्योंकि फुटबॉल के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक भले माने जाते हैं। उनकी कप्तानी में नीदरलैंड्स ने 1974 में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन वेस्ट जर्मनी ने उन्हें 1-2 से हरा दिया था। और करियर में कई खिताब उन्होंने जीते, लेकिन अपनी टीम को वो वर्ल्ड कप नहीं जीता पाए। पुर्तगाल के कल्ट खिलाड़ी यूसेबियो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ग्लोबल स्टार बनने से पहले पुर्तगाल के हीरो थे यूसेबियो। उन्होंने अपने करियर में 700 से ज्यादा गोल दागे। 1966 के फीफा वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया। पुर्तगाल थर्ड नंबर पर रहा। वो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे, लेकिन उनके खेलने के दौरान पुर्तगाल वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाया। फ्रैंक पुस्कास, हंगरी के खिलाड़ी, दिग्गज फुटबॉलर, अपने करियर में 600 से ज्यादा गोल किए। हंगरी के कैप्टन थे। 1954 में हंगरी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, लेकिन टीम को वेस्ट जर्मनी के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। बेस्ट गोल का अवार्ड उन्हें मिला, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना पाए। ये थे वो 5 खिलाड़ी जिन्होंने अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने की पूरी कोशिश की। करियर खत्म हो गया पर मंजिल नहीं मिली। स्पेन की गोलकीपर उनाई साइमन ने वर्ल्ड कप फुटबॉल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक गोल न खाने का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने बीते गुरुवार को ऑस्ट्रिया के खिलाफ 3-0 की जीत में मौजूदा वर्ल्ड कप में लगातार 4थी बार क्लीन शीट हासिल की। हम आपको बता दें, क्लीन शीट का मतलब होता है वो गोली जिसने एक भी गोल नहीं खाया है। तो उनाई साइमन क्लीन शीट हासिल कर चुके हैं। साइमन के इस रिकॉर्ड की शुरुआत लास्ट वर्ल्ड कप से हुई थी और उन्होंने अभी तक इस वर्ल्ड कप फुटबॉल के दिग्गज मुकाबलों में भी 519 मिनट तक कोई गोल होने नहीं दिया है। इस तरह उन्होंने इटली के मशहूर गोलकीपर वॉल्टर जेंगा का 1990 में बनाया रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने तब लगातार 517 मिनट तक कोई गोल नहीं खाया था। 5 मैचों में लगातार क्लीन शीट उन्हें मिली थी। साइमन को मौजूदा वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इस 29 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने शानदार खेल से वर्ल्ड कप की रिकॉर्ड बुक में अपना नाम तो दर्ज करा ही लिया है। स्पेन ने इस वर्ल्ड कप में अभी तक एक भी गोल नहीं खाया है और उसके गोलकीपर को केवल 4 बचाव करने पड़े हैं, ऑस्ट्रिया के खिलाफ एक भी नहीं, जिसने अपने 5 शॉट लक्ष्य पर नहीं मारे। स्पेन के कोच लुई डेला फुएंते ने कहा कि मुझे अपने इस गोली पर गर्व है, मुझे लगता है कि वो मेरी फैमिली का हिस्सा है और उसकी इस उपलब्धि के लिए मैं बहुत खुश हूं। पिछले लगभग 5 साल से साइमन स्पेन के लिए गोली के तौर पर पहली पसंद रहे हैं। उन्होंने डेविड राया और जॉन गार्सिया से प्रतिस्पर्धा के बावजूद अपनी जगह को कायम रखा है। साइमन और स्पेन ने 2022 में कतर में खेले गए विश्व कप में 4 मैचों में सिर्फ 3 गोल खाए, फिर भी टूर्नामेंट से उन्हें जल्दी बाहर होना पड़ा। साइमन का गोल न खाने का यह सिलसिला स्पेन की जापान से 2-1 की हार के दौरान शुरू हुआ था और फिर मोरक्को के साथ गोल रहित ड्रॉ तक जारी रहा। मोरक्को ने तब पेनल्टी शूटआउट में साइमन के खिलाफ अपने 4 पेनल्टी में से 3 को गोल में बदलकर स्पेन को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। किलियन एम्बापे और उस्मान डेम्बले के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से फ्रांस ने बोस्टन में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को

जीरो से हरा दिया है और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एम्बापे ने पहले हाफ में पेनल्टी मिस होने की भरपाई 60वें मिनट में की और बॉक्स के किनारे से एक शानदार गोल किया। डेम्बले ने 66वें मिनट में बॉक्स के बाहर से गोल करके फ्रांस की बढ़त को डबल कर दिया। मोरक्को के लिए गोलकीपर यासीन बुनू ने इस मुकाबले में कई शानदार बचाव किए और एम्बापे ने जो गोल किया तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। एम्बापे के गोल के बारे में आपको बताते हैं, किलियन एम्बापे ने इस मुकाबले में अपने वर्ल्ड कप करियर का 20वां गोल किया। वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में अब वो केवल मेसी से पीछे हैं। किलियन एम्बापे ने अपने 20वें वर्ल्ड कप मुकाबले में 20वां गोल किया है। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 20 वर्ल्ड कप मैचों के आंकड़े और 20 गोल के आंकड़े तक पहुंचने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वो बन गए हैं। एम्बापे ने फ्रांस के लिए 100 से ज्यादा गोल किए हैं, 64 गोल और 37 असिस्ट। वो फ्रांस के ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं। किलियन एम्बापे अब फीफा वर्ल्ड कप के 8 मैचों में विनिंग गोल कर चुके हैं और इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के द्वारा किए गए ये सबसे ज्यादा गोल हैं। तो ये थी फीफा वर्ल्ड कप की बातें जो लगातार महीने भर से हम जिज्ञासा कार्यक्रम में कर ही रहे हैं। ऐसा है फीफा का फीवर। जब भी स्मार्टफोन एडिक्शन या स्क्रीन टाइम की बात होती है तो ज्यादातर मौकों पर यह चर्चा बच्चों को लेकर होती है, लेकिन अब एक स्टडी में ये बताया गया है कि बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स की आदतें भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। जो पेरेंट्स पूरे दिन फोन पर लगे रहते हैं उनका अपने बच्चों के साथ इमोशनल बॉन्ड कमजोर हो जाता है, इससे बच्चों के विकास और दिमाग पर असर पड़ता है। स्टडी में 12 से 17 साल के टीनेजर्स शामिल थे। उनसे जब बातचीत की गई तो ज्यादातर ने कहा कि जब उनके पेरेंट्स फोन में घुसे होते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी नाम का एक जर्नल है जिसमें ये स्टडी पब्लिश हुई है और रिसर्चर ने पाया है कि जब पेरेंट्स या केयर गिवर बहुत ज्यादा समय तक मोबाइल फोन यूज करते हैं तो इससे इनसिक्योर अटैचमेंट हो सकता है। इनसिक्योर अटैचमेंट साइकोलॉजी का एक ऐसा पैटर्न होता है जो बच्चों को बेचैन कर देता है और वो आगे चलकर जीवन में रिश्ते बनाते समय बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते और अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये चीजें जवानी तक बच्चे के दिमाग पर गहरा असर डाल सकती हैं। क्या रिश्तों को कमजोर कर रहे हैं डिजिटल डिवाइस? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ये स्टडी ऐसे समय में आई है जब टेक्नोफेरेंस पर रिसर्च लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब आप पूछेंगे कि ये टेक्नोफेरेंस क्या है। टेक्नोफेरेंस को आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है डिजिटल डिवाइस असल में रिश्तों को कमजोर कर रहे हैं। ये भी अजीब बात है कि अब तक बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर बहस होती चली जा रही है, लेकिन बच्चों के मम्मी पापा के स्क्रीन टाइम को लेकर हुई इस स्टडी ने पूरे इतिहास को, पूरी कहानी को, पूरे फोकस को बदल कर रख दिया है। रिसर्चर्स का कहना है कि डिजिटल डिवाइस को लेकर पेरेंट्स फिजिकली प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनका ध्यान और उनका दिमाग बच्चों पर नहीं, कहीं और होता है। 2024 में अमेरिका में हुए एक सर्वे में भी इस बात पर मुहर लगी थी। सर्वे में शामिल ज्यादातर बच्चों ने यह कहा था कि उनसे बातचीत के दौरान पेरेंट्स का ध्यान फोन में ज्यादा होता है, जबकि कुछ ही पेरेंट्स थे जिन्होंने अपनी इस गलती को स्वीकार किया था। तो इस स्टडी को लेकर निश्चित रूप से बहुत ज्यादा चिंता की बात है, सोचने की बात है। जिज्ञासा कार्यक्रम में चूंकि अब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो एक और जरूरी बात सामने आई है। AI इस समय सबसे बड़ा खतरा भी बन गया है, सबसे बड़ी सुविधा भी बन गई है। हम कभी इसे कौतूहल की दृष्टि से देख रहे हैं, कभी हम इसे भय की दृष्टि से देख रहे हैं, कभी हम AI से खुश हो रहे हैं, कभी हम AI से दुखी हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि AI अकेले लोगों के लिए एक सहारा बन गई है। जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए AI दोस्त और पार्टनर के तौर पर काम कर रहा है। येल यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट पॉल ब्लूम ने AI असिस्टेंट को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अकेलेपन से जूझ रहे लोगों के लिए AI एक लाइफलाइन बन सकती है। ये AI से जुड़ा सबसे बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं कि अकेलेपन से जूझ रहे लोगों के लिए AI एक लाइफलाइन बन सकती है। उनका मानना है कि AI कंपेनियन दुनिया भर के लाखों लोगों का अकेलापन और उस अकेलेपन का दर्द दूर कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस पर एक चेतावनी भी दी है।
उन्होंने ये कहा है कि इस पर जरूरत

से ज्यादा निर्भरता इंसानी रिश्ते को खतरे में डाल सकती है। और फिर एआई से ज्यादा दोस्ती रखने वाले लोगों के असली दुनिया में कनेक्शन बनाना मुश्किल हो सकता है। ब्लूम ने कहा कि एआई चैटबॉट ऐसे लोगों के लिए बहुत काम की चीज हो सकती है जिनके पास बातें करने के लिए कोई नहीं, यानी जो घर की चार दीवारी के बीच अकेले रह रहे हैं, केयर होम्स में रह रहे बुजुर्ग हों, या ऐसे लोग जिनका अपने परिवार और दोस्तों के साथ संपर्क टूट गया है, या अपनी दम पर रहने वाले लोग, उन सब के लिए एआई मददगार साबित हो सकती है। ये अकेलेपन को कम कर सके तो ये एक शानदार और एक बड़ी बीमारी का इलाज भी होगा। एक्सपर्ट ने कहा कि चैटबॉट घर में यूज होने वाले अप्लायंसेस की तरह है। ये सिर्फ एक मशीन है जो अपना काम करती है। भले ही एआई से बातचीत एकदम असली मनुष्य से बातचीत की तरह हो, लेकिन ये बातचीत करने वाला चैटबॉट उस व्यक्ति की केयर नहीं कर सकता जिससे वो बात कर रहा है, यानी ये रिश्ता सिर्फ बातचीत तक ही सीमित रह जाता है। चैटबॉट की लिमिटेशन के बावजूद ब्लूम का मानना है कि बहुत सारे अडल्ट्स मुश्किल समय में एआई चैटबॉट पर ही आते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, उनसे डिसीजन करवाते हैं। एआई कॉन्स्पिरेसीज थ्योरी या एक्सट्रीम व्यूज को प्रोत्साहित नहीं करती, बल्कि उसके जवाब शांत, सामान्य और तर्कपूर्ण हो सकते हैं। पर ब्लूम ने एक बात के लिए चेतावनी दी है, एआई चैटबॉट पर निर्भरता खतरनाक हो सकती है। और ब्लूम ये कहते हैं कि एआई कंपेनियन के साथ के अपने खतरे हैं। लोग बातचीत करते समय टोक देते हैं, लेकिन चैटबॉट ऐसा नहीं करते। ना ही वो बातचीत के बीच में बोलते हैं, ना यूजर्स को ये समझाते हैं कि उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी है। इन पर ज्यादा समय बिताना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसकी आदत लग जाए तो लोग असली दुनिया के लोगों से बातचीत करने में बहुत परेशानी का सामना करें।

0: ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। और हाँ, इस कार्यक्रम के लिए हम AI की कोई सहायता नहीं लेते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस खान की ओर से। नमस्कार।
1: जिज्ञासा।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी के तहत मुंशी प्रेमचंद की कहानी विश्वास का दूसरा भाग। वाचक स्वर अमरकांत दुबे का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की।
2: अभी तक आपने सुना मिस राधिका जोशी, बंबई के सभ्य समाज की एक बहुत ही रसूखदार और प्रभावशाली महिला, जिसके बारे में सारा नगर ही नहीं सारे प्रांत का बच्चा बच्चा जानता था कि बंबई के गवर्नर मिस्टर जोहरी मिस जोशी के बिना दामों के गुलाम हैं। मिस जोशी की आंखों का इशारा उनके लिए नादिरशाही हुक्म है। बंबई की व्यवस्थापिका सभा ने अनाज पर कर लगा दिया था। इसके विरोध में जनता ने एक विराट सभा का आयोजन किया था। सभा के सभापति आप्टे, जो कि 30-35 वर्ष का दुबला पतला दुर्बल निस्तेज सा प्राणी था, उसमें न जाने क्या जादू था कि समस्त जनता उसकी पूजा करती थी। आप्टे कर लगाए जाने का तो विरोधी था ही, वो गवर्नर मिस्टर जोहरी का भी विरोधी था। प्रशासन द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ सभा में बोलते बोलते आप्टे ने मिस्टर जोहरी और मिस जोशी के विरुद्ध भी बहुत ही कड़ी टिप्पणी कर दी। मिस्टर जोहरी ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिए जाने का हुक्म जारी कर दिया, लेकिन मिस जोशी ने मिस्टर जोहरी को आश्वासन दिया कि आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, आप्टे को मैं संभाल लूंगी। अब आगे सुनिए।

प्रातःकाल मिस जोशी अपने भवन से निकली, लेकिन उसके वस्त्र बहुत साधारण थे और आभूषण के नाम पर शरीर पर एक धागा भी न था। अलंकार विहीन होकर उसकी छवि स्वच्छ निर्मल जल की भांति और भी निखर गई। उसने सड़क पर आकर एक तांगा लिया और चल पड़ी। आपटे का मकान गरीबों के एक दूर के मोहल्ले में था। तांगे वाला मकान का पता जानता था, कोई दिक्कत ना हुई। मिस जोशी जब मकान के द्वार पर पहुंची तो न जाने क्यों उनका दिल धड़क रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से कुंडी खटखटाई। एक अधेड़ औरत ने निकलकर द्वार खोल दिया। मिस जोशी उस घर की सादगी देखकर दंग रह गईं। एक किनारे चारपाई पड़ी हुई थी, एक टूटी अलमारी में कुछ किताबें चुनी हुई थीं, फर्श पर लिखने का डेस्क था और एक रस्सी की अलगनी पर कुछ कपड़े लटक रहे थे। कमरे के दूसरे हिस्से में एक लोहे का चूल्हा था और खाने के बर्तन पड़े हुए थे। एक लंबा तड़ंगा आदमी जो उसी अधेड़ औरत का पति था बैठा एक टूटे हुए ताले की मरम्मत कर रहा था और एक 5-6 वर्ष का तेजस्वी बालक आपटे की पीठ पर चढ़ने के लिए उसके गले में हाथ डाल रहा था। आपटे इसी लोहार के साथ उसी के घर में रहते थे। समाचार पत्रों में लेख लिखकर जो कुछ मिलता उसे दे देते और इस भांति गृह प्रबंध की चिंताओं से छुट्टी पाकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। मिस जोशी को देखकर आपटे जरा चौंके, पर खड़े होकर उनका स्वागत किया और सोचने लगे कि कहां बिठाऊं। अपनी दरिद्रता पर आज उन्हें जितनी लज्जा आई उतनी और कभी ना आई थी। मिस जोशी उनका असमंजस देखकर चारपाई पर बैठ गईं और जरा रुखाई से बोली, मैं बिना बुलाए आपके यहां आने के लिए क्षमा मांगती हूं, किंतु काम ऐसा जरूरी था कि मेरे आए बिना पूरा ना होता। क्या मैं एक मिनट के लिए आपसे एकांत में मिल सकती हूं? आपटे ने जगन्नाथ की ओर देखकर कमरे से बाहर चले जाने का इशारा किया। उसकी स्त्री भी बाहर चली गई, केवल बालक रह गया। वो मिस जोशी की ओर बार बार उत्सुक आंखों से देखता था, मानो पूछ रहा हो कि तुम आपटे दादा की कौन हो। मिस जोशी ने चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठते हुए कहा, आप कुछ अनुमान कर सकते हैं कि मैं इस वक्त यहां क्यों आई हूं? आपटे ने झेपते हुए कहा, आपकी कृपा के सिवा और क्या कारण हो सकता है? मिस जोशी, नहीं, संसार इतना उदार नहीं हुआ है कि आप जिसे गालियां दें वो आपको धन्यवाद दे। आपको याद है कि कल आपने अपने व्याख्यान में मुझ पर क्या क्या आक्षेप किए थे? मैं आपसे जोर देकर कहती हूं कि वे आक्षेप करके आपने मुझ पर घोर अत्याचार किया है। आप जैसे सहृदय शीलवान विद्वान आदमी से मुझे ऐसी आशा न थी। मैं अबला हूं, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। क्या आपको उचित था कि एक अबला पर मिथ्यारोपण करें? अगर मैं पुरुष होती तो आपसे ड्यूल खेलने का आग्रह करती। अबला हूं इसलिए आपकी सज्जनता को स्पर्श करना ही मेरे हाथ में है। आपने मुझ पर जो लांछन लगाए हैं वे सर्वथा निर्मूल हैं। आपटे ने दृढ़ता से कहा, अनुमान तो बाहरी प्रमाणों से किया जाता है। मिस जोशी ने कहा, बाहरी प्रमाणों से आप किसी के अंतस्थल की बात नहीं जान सकते। आपटे, जिसका भीतर बाहर एक न हो उसे देखकर भ्रम में पड़ जाना स्वाभाविक है। मिस जोशी ने उत्तर दिया, हां तो वो आपका भ्रम है। मैं चाहती हूं कि आप उस कलंक को मिटा दें जो आपने मुझ पर लगाया है। आप इसके लिए प्रायश्चित करेंगे? अगर ना करूं तो मुझसे बड़ा दुरात्मा संसार में ना होगा। मिस जोशी ने कहा, आप मुझ पर विश्वास करते हैं? आपटे ने कहा, मैंने आज तक किसी रमणी पर अविश्वास नहीं किया। मिस जोशी, क्या आपको यह संदेह है कि मैं आपके साथ कौशल कर रही हूं? आपटे ने मिस जोशी की ओर अपने सदैव सजल सरल नेत्रों से देखकर कहा, बाई जी, मैं गंवार और अशिष्ट प्राणी हूं, लेकिन नारी जाति के लिए मेरे हृदय में जो आदर है वो श्रद्धा से कम नहीं जो मुझे देवताओं पर है।

मैंने अपनी माता का मुख नहीं देखा, यह भी नहीं जानता कि मेरा पिता कौन था। किंतु जिस देवी के दया वृक्ष की छाया में मेरा पालन पोषण हुआ, उनकी प्रेम मूर्ति आज तक मेरी आंखों के सामने है और नारी के प्रति मेरी भक्ति को सजीव रखे हुए है। मैं उन शब्दों को मुंह से निकालने के लिए अत्यंत दुखी और लज्जित हूं जो आवेश में निकल गए, और मैं आज ही समाचार पत्रों में खेद प्रकट करके आपसे क्षमा की प्रार्थना करूंगा। मिस जोशी को अब तक अधिकांश स्वार्थी आदमियों से ही साबिका पड़ा था, जिनके चिकने चुपड़े शब्दों में मतलब छिपा हुआ था। आप टेके सरल विश्वास पर उसका चित्त आनंद से गदगद हो गया। शायद वो गंगा में खड़ी होकर अपने अन्य मित्रों से यह कहती तो उसके फैशनेबल मिलने वालों में से किसी को उस पर विश्वास ना आता। सब मुंह के सामने तो हां हां करते, पर बाहर निकलते ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते। उन कपटी मित्रों के सम्मुख ये आदमी था जिसके शब्द शब्द में सच्चाई झलक रही थी और जो उसके अंतःस्थल से निकलते हुए मालूम होते थे। आपटे उसे चुप देखकर किसी और ही चिंता में पड़े हुए थे। उन्हें भय हो रहा था कि अब मैं चाहे कितनी भी क्षमा मांगू, मिस जोशी के सामने कितनी भी सफाइयां पेश करूं, मेरे आक्षेपों का असर कभी न मिटेगा। इस भाव ने अज्ञात रूप से उन्हें अपने विषय की गुप्त बातें कहने की प्रेरणा की, जो उन्हें उसकी दृष्टि में लघु बना दे, जिससे वो भी उन्हें हेय समझने लगे, उनको संतुष्ट हो जाए कि यह भी कलुषित आत्मा है। बोले, मैं जन्म से अभागा हूं देवी, माता पिता का तो मुंह देखना ही नसीब ना हुआ। जिस दयाशील महिला ने मुझे आश्रय दिया था, वो भी मुझे 13 वर्ष की अवस्था में अनाथ छोड़कर परलोक सिधार गई। उस समय मेरे सिर पर जो कुछ भी थी, उसे याद करके इतनी लज्जा आती है कि किसी को मुंह न दिखाऊं। मैंने धोबी का काम किया, मोची का काम किया, घोड़े की साइसी की, एक होटल में बर्तन मांजता रहा, यहां तक कि कितनी ही बार क्षुधा से व्याकुल होकर भीख भी मांगी। मजदूरी करने को बुरा नहीं समझता, आज भी मजदूरी ही करता हूं। भीख मांगनी भी किसी किसी दशा में क्षम्य है, लेकिन मैंने उस अवस्था में ऐसे ऐसे कर्म किए जिन्हें कहते लज्जा आती है। चोरी की, विश्वासघात किया, यहां तक कि चोरी के अपराध में कैद की सजा भी पाई। मिस जोशी ने सजल नयन होकर कहा, आप ये सब बातें मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैं इनका उल्लेख करके आपको कितना बदनाम कर सकती हूं, इसका आपको भय नहीं? आपटे ने हंसकर कहा, नहीं, आपसे मुझे भय नहीं है। मिस जोशी ने कहा, अगर मैं आपसे बदला लेना चाहूं तो? आपटे बोले, जब मैं अपने अपराध पर लज्जित होकर आपसे क्षमा मांग रहा हूं, तो मेरा अपराध रहा ही कहां जिसका आप मुझसे बदला लेंगे? इससे तो मुझे भय होता है कि आपने मुझे क्षमा किया ही नहीं। लेकिन यदि मैंने आपसे क्षमा न मांगी होती तो आप मुझसे बदला ले सकती थी। बदला लेने वाले की आंखें यूं सजल नहीं हो जाया करती। मैं आपको कपट करने के अयोग्य समझता हूं। आप यदि कपट करना चाहती तो यहां कभी ना आती। मैं आपका भेद लेने के लिए ही आई हूं, तो शौक से लीजिए। मैं बतला चुका हूं कि मैंने चोरी के अपराध में कैद की सजा पाई थी। नासिक के जेल में रखा गया था मुझे। मेरा शरीर दुर्बल था, जेल की कड़ी मेहनत ना हो सकती थी, और अधिकारी लोग मुझे काम चोर समझकर बेतों से मारते थे। आखिर एक दिन मैं रात को जेल से भाग खड़ा हुआ। ओह, आप तो छिपे रुस्तम निकले। ऐसा भागा कि किसी को खबर ना हुई। आज तक मेरे नाम वारंट जारी है और 500 रुपए का इनाम भी। तब तो मैं आपको जरूर पकड़ा दूंगी। तो फिर मैं आपको अपना असल नाम भी बतला देता हूं। मेरा नाम दामोदर मोदी है। यह नाम तो पुलिस से बचने के लिए रख छोड़ा है। बालक अब तक तो चुपचाप बैठा हुआ था। मिस जोशी के मुंह से पकड़ाने की बात सुनकर वो सजग हो गया। उन्हें डांट कर बोला, हमारे दादा को कौन पकड़ेगा? मिस जोशी ने कहा, सिपाही और कौन? बालक फिर बोला,

0: हम सिपाही को मारेंगे। ये कहकर वो कोने से अपने खेलने का डंडा उठा लाया और आपटे के पास वीरोचित भाव से खड़ा हो गया, मानो सिपाहियों से उनकी रक्षा कर रहा हो। मिस जोशी ने कहा, आपका रक्षक तो बड़ा बहादुर मालूम होता है। आपटे बोले, इसकी भी एक कथा है। साल भर हो गया ये लड़का खो गया था, मुझे रास्ते में मिला, मैं पूछता पूछता इसे यहां लाया। उसी दिन से इन लोगों से मेरा प्रेम इतना हो गया कि मैं इसके साथ रहने लगा। मिस जोशी बोली, आप अनुमान कर सकते हैं क्या आपका वृत्तांत सुनकर मैं आपको क्या समझ रही हूं? आपटे ने बोला, वही जो मैं वास्तव में हूं, कमीना, धूर्त। मिस जोशी बोली, नहीं, आप मुझ पर फिर अन्याय कर रहे हैं। पहला अन्याय तो क्षमा कर सकती हूं, यह अन्याय क्षमा नहीं कर सकती। इतनी प्रतिकूल दशाओं में पड़कर भी जिसका हृदय इतना पवित्र, इतना निष्कपट, इतना सदैव हो, वो आदमी नहीं देवता है। भगवान, आपने मुझ पर जो आक्षेप किए वो सत्य हैं। मैं आपके अनुमान से कहीं ज्यादा भ्रष्ट हूं। मैं इस योग्य भी नहीं कि आपकी ओर ताक सकूं। आपने अपने हृदय की विशालता दिखाकर मेरा असली स्वरूप मेरे सामने प्रकट कर दिया। मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। ये कहते कहते मिस जोशी उनके पैरों पर गिर पड़ी। आपटे ने उसे उठा लिया और बोले, मिस जोशी, ईश्वर के लिए मुझे लज्जित न कीजिए।
1: श्रृंखला सुनो कहानी के तहत मुंशी प्रेमचंद की कहानी विश्वास का दूसरा भाग अभी आपने सुना। वाचक स्वर अमरकांत दुबे का। इस कार्यक्रम को तैयार करने में प्रस्तुति सहयोग रहा आकांक्षा सिंह का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की।
2: सुनो कहानी।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। ये आवाजें हैं पूर्णिमा और उदित नारायण की। फिल्म का नाम है हीरो नंबर 1।

और अब उदित नारायण का साथ दे रही हैं अलका याग्निक, फिल्म का नाम धड़कन, गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

ये स्वर थी उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की। फिल्म का नाम था धड़कन। गीतकार थे समीर और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अब सुनिए अलका याग्निक के साथ सोनू निगम को, फिल्म का नाम है रिफ्यूजी। गीत को जावेद अख्तर ने लिखा है और धुन अनु मलिक की है।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब यह प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कुमार सानू और अलका याग्निक, फिल्म का नाम है आरजू।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी है, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए

0: तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8-4-3-6-2-8-1-7-9-3-0-8-4-9-1-5-5-2-3-7-1-4 और 8-4-3-3-4-5-2-0-4-1-4 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300

0: करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
1: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, इस क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से

0: दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर को सुनिए। फिल्म का नाम है सखी रॉबिन, गीतकार योगेश और संगीतकार रॉबिन बनर्जी।

ये आवाजें थी मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर की, फिल्म का नाम था सखी रॉबिन। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोंसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ, गीतकार प्रेम धवन, संगीतकार रोशन और फिल्म का नाम वल्लाह क्या बात है।

फिल्म का नाम था वल्लाह क्या बात है। युगल स्वर आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की थी। आपके लिए कार्यक्रम की अगली पेशकश नौशाद साहब का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है सन ऑफ इंडिया।

कार्यक्रम में आप सुनिए गुलशन बावरा का लिखा गीत, इसे संगीत में ढाला है दत्ताराम ने। युगल स्वर सुमन कल्याणपुर और मन्ना डे की, फिल्म का नाम नीली आंखें।

0: नशीली हवा।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में, फिल्म का नाम है प्रेम पत्र, गीत रचना गुलजार साहब की और धुन सलील चौधरी की है।
4: सावन की रातों में ऐसा भी होता है, राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है जिंदगी और हम। इस गीत को पंडित शिव कुमार ने लिखा है और तर्ज रोशन की है।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कमर जलालाबादी का लिखा गीत। इसे संगीत में ढाला है इकबाल कुरैशी ने। युगल स्वर आशा भोसले और मोहम्मद रफी के। फिल्म का नाम है ये दिल किसको दूं।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सुनहरी नागिन फिल्म का गाना, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की, फारूक केसर के बोल और कल्याण जी आनंद जी की धुन।

0: इस दो गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: का।
1: जिन्होंने अपनी अदाओं से लोगों को मोहित किया, जिन्होंने अपनी मेहनत से हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की और महज 13 बरस की उम्र में वे मुंबई

0: चलिए दोस्तों, अब आपको बता ही देते हैं, आज की फनकार हैं गायिका उमा देवी यानी टुनटुन।
1: हमारे देश के, मेरे इधर के उधर के, आमने के सामने के, थोड़े भाइयों थोड़े मेरे प्यारों, मेरा आप सबको बहुत बहुत मोटा मोटा आशीर्वाद, प्यार और फिर छोटा सा मुन्ना सा नमस्कार।
0: टुनटुन नाम से उन्होंने अपने अभिनय की पारी जीती। 1947 में उमा देवी को अपना पहला एकल गीत गाने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें 200 रुपए की राशि भी मिली थी और ये राशि उन दिनों बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी।
1: सुरैया जी, फिल्म स्टार सुरैया, हाय हाय हाय हाय, उन्हीं के साथ मेरा पहला मौका गाना गाने का दर्द में मिला। आप लोग काफी सुनते हैं ये गाना, उसमें मैं भी हूँ उनके साथ, उनसे लिपटी खड़ी होके गाना गा रही थी, बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से। इसी में हम दोनों ने अपनी अपनी गाने की अदायगी की है।

0: मेरी नजर।
1: दोस्तों, उमा देवी को नौशाद साहब का संगीत बहुत पसंद था। जब नौशाद साहब ने उमा देवी का ऑडिशन यानी स्वर परीक्षा ली तो वे भी उमा देवी के गायन से काफी प्रभावित हुए और जब दर्द में उन्होंने पहला गाना गाया तो पहला ही गीत सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद तो उनके गायन का सिलसिला तेजी से चल पड़ा।

गाना। जब ये यूपी में पिक्चर लगी, इसका नाम है अनोखी अदा। तो साहब सिनेमा में इतने पैसे फेंकते थे इसके रिदम और गाने पर कि मैं बयान नहीं कर सकती।

0: तो चूंकि संगीत की दुनिया बदल रही थी और नई प्रतिभाएं अपना असर दिखा रही थी, इसलिए उमा देवी के गाने लगातार कम होते चले गए। उन्होंने अपने दोस्त दिलीप कुमार साहब से कहा कि वो अपनी किसी फिल्म में अभिनय का मौका दें। इस तरह 1950 की फिल्म बाबुल में पहली बार नजर आई दिलीप कुमार के साथ।
1: देखो, पहले मैं गाने गाती थी और अच्छी बहुत मशहूर हीरोइनों के गाने दिए मैंने, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं भी हीरोइन बन जाऊं। अब मुश्किल ये हुई कि हीरोइन सिंगल होती और मैं डबल। मैंने दिलीप कुमार जी के संग रोल लिया और वो पिक्चर थी बाबुल। बाबुल में मैं उनकी प्रेमिका थी, लेकिन मुश्किल ये हुई कि दो तीन हाथ मारे तो वो फिर पलट के कभी नहीं।
0: दिलीप कुमार ने ही उनका नया नाम रखा था टुनटुन।

0: दोस्तों, उमा देवी के गायन का सफर दोपहर की तेज धूप की तरह चमका, लेकिन इससे पहले कि शाम ढले यानी उनके गायन का सफर धीमा हो, उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। वो रास्ता था अभिनय का, और अभिनय का ये सुझाव भी संगीतकार नौशाद की ओर से ही था, और उमा देवी बन गई टुनटुन। हास्य अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अनगिनत किरदार निभाए, और फिल्मी पर्दे पर लोगों को दिल खोलकर हंसाना उनका शगल बन गया।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: लोगों को उमा देवी के करियर का ये दूसरा रास्ता इतना पसंद आया कि लोग आज भी उन्हें टुनटुन के ही नाम से याद करते हैं। एक रूढ़िवादी पंजाबी परिवार में जन्मी उमा देवी को परिवार की ओर से कोई बढ़ावा या कोई मदद न मिली, इसलिए जीवन के खट्टे मीठे रास्तों को तय करती हुई अपने हुनर को ही उन्होंने अपनी जिंदगी में मील का पत्थर बना लिया।

0: दोस्तों 50 और 60 के दशक में टुनटुन ही एक महिला कॉमेडियन थी जिनके पर्दे पर आते ही हॉल में ठहाके गूंजने लगते थे। उस दौर में हर दूसरी तीसरी फिल्मों में वे नजर आया करती थीं। ये थी उनके अभिनय की कामयाबी और यही थी उनकी प्रतिभा। गुरुदत्त के साथ टुनटुन ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55 और आर पार।
1: मोहब्बत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो।

अमिताभ बच्चन के साथ टुनटुन नजर आई फिल्म नमक हलाल में। दोस्तों, आखिरी बार टुनटुन फिल्म कसम धंधे की में नजर आई। आज उमा देवी यानी टुनटुन हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अपनी आवाज, अपने फन के जरिए आज भी हम सबके दिलों पर राज कर रही हैं।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायिका उमा देवी यानी टुनटुन पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

तमाम सुनने वालों को नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा, और हम लेकर आए हैं आपके लिए दिल की बातें, दिलदार की बातें, उल्फत की बातें और कुछ प्यार भरे चुनिंदा नख्मात की सौगात कार्यक्रम छाया गीत में। जज्बातों में कहीं आग सी लगी हो जैसे, एक नदी झूम के सहरा में बही हो जैसे, कानों में आपने कुछ मेरे कहा लगता है, सीने में झनकार सी उठी हो जैसे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर बनकर, हर गली लगता है अब तेरी गली हो जैसे। अपने आहोश में हमको यूं छुपा लीजिए, जिंदगी आपके पैकर में ढली हो जैसे।

ये हवा, रंग, तबस्सुम, ये महकती खुशबू खूब फैले हैं फिजा में तेरे परचम सारे। तेरे दर पे ही रहूं है यही तमन्ना मेरी, बीत जाए तेरी गलियों में ही मौसम सारे। नींद आती नहीं देखा है जब से तुमको, तेरी आंखों में नजर आते हैं मरहम सारे।

मैं तुम्हारी आंखों से एक बार खुद को देखना चाहती हूँ, तुम्हारी पसंद को समझकर खुद को बेहतर और संवारना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे दिल में गहरे, बहुत गहरे डूबकर निकलना है और वहां से समेट कर लाई गई मोहब्बत की खुशबू को लेकर बीच आंगन में किसी फूल की तरह खिल उठना है, नए रंग और नई खुशबू के साथ। और मैं जब जब भी ऐसा सोचती हूँ, मुझे दुनिया दूर तक खूबसूरत दिखाई देती है।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। इस बार जब आओ तुम यहाँ उदास सूनी झील में चांद तारों को साथ लेकर, तो मैं भी नजर आऊंगी तुम्हें के चाहत लौट कर आने के वादे पर एतबार करती है। तो जैसे बारिश की बूंदे जमी पर गिर के समा जाती है उसमें, वैसे ही समा जाऊंगी मैं भी तुम में।
1: तड़पे दिन रात की कसते।

लिखा, कई कई बार लिखा, पानी पर लिखा, नदी पर लिखा, नदी में चलती नाव पर भी लिखा, कुछ लिखा किनारे बैठकर, ख्वाबों में तैरते हुए बहते हुए लिखा, कुछ मझधार में लिखा, कुछ लिखा डूबकर, और लिखा कि प्यार नहीं सिखाता प्यार से इनकार, और सिखाता है प्यार ही डूबना प्यार में। ये प्यार घाटे का वो सौदा है आखिर में जो फायदे से भर देता है, मुनाफे की किताबों में इसका कोई खाता नहीं, फिर भी ये दिवालिये दिल को मोहब्बत के बेशकीमती खजानों से भर

रहूंगी मैं तुम्हारे साथ, जिस तरह जिंदगी के साथ सांसें, जमी के साथ आसमां, नदी समंदर के साथ लहरें पानी, फल फूलों के साथ डाली, चिड़ियों के साथ चंचल चहकार, सूरज के साथ रोशनी, खेत खलियानों के साथ हरियाली, बगिया के साथ माली, राजा के साथ रानी, मोहब्बत के साथ मेल मिलाप के जज्बात, उसी तरह रहूंगी मैं तुम्हारे साथ।

0: साथियों, अब वक्त आ गया है कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।
1: यह है विविध भारती।

0: ये दिल खो गया है, कुछ हो गया है हमको, हम खो गए ये दिल खो गया है, कुछ हो गया है हमको,
1: किस्मत खुली है मंजिल में।

0: ये था विविध भारती का नजराना।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और लेकर आई हूं चित्रपट संगीत।

पेंटर बाबू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। रचना थी कतील शिफाई की। आइए अब सुने ये गाना, फिल्म का नाम हीर राजा। मोहम्मद रफी की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें,
1: नजारे हम क्या देखें।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे पर दूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
5: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ।

शंकर हुसैन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। जानेसार अख्तर के बोल थे, खयाम का संगीत था। आइए अब सुने आनंद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार की रचना है, सलिल चौधरी का संगीत।

आनंद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज थी। इसी के साथ चित्रपट संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम प्रस्तुत है मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सुनवा रहे हैं बारिश वाले गीत। देश के बहुत सारे हिस्सों में बरसात हो रही है और कुछ जगहों पर बरसात नहीं हो रही है। जहां पर बरसात नहीं हो रही है, इस शुभकामना के साथ ये गाने सुनवा रहे हैं आप तक। बरसात फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें।

कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, छोटी रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे,

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना

0: और मैं कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
1: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
3: सुनिए।
4: विविध भारती पर अब आपको सुनवा रहे हैं लगान फिल्म का गाना, उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में।

0: नमक हलाल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। अनजान की रचना थी, बप्पी लहरी का संगीत था।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: जल्दी बुलबुल

लगान फिल्म का गाना उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, शान और साथियों की आवाजें थी। जावेद अख्तर के बोल, एआर रहमान का संगीत था। फिल्म 1942 अ लव स्टोरी, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाजें हैं। जावेद अख्तर के बोल।

आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जाने माने अभिनेता कुमार गौरव का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं और कुछ गाने उन्हीं के नाम। फिल्म लव स्टोरी लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

लव स्टोरी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। ये फिल्म है नाम, पंकज उधास और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: तेरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार राहुल देव बर्मन।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

तेरे नाम इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा था, धुन बनाई थी हिमेश रेशमिया ने। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रजिया सुल्तान फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे कब्बन मिर्जा की आवाज में। निदा फाजली के बोल थे, खयाम का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जुबैदा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में। शब्दकार थे जावेद अख्तर और संगीतकार एआर रहमान। फिर तेरी कहानी याद आई, ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। अलका याग्निक की आवाज, कतील शिफाई के बोल हैं।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

साजन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। रचना थी समीर की, संगीतकार नदीम श्रवण। 1947 अर्थ फिल्म का गाना सुनिए साधना सरगम की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल यार रहमान का संगीत।

1947 अर्थिस फिल्म के गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं सुरीला सफर कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। वैसे जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर हैं, जुड़े हैं, उन्हें पता चल गया होगा कि आज की इबारत क्या है, लेकिन जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर मौजूद नहीं है, उनके लिए हम आज की इबारत बता देते हैं। वैसे संक्षेप में बता दें कि इस कार्यक्रम का स्वरूप ये है कि हम एक इबारत पोस्ट करते हैं और उस इबारत से जुड़ी हुई बातें आपको साझा करनी है। उनमें जो शब्द शामिल होते हैं, उन शब्दों से गीत आपको चुनने होते हैं और कुछ गीत हम अपने आप सहेज कर रखते हैं, तो देखते हैं कि आपके और हमारे गाने कितने मैच करते हैं। बहरहाल, इबारत जरा हम पढ़कर आपको सुना दें। ये दिल बड़ा अजीब है, कभी खुद से रूठ जाता है, कभी जमाने से, कभी खुशियों की पालकी पर इंतजार के मोती पिरोता है, तो कभी यादों की नदी में डूबकर मुस्कान सजा लेता है, कभी अनकही बातों के बोझ तले खामोश हो जाता है और हर सुबह नई आशाओं के दीप जलाकर मुस्कुरा उठता है, कभी उदास शाम को तन्हाई की चादर ओढ़ चांद का रास्ता देखता है। शायद इसी का नाम दिल है, जो टूट कर भी खामोशियों और तन्हाइयों को गुनगुनाता हुआ प्यार या प्रेम को जिंदगी में घोल लेता है। बहुत सारे श्रोताओं ने आज टिप्पणियों में गाने लिख डाले हैं, जिनमें बहुत सारे गाने हमने चुन रखे हैं, वही जो आप सुनना चाहते हैं। दोस्तों, लेकिन ये बात जरा हमें बताइए कि कौन सी वो बात है जो आपके दिल में आई और आपने उसे बड़ी रुखाई के साथ नजरअंदाज कर दिया। कौन सी वो बात है जब आपने अपने दिल की बात सुनी और मानी। कौन सा ऐसा मौका आया जब दिल और दिमाग में द्वंद हुआ। वैसे दिल बहुत जज्बाती है, तो दिल पर बोझ ज्यादा न डालें। अपने दिल की हिफाजत के लिए रोजाना आप क्या करते हैं, ये भी जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर बताइएगा। और हाँ, आज की इस इबारत में इंतजार भी है, खामोशी है, रास्ता है और बहुत कुछ है, तो शब्दों से जुड़ी हुई बातें भी आप लिख सकते हैं। शब्द ढूंढिए, उसमें कौन से शब्द हैं जिस पर गाने हैं और गाने हमें सुझाते चलिए। हम सुनवा रहे हैं ये गाना और इस गाने का जिक्र बहुत सारे श्रोताओं ने किया है। जरा देखिए, आपका गाना भी तो यही नहीं है या कोई और गाना है। कौन है हीरोइन पर्दे पर, ये भी बताइएगा और गीतकार का नाम भी आपको बूझना है। फिल्म अनुपमा। संगीतकार का नाम पता है क्या आपको? हेमंत कुमार।

कुछ दिल ने कहा। दोस्तों बताइए जरा, आपके दिल ने कब क्या कहा और आपने किन लम्हों में खुद से गुफ्तगू की, ये बताते चलिए। और साथ में किसका इंतजार कब किया और कब किसी के इंतजार में दीप जलाए, कौन से वो गाने हैं। हमने तो आपको हिंट भी दे दिया कि कौन कौन से गाने हैं, देखते हैं कि कौन से श्रोता लिख पाते हैं हमने जो गीत चुना है वो। बहरहाल ये तो श्रोताओं वाला ही गाना था। बहरहाल आगे बढ़े और आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचाते चलें। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी अपने का इंतजार दिल की सबसे खूबसूरत आदत है। हर आहट में उसका एहसास, हर दस्तक में उसके आने की आहट सुनाई देती है। जब किसी अपने के आने का इंतजार रहता है तब घड़ी की सुइयां भी जैसे थोड़ी धीरे चलने लगती हैं। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बहुत खूब है आज की इबारत जो हमें सिखाती है कि दिल का अजीब होना ही उसकी खूबसूरती है। यदि दिल में उदासी न हो तो खुशियों का मूल्य समझ में ही नहीं आएगा, और यदि वो इंतजार के मोती न पिरोए तो मिलने का आनंद अधूरा रहेगा। दिल दरअसल विपरीत भावनाओं, खुशी गम शोर खामोशी तन्हाई प्यार के बीच संतुलन बनाने की निरंतर कला है। तो अब बात इंतजार की चली है, मतलब दो श्रोताओं ने लिखा इंतजार की बात, तो इंतजार वाला गाना सुनते हैं। फिल्म छलिया। आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, लता मंगेशकर की आवाज़।

छलिया फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत। श्रोताओं ने गीतकार संगीतकार का नाम बिल्कुल सही बताया। इसके पहले हमने आपसे पूछा था अनुपमा फिल्म के गाने में कौन है हीरोइन, सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया, शर्मिला टैगोर, और गीतकार का नाम भी बिल्कुल सही फरमाया, कैफी आजमी। और अब अगला गीत क्या हो सकता है जरा पूछिए तो। हम आपको हिंट दे रहे हैं कि कौन सा ऐसा मौका आता है जब आप दीप जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, किस खुशी के मौके पर, ये बताइए और गाना बूझिए। तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जिस भी उम्र में जो चीज दिल को छूती है यादों में शामिल हो जाती है, कोई गहरी संवेदना एक रूप में ढलकर एक आहट बनकर बस अपनी बात कह रही हो, जैसे कि फिल्म अनुपमा का ये गीत कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, जुगनू तभी चमकता है जब तक उड़ता है, कमोवेश यही हाल दिल का भी है, जब इसकी धड़कन रुक जाए तो हम भी थम जाते हैं, दिल के मौसम का हाल ख्यालों और ख्वाबों की मखमली जमीन से जुड़ा है, इसलिए दिल को कभी मुरझाने मत देना, इसे अपने खूबसूरत विचारों से हमेशा सजाए रखना। क्या बात कही है, सचमुच अपने दिल की हिफाजत भी करनी चाहिए क्योंकि दिल कई बार कमजोर भी हो जाता है, कई बार जज्बाती हो जाता है, कई बार बोझ सहन नहीं कर पाता है, इसलिए अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी के टेंशन है, तनाव है, उन्हें दूर भगा दीजिए और दिल को बिल्कुल खाली रखिए, बिल्कुल खाली बर्तन की तरह। और हाँ, अभी हमने बूझने के लिए कहा है कि कौन सा गाना होगा, जरा बूझते रहिए, आपकी टिप्पणी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक श्रोता ने लिखा है, कभी ये खुशियों की पालकी में बैठकर सपनों के आकाश में उड़ने लगता है, तो कभी इंतजार के मोती चुनते चुनते यादों की नदी के किनारे जा बैठता है, कभी मुस्कान की रोशनी से चेहरा जगमगा उठता है, तो कभी अनकही बातों का बोझ इसे खामोश कर देता है। मेरी इबारत को थोड़ा हेर फेर करके लिख दिया है इन्होंने। अब हम

आगे देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता ने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल को मनाने की भी कला होना जरूरी है। हम सभी को प्रभु परमेश्वर ने दिमाग सर से भी नवाजा है, इसलिए अगर जिंदगी की सही पारी खेलनी है तो अपने दिल भाई साहब को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। तो बताइए, आप कब अपने दिमाग की सुनते हैं, कब दिल को इग्नोर करते हैं, ये भी बताते चलिए। और सच बात तो ये है कि जब कोई निर्णय लेना पड़ता है तो दिल को हमें नजरअंदाज करके दिमाग की सुननी पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा रहे हैं अब चित्तचोर फिल्म का गाना। और हमने आपसे पूछा था कि कब किन मौकों पर दीप जलाते हैं आप, जरा ये बताइए कि फिल्मी पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, कौन कह रहे हैं एक दूसरे से ये बात। हीरो हीरोइन का नाम पूछना है, फिल्म चित्तचोर, ये सुदास और हेमलता की आवाजें हैं।

चित्रोर फिल्म का गाना था येसुदास और हेमलता की आवाजें थी। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। बहुत त्वरित जवाब आया श्रोताओं की ओर से और सही जवाब आया अमोल पालेकर और जरीना वहा पर्दे पर होते हैं और एक भी श्रोता ने गलत जवाब नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो दीप जलाने की परंपरा दिवाली के त्योहार के दौरान होती है पर अपने घर के मंदिर में तो रोज ही दीपक जलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि पर, नववर्ष पर, दीपावली पर और कुछ साल पहले तो शाम होते ही हमारा काम दिया जलाकर रखने का होता था, बिजली हर वक्त नहीं रहती थी। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि दीप जलाने की परंपरा तो जब खुशी का मौका आता है तब भी हम दीप जलाते हैं। बिल्कुल खुशी में हम दिए जलाते हैं और खुशी का दीप जलाने की बात दिल से भी होती है कि दिल आपका जब आप खुश होते हैं तो अपने आप दिल में खुशी का दिया जलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज की तरह होता है, इसे सुचारू रूप से चलने के लिए ब्लड प्रेशर को संतुलित रखना पड़ता है। एक श्रोता ने लिखा है कि 2014 को हृदय की शल्य चिकित्सा हुई थी तब डॉक्टर साहब ने एक बहुत सही सलाह दी थी, आज के बाद किसी भी स्थिति में सुख में बहुत ज्यादा खुश न हो, बस प्रसन्न नता को खुशबू की तरह महसूस करते रहो और दुख का समय आए तो बहुत ज्यादा दुख में न घिरते हुए अपने आप को संभाल कर रखो। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जिंदगी के चौराहे पर अक्सर हम खुद को खड़ा पाते हैं जहां एक तरफ दिमाग की ठंडी दलीलें होती हैं और दूसरी तरफ दिल की बेबाक पुकार। दिमाग नफा नुकसान देखता है, गणित लगाता है लेकिन दिल सिर्फ सुकून ढूंढता है। और सच तो ये है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत फैसले चाहे वो किसी से बे इंतहा मोहब्बत हो या किसी अजनबी की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, हमेशा दिल से ही लिए जाते हैं फैसले। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। और जरा आप ये भी बताइए कि कब आप खामोश हो जाते हैं, दोस्तों के बीच कौन सी वो घड़ी है जब आपको लगता है कि हाँ तो चुप रह जाना ही बेहतर है, या घर परिवार में कौन सा ऐसा लम्हा आता है जब आपको लगता है कि चलो जाने दो, खामोश रहो, छोड़ो हटाओ, ये बात आती है। और जब आप तन्हा होते हैं तो आप अपना दिल कैसे बहलाते हैं, कोई गीत सुनते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई फिल्म देखते हैं या फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं यूं ही बेसबब, तो अपनी बात आप बताते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है फिल्म आकाशदीप, तो सुन लीजिए यही गाना दिल का दिया जलाकर। जरा गीतकार और संगीतकार का नाम बूझिए। यहाँ तन्हाई भी है, दिल भी है, क्या नोटिस किया आपने?

आकाशदीप फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, रचना थी मजरू सुल्तानपुरी के, संगीतकार चित्रगुप्त, और ये हमारा सवाल भी था, श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रस्तुत गद्य इबारत की इबादत से निकले शब्दों में, मतलब इबारत से निकले शब्दों में दिल बड़ा अजीब, कभी खुद से रूठ जाता है, जमाने से, सुबह शाम, उदास, तन्हाई जैसे अनेक संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाले शब्द हैं, तो इन शब्दों की भरमार है, तो मेरे हिसाब से गीत कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, और गीत के बोल इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल की दास्तान की क्या कहें, आशा निराशा के समुद्र में हिचकोले खाता है, कभी किसी बीती बातों को दुखद याद करके मायूस हो जाता है, आंखें झरझर बहने लगती हैं, फिर अपने आप को दिलासा देकर शांत होकर अगली भोर की आशाओं की किरण के साथ प्रफुल्लित होकर एक नई ऊर्जा से भर जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब कोई मित्र परिवार का सदस्य अपने दिल का हाल या दुख बांट रहा हो तो उन्हें ज्ञान, सलाह या उपदेश की जरूरत नहीं होती, उस वक्त आपका एक शांत श्रोता बनकर उनकी बात को सुनना ही आपके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है, मतलब ऐसे मौके पर आप शांत रह जाते हैं। तो अब क्या बात है, थोड़ी मुस्कुराने की बात की जाए, तो अपने मुस्कुराने की बात आप बताइए कि कब आप मुस्कुरा पड़ते हैं। कभी कभी यूं ही बैठे बैठे लोग मुस्कुरा उठते हैं अपने आप, कुछ लोग मोबाइल में कुछ टेक्स्ट देकर, कुछ मैसेज देखकर मुस्कुरा उठते हैं, आजकल तो रील देखकर मुस्कुराने का जमाना बड़ा गजब का है। जरा अपने अनुभव भी साझा कीजिए, आप कब और कैसे मुस्कुराते हैं। बच्चों की नटखट शरारतों पर मुस्कुराना होता है, तो बताइए। फिल्म का नाम आपको बूझना है, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।

बात पर उदास हो जाता है। ये रिश्तों में अपनापन ढूंढता है, यादों में सुकून तलाशता है और उम्मीदों के सहारे हर दिन एक नई शुरुआत कर लेता है। टूट कर भी धड़कना नहीं छोड़ता, हार कर भी प्यार करना नहीं भूलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मानव शरीर का मुख्य अंग हृदय यानी दिल होता है। जिंदा रहने के लिए दिल यानी हृदय का धड़कना जरूरी है। उसी तरह आकाशवाणी रूपी शरीर का दिल देश की सुरीली धड़कन विविध भारती है, जिसे हर इंसान यानी श्रोताओं के मनोरंजन के लिए दिन रात धड़कना जरूरी होता है। तभी तो हमारे आपके रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। दोपहर 1 बजे सुरीला सफर में जुड़ने याद उनको भी आती तो होगी। हमने तो हमारे दिल की गिरह खोल दी है चुप न बैठकर। हमारे दिल ने कुछ कहा, कुछ भी नहीं, कुछ भी लिख दिया। वही आपका लिखा और आपका कहा विविध भारती के फेसबुक पेज तक पहुंच गया और अब श्रोताओं तक भी पहुंच गया। करोड़ों श्रोता जान गए आपके दिल की बात। चलिए अब हम इंतजार की बात करते हैं और आपको पूछना है पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, कलाकार का नाम और साथ में स्वर और संगीत किसका है। रूठने वाला गाना भी आपको याद करना है।

प्रसारित करते हैं वो गाना, तो उस गाने का जिक्र अभी तक किसी ने नहीं किया, लेकिन जिसने गानों के जिक्र किए हैं जिन श्रोताओं ने, वो ये गाने हैं, रूठे सैया मनाऊं कैसे, रूठा है तो मना लूंगा, और एक श्रोता ने लिखा है तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, ये गाना बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, रूठा है तो मना लेंगे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, ओ दिलवर जानिया रूठने मनाने में बीत न जाए जवानियां, और रूठो ना हमसे ओ बच्चों की नानी, और एक श्रोता ने लिखा है देखो रूठा न करो अजी रूठ कर अब कहां जाइएगा। भाई ये सारे गाने तो आप अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन ये वाला गाना पिछली बार कब सुना था, जरा याद हो तो बताइएगा। फिल्म का नाम अगर बता सके तो बताइए। गीतकार का नाम भी बताइए। फिल्म का नाम, गीतकार का नाम आपको बूझना है, पहेली जरा कठिन है।

खामोशी फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, राजेश खन्ना और वहीदा रहमान। स्वर और संगीत भी पूछा था लेकिन बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है, हेमंत कुमार और गुलजार के बोल थे। और हमने आपसे पूछा था रूठने पर एक ऐसा गाना है जो आपने कभी कभार ही सुना होगा। विविध भारती के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम से हम

दो फूल फिल्म का ये गाना था। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें थी। हसरत जयपुरी के बोल थे, वसंत देसाई का संगीत था। इसकी जानकारी शायद किसी को नहीं थी, किसी ने इस बारे में बताया नहीं, ना फिल्म का नाम, तो ये भी नहीं बताया आपने कि पिछली बार आपने कब सुना था। अब कभी भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुनिएगा और याद कीजिएगा ये गाना। बहरहाल रूठने पर बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं। कब तक हुजूर रूठे रहोगे, लेकिन गुस्से में प्यार बलम जी अब तो हंसो, रूठा है तो मना लेंगे, न रूठो न रूठो मेरी जान, देखो रूठा न करो रूठे सैया। और एक श्रोता ने लिखा है कि धन्यवाद इस गाने के लिए, और एक श्रोता ने लिखा है कि वो तो रूठा है मना लेंगे। एक श्रोता ने लिखा है, मोबाइल पर जब कोई रील देखता हूं तो कभी कभी हंस हंस कर पेट में बल पड़ जाते हैं, फिर मासूम बच्चों की मासूम हरकतें देखकर हंसी आ जाती है। ये इस बात पर है कि कब किन लम्हों में आप

मुस्कुराते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि रूठना मनाना, अच्छा जी मैं हारी, ये वाला गाना लिखा है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है रूठने पर गाने, लेकिन ये भी बताइए कि जब कोई रूठ जाता है आपसे तो आप मनाते हैं या आप रूठने वाले को यूं ही छोड़ देते हैं, जाओ भाड़ में जाओ रूठे रहो हम तो नहीं मनाएंगे, आप मनाते हैं या आप मनुहार करवाते हैं, दोनों बातें लिखिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं तन्हा होता हूं तो या तो मोबाइल ऐप पर विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के प्रोग्राम सुन लेता हूं या फिर घंटे भर के लिए कहीं घूमने चला जाता हूं, अखबार भी पढ़ लेता हूं या पुराने गाने सुनकर अपनी तन्हाई को दूर करता हूं। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं गुस्से में होती हूं तो चुप हो जाती हूं, थोड़ी देर में अपने आप गुस्सा शांत हो जाता है। ये बहुत अच्छा नुस्खा है वैसे कि अगर सामने वाला गुस्से में कुछ बोल रहा है, आपको भी गुस्सा आ रहा है, तो आप शांत हो जाएं तो सामने वाले का गुस्सा भी खत्म हो जाता है आपका भी। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का विचित्र फंडा है, किसको अपनाएगा किसको छोड़ देगा इसकी जानकारी नहीं होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का क्या कहें, सुबह शाम उठते बैठते कैसे इसकी धड़कन बढ़ गई, हांफने पर डॉक्टर तक पहुंचे जिन्होंने कहा कि आपने कुछ ऐसा सोचा क्या, आप जिंदगी के निजी फैसलों में कभी दिल को न लें, बस दिमाग ही लगाएं और उनकी टैबलेट आज तक छूटी नहीं। भाई अपने दिल का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल है कि मानता ही नहीं और किसी पर भी आ जाता है, दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल भी टूट के छलनी हुआ, विधि ने जो घात किया, खुशियां पल भर में लुट गई, यादों को भी नदी में ही विसर्जित कर दिया, बस एक सिर्फ एक निजी जागती उसकी निशानी अब कलेजे से लगा के संभालना है और उसे आंखों में संभाल के रखना है जब तक सांस चलती है। और अब चलिए सुनते हैं ये गाना, जरा बताइए कौन है हीरोइन, पर्दे पर कौन गा रही है।

चलिए सुनते हैं ये गाना। जरा बताइए कौन है हीरोइन, पर्दे पर कौन गा रही है ये गाना और गीतकार का नाम आपको बूझना है। फिल्म है भरोसा। इसमें इबारत के कौन कौन से शब्द हैं जरा ये भी बूझिए आप।

भरोसा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत। इस गाने में एक नाराजगी भी है और दुख भी है और साथ भी है, भूलने की बात भी है, याद भी है, दिल भी है। तो आज की इबारत के बहुत सारे शब्द इस गाने में थे और हमारे श्रोताओं ने भी इस गाने का जिक्र किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब रूठती हूं तो न मनाती हूं न मनुहार करवाती हूँ। क्या बात है भाई, ये तो अच्छा नुस्खा है कि ठीक है, न मैं मनाऊंगी न तुम, मतलब मैं न मैं रूठूं न तुम रूठो, ये वाला हिसाब किताब है ना। और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है कि पर्दे पर आशा पारिख है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मन की हर उदासी का सबब दिल का टूटना नहीं होता है, कई बार कुदरत का बदलता मिजाज और शरीर में विटामिन की कमी जैसी शारीरिक वजहें भी इंसान को अवसाद और डिप्रेशन में डाल देती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सामने वाला हमारी कोई गलती के बिना ही रूठता है तो मनाने का सवाल नहीं है, पर अगर सोचने पर हमारी गलती महसूस होती है तो जरूर मनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल के बारे में क्या कहें, ये एक ऐसी चीज है जो अनवरत क्रियाशील रहती है, जहां इसने धड़कना छोड़ा व्यक्ति इस संसार से विदा हो लेता है। दिल का धड़कना और सोचना उम्र के साथ बदलता रहता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि खुशियों में झूम उठता है दिल, गम में मौन हो जाता है। वैसे ये हमारी एक मानसिक स्थिति है जो हमारे मनोभावों को प्रस्तुत करती है, एहसास दिलाती है, चाहे वो प्यार

हो दोस्ती हो परिवार के प्रति जिम्मेदारी। फिल्मों में दिल के संबंधित कई गाने हैं और दिल एक मंदिर है गानों की लंबी फेहरिस्त दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल शब्द के ही गाने हमने आपसे पूछे थे, हमने तो आज की इबारत से जुड़े हुए गाने पूछे थे। एक श्रोता ने बहुत सारे शब्द लिखे हैं, जमाना, उदास, तन्हाई और इन्होंने तन्हाई और अकेलापन, सुबह शाम ये भी लिखा है, तो सुबह शाम बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है। तो चलिए भाई ये गाना सुनते हैं और देखिए कि क्या आपने याद किया। और हाँ, आपको बता दें, दो फूल फिल्म का गाना जो हमने सुनवाया था, कुछ हमारे सुधीर श्रोता है जिनकी जानकारी बड़ी समृद्ध है, उन्होंने लिख दिया था विविध भारती के फेसबुक पेज पर, हमें देर से दिखा, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जरा सुनिए ये गाना और बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।

जब भी कभी मुश्किल वक्त आता है तो हम ये गीत जरूर गुनगुनाते हैं, और जब आपके घर में आपके आसपास खास तौर से टीन एज बच्चे जो पढ़ाई के प्रेशर से परेशान हो, तन्हा उन्हें अकेलापन लग रहा हो, तो उन्हें ये गाना जरूर गा के सुना दीजिए कि हाँ सुबह जरूर आएगी और तुम्हारे पेपर्स अच्छे होंगे, मार्क्स बढ़ेंगे। इस तरह के बहुत सारे गाने हैं समझाइश वाले, गानों के माध्यम से हमारे बड़े बुजुर्ग समझाया करते थे, तो आप भी समझा सकते हैं। गीतकार संगीतकार का नाम पूछा था, साहिल लुधियानवी और खयाम।

एक श्रोता ने लिखा है कि बेबस बेकाबू बेचैन दिलों के हसरतों उमंगों तरंगों को चित्रित करती इबारत है। अनुभूति तन्हाई बेबसी मान मनवल हंसाती रुलाती बेबसी दिलों के तजुर्मा को तरन्नुम में ढाल आज सुरीला सफर बाकी खासम खास रहेगा और खासम खास हो रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल की दास्तान की क्या कहें, आशा निराशा के समुद्र में हिचकोले खाता है, आशाओं के किरण के साथ प्रफुल्लित होकर नई ऊर्जा से भर जाता है, नए सपनों और उन्हें पूरा करने की ओर अग्रसर हो जाता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल और दिमाग का द्वंद हमेशा से रहा है, रिश्ते बनाए तो दिल से जाते हैं लेकिन निभाए दिमाग से। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अगर सामने वाले पर गुस्सा आ रहा हो तो उस समय चुप रहना ही उचित रहता है क्योंकि गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है पर उस समय गुस्से में कही गई बातें सामने वाले को दूर कर देती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि कभी खुद से रूठ जाता है दिल कभी जमाने से। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिल बड़ा अजीब है। और अब चलिए प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनते हैं फिल्म आह से। आपको पूछना है कौन है हीरो कौन है हीरोइन और गीतकार संगीतकार का नाम भी जरा बताइएगा। फिल्म आह

फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी। हमने आपसे पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, और हीरो हीरोइन का नाम भी पूछा था। सभी श्रोताओं ने बहुत कम वक्त में बहुत जल्द त्वरित जवाब दिया, नरगिस और राज कपूर। एक श्रोता ने लिखा कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है, मैंने अपनी डायरी में लिखा था ये गीत। और एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे ज्यादा वक्त मेरी नवासी को मनाने में लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब किसी को गुस्सा आए तो चुप रहना ज्यादा बेहतर होता है। बहुत सारे श्रोताओं ने आज अपनी बातें और अपनी यादें साझा की। किसी ने रूठने की बातें की, किसी ने तनाई की बातें की, किसी ने दिल की बातें की। दिल की बातें श्रोताओं ने ज्यादा की। सुरीला सफर कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
3: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
2: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की

आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बजाने हम किधर किधर गए चांद पर उतर गए, नैन वाले तेरे नैन जादू कर गए, नैन वाले तेरे नैन जादू कर गए, जादू कर गए हो नैन।

कर गए नैन वाले तेरे नैन जात कर गए।

ऐसा काहे को होवत हैरी लैला, ऐसा काहे को होवत हैरी लैला, मन मोर।

नाट्य तरंग। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हरिराम आचार्य का लिखा नाटक रहीम की ढाणी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। तो आइए सुनते हैं नाटक रहीम की ढाणी।

0: वाव, जैसलमेर हमको हर एंगल से फैसिनेट करता है मिस्टर ओझा।
1: अच्छा,
0: और हम क्या, दुनिया का कोई भी टूरिस्ट इधर से मुग्ध हुए बिना नहीं जा सकता।
1: क्या क्या आपने क्या बोला मिस चारुमित्रा, मुग्ध?
0: यस मिस्टर ओझा, आई मीन इट।
1: रियली? मगर ऐसी क्या अनोखी बात है यहाँ जिसके कारण आप जैसे कला और इतिहास के प्रेमी हर वर्ष यहाँ खींचे चले आते हैं?
0: ओ मिस्टर ओझा, दिस डेजर्ट, जे मीलों तक फैला रेगिस्तान, जैसे सोने की बालुका का सागर लहराता हो, कड़ी धूप में तप करते शमी के पेड़, लुका छिपी खेलते घोड़ावर पक्षी, गोर बन से सजे ऊंट। मिस्टर ओझा, इट इज नॉट लेस देन ए वंडरलैंड फॉर मी।
1: आप हरे भरे बंगाल से आती हैं, इसलिए ये सूखा रंगहीन लैंडस्केप आपके लिए नई बात हो सकती है।
0: नो मिस्टर ओझा, ये तो एक ब्रॉड पैनोरामा है। इस बैकग्राउंड पर कलरफुल परिधान, आर्ट, कल्चर और इतिहास के जो रंग उभरते हैं, लोक संगीत के जो स्वर गूंजते हैं, वो सब कहने का नहीं, फील करने का चीज है।
1: एक बात कहूँ मिस मित्रा?
0: ओह यस।
1: आप एकदम पागल हैं।
0: रियली? इज इट अ कॉम्प्लीमेंट?
1: एक खूबसूरत चीज को अप्रिशिएट करने के लिए एक खूबसूरत नजर भी होनी चाहिए, और वो नजर आपके पास है मिस मित्रा।
0: थैंक यू मिस्टर ओझा, यू आर सो नाइस टू मी।
1: आपने यहाँ का खूबसूरत सोनार किला देखा, मूमल महेंद्र की प्रेम गाथा सुनी, मांड धरती का मीठा संगीत भी सुना, अब नया तो कुछ बचा नहीं यहाँ, किधर ले चलूं?
0: हमको क्या मालूम, गाइड तुम है मिस्टर ओझा। नया कुछ नहीं बचा तो तुम हमको जंगल में किधर ले जा रहा है? क्या खाली पेट्रोल जलाने में तुमको मजा आता है?
1: नहीं मिस मित्रा, इस बार मैं आपको जैसलमेर के इतिहास का एक अछूत पृष्ठ दिखाना चाहता हूँ, देखना चाहेंगी?
0: ओह दैट्स लाइक ए गुड गाइड। लेकिन इतिहास का अछूता पृष्ठ और इस डेजर्ट में?
1: हाँ, ये पृष्ठ स्वाधीनता संग्राम के दिनों में सन 1940 के आसपास यहाँ एक ढाणी में लिखा गया, वो भी स्याही से नहीं, शरीर के रक्त से।
0: वहाँ जरूर ले चलो मिस्टर ओझा। वो जगह क्या बोला, ढाणी?
1: ढाणी यहाँ कुएं या ताल तलैया के आसपास छोटी सी बस्ती को कहते हैं।
0: आई सी।
1: लो आ गई हमारी मंजिल।

0: ये है रहीम की ठाणी। बहुत कम लोगों को जानकारी है इसकी। आइए।
1: रहीम की ढाणी, हम भी पहली बार नाम सुना।

0: ये रहीम कौन है?
1: है नहीं, था। ये सामने है उसका स्मारक, रहीम का मजार, एक गुमनाम शहीद की समाधि, जिसने आजादी की लड़ाई में फिरंगी हुकूमत से टक्कर ली और अपने ही तरीके से देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल कायम की। रहीम का सिर्फ एक मिशन था, अंग्रेज सरकार का खजाना या अंग्रेज परस्तों की दौलत लूटना और उसे गरीबों में बांट देना। ब्रिटिश हुकूमत के रिकॉर्ड में रहीम खान महज एक डकैत था, चलती ट्रेन में डाके डालने वाला डाकू, जेल तोड़कर भागने वाला एक खतरनाक मुजरिम।
2: अपराधी रहीम का अमरकोट की जेल तोड़ के फरार, उसके सर पर 1,00,000 का इनाम, ब्रिटिश हुकूमत का ऐलान। पढ़िए पढ़िए।

0: अल्लाह अल्लाह।
1: पीर बाबा के कदमों में रहीम खां का सलाम।
0: खुदा खुश रखे। आ रहीमा, तुझे तो फिरंगियों ने कैद खाने में डाल रखा था ना।
1: हाँ पीर बाबा।
0: तो क्या तू जेल तोड़कर निकल आया?
1: बड़े कमजोर सींखचे लगा रखे हैं फिरंगी ने, हाथ लगाते ही टूट गए और मैं बाहर निकल आया।
0: पगले, तू जानता भी है कुछ? जवानी के जोश में तू किसे ललकार रहा है? उस फिरंगी सरकार को जिसका सूरज कहते हैं कभी डूबता नहीं।
1: झूठ है, अफवाह है पीर बाबा। ये सूरज मगरिब से उगा है, इसलिए इसका मशरिक में डूबना तय है।
0: कैसे?
1: क्योंकि ये उजाला देने वाला नहीं, अंधेरा फैलाने वाला सूरज है। जुल्म का अंधेरा, गुलामी का अंधेरा, नाइंसाफी का अंधेरा।
0: कुछ अपने गरेबान में भी झांक रही माँ, डकैती का धंधा करता है और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है।
1: ऐसा मत कहिए पीर बाबा, मैं डकैत नहीं हूँ, अदना सा खादिम हूँ आपका। अच्छे बुरे की पहचान आपसे सीखी है। इन काले दिल वाले गोरों ने जोर जुल्म से हमारे मुल्क की जो दौलत अपनी अय्याशी के लिए बटोरी है, उसे छीन कर अपने भाइयों में वापस तकसीम करने का फर्ज जान पर खेल कर भी अदा करता हूँ।
0: बेटे रहीमा, इस काम में खून खराबा भी तो होता है, नेक काम के लिए भला बंदूक क्यों?
1: मैं तो एक हक परस्त सिपाही का मेहनत कश बेटा था पीर बाबा। बंदूक उठाने पर मुझे गोरे अफसर ने मजबूर कर दिया।
0: क्यों भला?
1: बाबा, आपने ये सवाल करके मेरा जख्म कुरेद दिया। मेरे वालिद ने एक सिपाही की हैसियत से सारी उम्र इस नामुराद सरकार की खिदमत की, मगर जब वो बूढ़ा और बीमार होकर खटिया पर दम तोड़ रहा था, तब उसी के बड़े फिरंगी साहब ने दवा के लिए चंद पैसों की मदद मांगने पर उसे गोली से उड़ा दिया।
0: अल्लाह, ऐसी जलील हरकत, तूने जान नहीं ले ली उसकी?
1: हाँ, होता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता पीर बाबा।
0: तो तू कहाँ था?
1: मैं वालिद की दवा के लिए एक साहूकार के पास बीवी के कड़े बेचने गया था। लौटा तब तक सब कुछ खत्म हो गया था, वालिद का कत्ल हो गया था और मेरी बीवी ने खुदकशी कर ली थी।
0: या मेरे खुदा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
1: उसी दिन मैंने वालिद की बंदूक उठाकर कसम खाई कि इन फिरंगी लुटेरों को अपने जीते जी चैन से नहीं बैठने दूंगा। बंदूक का पहला घोड़ा मैंने जलील अफसर के सीने पर दबाया और ये रास्ता पकड़ लिया।
0: मगर इस रास्ते में चैन कहाँ है बेटे? ये रास्ता तो जेल और फांसी के अलावा और कहीं नहीं ले जाता।
1: जेल से तो निकल ही आया हूँ और अब तय कर लिया है कि जीते जी दुश्मन के हाथ नहीं आना है, चाहे वो मेरे सर पर कितने ही इनामों का ऐलान कर दे।
0: तो फिर अब करेगा क्या? हुकूमत के हाथ बड़े लंबे होते हैं बेटे।

0: तू छुपेगा कहाँ?
1: अभी तो आपकी पनाह में हूँ, जहाँ का हुक्म आप देंगे वहीं चला जाऊंगा।
0: और तेरे साथी?
1: वो भी मेरे साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे।
0: देख रही माँ, यहाँ इस ठिकाने पर तो हर किस्म का आदमी आता है।
1: हाँ बाबा,
0: तेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुम लोग मांगणियारों का भेष बनाओ और मेरा पैगाम लेकर जैसलमेर महारावल के पास चले जाओ। उनकी पनाह पुख्ता होगी और तुम वहां एकदम महफूज रहोगे।
1: जो हुकुम पीर बाबा।
0: अल्लाह
1: बाबा।
0: बोल बेटे।
1: इतना कर्म किया है तो चलते चलते एक और कर्म का वादा दे दो।
0: हाँ हाँ बोल।
1: इस फकीर बंदे का जब भी दम टूटे, आपके कदमों में टूटे, बस यही मेरा अरमान है।
0: जिंदगी और मौत तो परवरदिगार के हाथ है रहीमा, जो उसे मंजूर होगा वही होगा। जा अब आराम कर, कल सुबह कूच कर लेना आगे।
1: अच्छा बाबा, खुदा हाफिज बाबा।
0: अल्लाह हाफिज।

0: घड़ी खमानदाता,
1: रियासत के क्या समाचार है दीवान जी?
0: सब अमन चैन है हुजूर, बस एक मामला आपकी सेवा में दरपेश करने की इजाजत चाहता हूँ।
1: पेश करो।
0: कल रात अमर सागर के रस्ते में 5 अनजान लोग बांगड़ियारों के भेष में पड़ाव डालकर गा बजा रहे थे।
1: कोई चोर डाकू तो नहीं है? कौन है उनका मुखिया?
0: वो अपना नाम रहीमा बताता है अंदाता, पी पगारों की चिट्ठी लेकर आया है और हुजूर के चरणों में हाजिर होकर कोई पैगाम देना चाहता है।
1: कहाँ है वो लोग?
0: पुलिस की हिरासत में अंदाता।
1: और वो चिट्ठी?
0: ये है वो चिट्ठी अंदाता।
2: महारावल जैसलमेर, आप पर अल्लाह ताला की नजरे करम हो, पीर पगारों की दुआ कबूल फरमाएं। बाज़ाब्ता अर्ज की जाती है कि चिट्ठी लाने वाला शख्स हमारा वफादार खादिम है, इस नेक बंदे को अपनी पनाह में लेने का करम फरमाएं। ये आपकी जी जान से खिदमत करेगा, बाकी पैगाम इसके मुंह से रूबरू सुनकर खातिरी कर लें। बकलम पीर पगारो।
1: रहीमा को बाइज्जत बादल विलास में हमारे रूबरू पेश किया जाए।
0: जो हुक्म अंदाता।
3: महारावल का इकबाल बुलंद हो, नाचीज की जोहार कबूल फरमाए अंदाता।
1: आओ रहीमा, पीर पगारों की चिट्ठी हमें मिल गई है।
3: हुजूर की मेहरबानी है।
1: दीवान जी को सवाल पूछेंगे तुमसे, ठीक से जवाब देना।
3: जो हुक्म अंदाता।
4: हमारे पास जो खबरें हैं उनके मुताबिक अमरकोट का बाशिंदा रहीम खां एक खतरनाक डकैत है जो ब्रिटिश हुकूमत के खजाने लूटता फिरता है।
3: खबर सही है।
4: वो रहीम खां कंपनी राज का एक सजा याफ्ता मुजरिम और फरार कैदी है।
3: एकदम सच है।
4: अंग्रेज सरकार ने उसके सिर के लिए 1,00,000 रुपए के इनाम की डोंडी पिटवा रखी है।
3: आप बजा फरमाते
4: क्या तुम वही रहीम खां हो?
3: खुदा झूठ न बुलवाए, ये खादिम वही रहीमा है।
1: इतने गुनाहों का बोझ लेकर हमारी रियासत में किस लिए आए हो?
3: महारावल की छत्र छाया में पनाह लेने अंदाता।
1: हमारा काम क्या डकैत और मुजरिमों को शरण देने का रह गया?
3: गुस्ताखी माफ हो अंदाता, रहीमा इंसानियत की वतन परस्ती की राह पर चलने वाला एक नाचीज बंदा है। डकैत और मुजरिम का नाम तो उसे फिरंगियों ने दिया है जो 7 समंदर पार से यहाँ आकर हमारे मुल्क की दौलत और इज्जत पर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। रहीमा तो सिर्फ उनसे अपने मुल्क की दौलत वापस छीन लाने का काम अंजाम देता है।
1: तुम्हारी जबान से बगावत की बू आती
3: है। वतन परस्ती अगर बगावत है अंदाता, तो मैं फख्र के साथ अपना बागी होना कबूल करता हूँ।
4: किसी रजवाड़े में एक बागी को शरण देने का मतलब है ब्रिटिश राज से सीधी टक्कर लेना।
3: दीवान जी, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, सियासत नहीं समझता, मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ और इन गोरों को यहाँ से बाहर खदेड़ने वाली हर जंग में हिस्सा लेना चाहता हूँ। इसलिए अपने पीर बाबा के

0: हुक्म से और महारावल की अजमत के एतबार से यहाँ आया हूँ।
1: पूरी रियासत इस वक्त जबरदस्त अकाल की चपेट में है, खजाना तंग है, इसलिए फिलहाल हम तुम्हें महावार।
0: हमें कुछ नहीं चाहिए अंदाता, आपने जो भरोसा रखकर हमें पनाह दी है उसके बदले में मेरी खाल की जूती भी बनाकर आपको पहना सकूं तो कम है। और दीवान जी, रहीमा के जिंदा रहते अगर रियासत का खजाना तंग रह गया तो फिर रहीमा के वजूद का कोई मतलब नहीं।
2: क्या फिर कोई टाका डालोगे?
0: आप फिक्र न करें अंदाता, रियासत के खजाने को मालामाल कर देना मेरा पहला फर्ज होगा। डाका सिर्फ फिरंगी तिजोरियों पर पड़ेगा, वो भी सरहद के पार, ये मेरा अहद है।
2: तो फिर ठीक है दीवान जी।
3: हुक्म।
2: रहीम खां को अपनी टोली के साथ खुफिया महकमे में खास औहदों पर लगा दो।
3: जो हुक्म अंदाता।
2: आज से इसका खुफिया नाम होगा राम सिंह।
0: कनी कनी कमान दाता, इस मेहरबानी के बदले

0: और दीवान जी, रहीमा के जिंदा रहते अगर रियासत का खजाना तंग रह गया तो फिर रहीमा के वजूद का कोई मतलब नहीं।
1: क्या फिर कोई टाका डालोगे?
0: आप फिक्र न करें अंदाता, रियासत के खजाने को मालामाल कर देना मेरा पहला फर्ज होगा। डाका सिर्फ फिरंगी तिजोरियों पर पड़ेगा, वो भी सरहद के पार, ये मेरा अहद है।
1: तो फिर ठीक है दीवान जी।
2: हुकुम।
1: रहीम खां को अपनी टोली के साथ खुफिया महकमे में खास औहदों पर लगा दो।
2: जो हुकुम अंदाता।
1: आज से इसका खुफिया नाम होगा राम सिंह।
0: घनी घनी कमान दाता, इस मेहरबानी के बदले ये रहीमा आखिरी सांस तक आपकी खिदमत करेगा और वतन की मिट्टी पर अपने खून की आखिरी बूंद तक कुर्बान कर देगा।

0: की ताजा खबर, कराची एक्सप्रेस पे भारी डकैती, ब्रिटिश बैंक की तिजोरी लूटी, बैंक का 50 लाख की रकम लूट कर फरार, हर जगह कड़ी नाकाबंदी। पढ़िए आज की ताजा खबर, कराची एक्सप्रेस पे भारी डकैती।
1: साथियों, खुदा के फजल और आप लोगों की बहादुरी से हमें फिर एक बड़ी कामयाबी मिली। आज बड़े दिनों बाद अमल में स्वाद आएगा, क्यों करीमा?
2: रहीमा, ये वक्त राग रंग का नहीं है। छापा मार को वारदात के बाद वापस अपने गुप्त ठिकाने और गुप्त भेष में लौट जाना चाहिए।
1: तो फिर बोलो, ब्रिटिश राज
3: मुर्दाबाद,
1: वतन के दुश्मन
3: मुर्दाबाद,
1: इनकलाब
3: जिंदाबाद,
1: हिंदुस्तान
3: जिंदाबाद।
1: अब चलो, ऊंटों के पिलान कस लो और कारतूस पेटी कमर में बांध कर बंदूकें संभाल लो, हम जैसलमेर चलेंगे।

0: ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध प्रांत से समाचार मिला है कि अमरकोट का खतरनाक डकैत और फरार कैदी रहीम खां चलती ट्रेन में 50 लाख रुपयों की डकैती के बाद रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। सरकार को संदेह है कि वो सिंध की सरहद को पार करके जैसलमेर के रेगिस्तान की तरफ भागा है। उसकी तलाश और गिरफ्तारी के लिए सरकार ने सिंध प्रांत के आईजी पुलिस मिस्टर हटसन की अगुवाई में ऑपरेशन सर्च का ऐलान किया है।
1: Good afternoon, Your Majesty, His Highness of Jaisalmer.
2: आइए आइए, welcome, Mr. Harsan. फरमाइए क्या खिदमत की जाए?
1: As you know, Your Highness, हम इधर on duty आया. हमारा मिशन है Operation Search. इस ऑपरेशन में हम आपका मदद मांगता.
2: बड़े शौक से Mr. Harsan, आपकी मदद करके हमको खुशी होगी. आप इस ऑपरेशन की डिटेल्स बताएं तो बेहतर हो.
1: Oh yes, Your Highness. सिंध सुबह का रहीम खान एक ट्रेन रॉबरी के बाद फरार हो गया है। गवर्नमेंट को डाउट ही नहीं, पूरा यकीन है कि द ब्लडी एब्सकाउंडर वो भगोरा आपकी रियासत में कहीं छुपा है। इसलिए ये ऑपरेशन सर्च हम इधर से स्टार्ट करना मानता।
2: जरूर मिस्टर हरसन, इस ऑपरेशन में हम आपकी पूरी मदद करेंगे।
3: राम सिंह
4: हुकुम अंदाता।
2: हरसन साहब, ये राम सिंह हमारे खुफिया महकमे का बहुत काबिल अफसर है। रियासत की चप्पे चप्पे की बहुत अच्छी जानकारी है इसे। इसे अपने स्टाफ के साथ हम आपकी मदद के लिए बाकायदा तैनात करते हैं।
1: That's very good. Thank you, Your Highness.
4: रहीम खां का सलाम दीवान जी।
5: आओ रहीमा, कैसा रहा ऑपरेशन?
4: ऑपरेशन तो गोरी सरकार का था दीवान जी, पूरा करवा दिया। सच कहता हूं।

0: दीवान जी, अंधाता का भी जवाब नहीं है। क्या मीठी और पुख्ता चाल खेली है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बस अब एक वारदात सक्कर सिंध में और करना चाहता हूँ दीवान जी।
1: कैसी वारदात?
0: वहाँ अंग्रेजों का एक पिट्ठू है, सोने चांदी में हीरे जवाहरात में लूटता है। गरीबों से लूट लूट कर अरबों की पूंजी कमाई है उसने। बस एक झपट्टा उस पर जरूर मारना है।
1: अब थोड़े दिन आराम ही कर ले रहीमा।
0: जब तक ये गोरे लुटेरे यहाँ हुकूमत कर रहे हैं तब तक हमारे लिए आराम हराम है।
1: सिंध में चौकसी बहुत कड़ी हो गई होगी, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डालता है?
0: यहाँ मौत का डर किसको है, जोखिम से खेलना ही तो अपना शौक रहा है दीवान जी। आज रात हमारी टोली निकल जाएगी, आप तो परसों तक लूट का माल जाब्ते में दाखिल खजाना करने की तैयारी रखवाना।
1: जैसी तेरी मर्जी रहीमा।
0: अच्छा, अलविदा।
1: अलविदा, ईश्वर तुझे सफलता दे।
2: ये ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध सूबे से एक भारी डकैती के समाचार मिले हैं। रहीम खान ने कल रात सखर के एक नामी सेठ की कोठी पर संगीन डाका डाला। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस ने कोठी को घेर लिया और गोलीबारी की, जिसमें कई सिपाही मारे गए। रहीम खान को भी गोलियां लगी, लेकिन वो घायल हालत में भी अपने साथियों की मदद से पुलिस को चकमा दे गया। लूट का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और पूरे सिंध में रेड अलर्ट कर दिया गया है।

0: रहीम भाई, पानी। कैसी है तबीयत?
1: मैं ठीक हूँ करीमा। माल कहाँ?
0: वो ठीक ठिकाने पहुंच चुका होगा। अब्दुल जुम्मन और पंडित अलग अलग रास्तों से माल लेकर जैसलमेर गए हैं।
1: अब कोई फिक्र नहीं। जरा ये पट्टा खोल दे।
0: तुम्हारी हालत ठीक नहीं है रही भाई, सारे कपड़े खून में तर हैं।
1: जिस मिट्टी से ये जिस्म बना है, ये खून उसी की अमानत है। बहनी दे से।
0: जिद मत करो रही भाई, तुम्हें अभी बहुत जीना है। वतन की खातिर, हमारी खातिर तुम्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है।
1: कौन सा अस्पताल?
0: जैसलमेर लिए चलता हूँ।
1: अरे पगले, जिसने मुझे जीते जी पनाह दी, उदा दिया, उस अंदाता को मरने के बाद मुसीबत में डाल दूं? नहीं, जो अब तक राज रहा है उसे राज ही रहने दे करीमा।
0: मेरी बात मानो रही भाई, चलो मेरे साथ।
1: नहीं, अब ये ढाणी छोड़कर कहीं नहीं जाना। मेरा जिस्म रेगिस्तान की इस मिट्टी में मिल जाने दे करीमा।
0: ऐसा मत बोलो रही भाई, ऐसा मत बोलो।
1: रो मत करीमा, इधर देख पगले, मैं कितना खुश हूँ। जैसी बन सकी वतन की खिदमत की, ना कि ऐश के लिए नहीं, फर्ज के लिए डाले। जिसने पनाह दी उसका कुछ कर्ज होता।

आगे ये काम तुम लोग करना, फिरंगी राज से टक्कर लेते रहना।

0: एक तमन्ना दिल में रह जाएगी।
1: कौन सी तमन्ना रही भाई, बोलो बोलो तो।
0: पीर बाबा का दीदार, उनकी कदम बोसी।
1: चलो रही भाई, मैं ले चलता हूँ वहाँ। या खुदा, तेरी खुदाई, पीर बाबा आप यहाँ।
0: पीर बाबा, आपने जहमत उठाई, या मेरे मौला, इस गुनहगार पर इतना करम।
2: गुनहगार नहीं है रहीमान, तूने वतन परस्ती के हक में एक वफादार सिपाही की तरह अपना खून बहाया है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क से ये फिरंगी राज खत्म होगा, आजादी का नया सूरज उगेगा।
0: आमीन। अलविदा बाबा।
1: तुम ऐसा नहीं जा सकते।
2: रो नहीं करीमा, रहीम मरा नहीं, ये उसकी कुर्बानी है, शहादत है उसकी। शहीद को आंसुओं से विदा नहीं करते बेटे, जिस सरजमीन पर उसका खून गिरा है उसे वही बाइज्जत दफन करो। उसका मजार उसकी वतन परस्ती की याद दिलाएगा। आज से ये ढाणी रहीम की ढाणी कहलाएगी। ये रेत के टीले उसकी कुर्बानी के सबूत बनेंगे और ये हवाएं उसकी शोहरत के नगमे दोहराएगी।
3: ये है जैसलमेर के इतिहास का वो गुमनाम पन्ना मिस मित्रा, रहीम की ढाणी, रहीम खां का ये मजार।
4: बड़ा पवित्र है ये स्मारक मिस्टर ओझा, श्रद्धा के भाव से हम इसको नमन करता है। इसका दर्शन कराने के लिए आपको धन्यवाद कैसे दिया जाए समझ में नहीं आता। आई रियली थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
3: बस बस मिस मित्रा, एक गाइड के नाते ये मेरा फर्ज था। आइए चलें।

अभी आप सुन रहे थे हरिराम आचार्य का लिखा ये नाटक रहीम की ढानी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने और आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। तराने नए पुराने।

जान है, तू ही मेरी जान है दिलरुबा। दुनिया हो या हो खुदा, किसमें है ये हौसला।

श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ गंगा के तट पर पहुंचते हैं। वहां केवट से गंगा को पार कराने के लिए अनुनय करते हैं। विस्मित नयनों से केवट श्री राम को निहारते हुए विनती करते हैं, प्रभु तुम तो जग के खेवनहार हो, तुम्हें कौन पार लगाए।